महेंद्र कपूर से अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति गीत। वंदना में आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के गाए मानस के कुछ दोहे।

वाले दर्शनार्थियों को देखा करता। एक दिन एक अत्यंत साधारण व्यक्ति मंदिर में भगवान के दर्शन को आया। धनी व्यक्ति अपने घर की छत पर बैठा उसे देख रहा था। दर्शनार्थी ने कपड़े भी बेहद साधारण पहन रखे थे और देखने पर भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था। जब वो भगवान का दर्शन करके वापस जाने लगा तो मंदिर के संस्थापक ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे? संस्थापक की बात सुनकर वो काफ़ी आश्चर्य में पड़ गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, सेठ जी, मैं तो बेहद साधारण आदमी हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, इतने बड़े मंदिर का प्रबंधन मैं कैसे संभाल सकता हूँ? इस पर संस्थापक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मंदिर की व्यवस्था के लिए कोई विद्वान पुरुष नहीं चाहिए, मैं तो किसी योग्य व्यक्ति को इस मंदिर का प्रबंधन सौंपना चाहता हूँ। फिर उस व्यक्ति ने संस्थापक महोदय से पूछा, लेकिन इतने सब श्रद्धालुओं में आपने मुझे ही योग्य व्यक्ति क्यों माना? मुझे इस बात से आश्चर्य हो रहा है। संस्थापक बोला, मैं जानता हूँ कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं, क्योंकि मंदिर के रास्ते में मैंने कई दिनों से एक ईंट का टुकड़ा गाड़ा था जिसका एक कोना ऊपर से निकला हुआ था। मैं कई दिनों से देख रहा था कि उस ईंट के टुकड़े से कई लोग ठोकर खाते थे, कुछ लोग तो गिर भी जाते थे, चोट भी लगती थी, लेकिन किसी ने भी उस ईंट के टुकड़े को वहाँ से हटाने की नहीं सोची। आपको उस ईंट के टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, लेकिन फिर भी आपने उसे देखकर उसे वहाँ से हटाने का सोचा। मैं देख रहा था कि आप मजदूर से फावड़ा लेकर वहाँ गए और उस टुकड़े को खोद कर वहाँ की ज़मीन समतल कर दी। संस्थापक की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, देखिए, मैंने कोई महान कार्य नहीं किया है। दूसरों के बारे में सोचना और रास्ते में आने वाली दुविधाओं को दूर करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैंने तो बस वही किया जो मेरा कर्तव्य था। मंदिर के संस्थापक ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों को जानने और उसका पालन करने वाले लोग ही योग्य होते हैं, और इतना कहकर उसने मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को सौंप दी। सिर्फ अधिकार प्राप्त करना या अपने लिए सुविधाएं जुटाना जीवन नहीं होता। जीवन जीने का तरीका ये होता है कि हम अपने अपने कर्तव्य सही तरीके से करते रहें, और यदि सभी लोग अपने कर्तव्य सही तरीके से निभाएंगे तो सबको अपने अधिकार भी स्वयमेव मिल जाएंगे। दूसरों को दिखाने के लिए किया गया परोपकार कभी भी उच्च श्रेणी का परोपकार नहीं होता। यदि हम सचमुच परमार्थ के लिए कुछ करना

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज की सामयिक चर्चा का विषय है फल पौधों के रोपण में सावधानियां। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ए के बधौलिया।
1: जैसे कि सभी किसान भाई जानते हैं कि हमारे फल उद्यान स्थायी प्रकृति के होते हैं, उनका जीवन काल खाद्यान्न फसलों की तुलना में काफ़ी लंबा होता है, तो इसमें निरंतर देखभाल की आवश्यकता तो होती है, खास करके शुरुआती महीनों में ज़्यादा आवश्यकता होती है। और एक बात और कि हमारे फलदार पौधों की संख्या सीमित होती है, गिनती की होती है, और अगर हम कोई असावधानी करते हैं और उसमें पौधे मर जाते हैं तो उनका जो खामियाजा है या उसकी जो हानि है वो हमें बहुत लंबे रूप में भोगनी पड़ती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे फलदार पौधे अच्छी तरीके से पूरी संख्या में लगे रहें। जब हम नए फल उद्यान लगाते हैं तो हमें चार पांच पहलुओं की तरफ विशेष ध्यान देना है, जिसमें फल पौधों की सुरक्षा बहुत ही महती ये बात है, फिर वृक्षों की सदाई, उद्यान में अंतर्वर्ती फसलें लगाना, पूरक वृक्ष लगाना, और फिर सामान्य देखभाल। तो इन सब बातों का प्रबंधन से बहुत गहरा संबंध है, और सुरक्षा जिसमें विशेष उल्लेखनीय है। सुरक्षा के अंतर्गत जो हमारा दृष्टिकोण होता है कि मानसून मौसम में पौधे लगाते हैं तो कई बार अधिक पानी की बरसात होने से जलमग्नता की स्थिति बनती है, तो हमें ऐसी अवस्था में पौधों की जड़ों के समीप से अतिरिक्त पानी को हटाना यानी जल निकास करना आवश्यक होता है। साथ ही साथ पौधे लगाने के समय भी कुछ किसान भाई असावधानी करते हैं कि जो मिट्टी के साथ पौधा आता है तो उसके आसपास की मिट्टी को अच्छी तरीके से नहीं दबाते हैं, तो ऐसे में पानी उनके जड़ों के समीप में आकर भरा रहता है, और अगर ये पानी दो चार दिन भरा रहता है तो इससे पौधों के मरने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरीके से क्या होता है कि आजकल किसान भाई कलमी पौधे लगाते हैं, तो जो उनका मूल वृंथ और साकुर के जुड़ने का भाग होता है वो झटके से ना खुले। इसी तरीके से जिनमें जोड़ होता है, दो पौधों को ऑपरेट करके चिरे लगा करके जोड़ के नए पौधे बनते हैं, तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि झटके से, तेज हवा के चलने से, पौधों के लहराने से या चोट लगने से ये जो जोड़ है वो खुल जाता है। तो इससे बचाने के लिए हम चाहते हैं कि पौधों के दोनों तरफ दो खूंटियां गाड़ कर और रस्सी की मदद से पौधे और खूंटियों को जो आपस में बांध दिया जाए, ताकि जो नया जोड़ का पौधा विकसित हुआ है वो जो है कलम वाला भाग लहराकर ना टूट सके। हाँ, बांस और लकड़ी जो है हमें पौधे के जड़ क्षेत्र से दूर गाड़ना चाहिए। और कभी बार आप देखते हैं कि गांव में पशुओं से भी हमारे नए फल उद्यान के पौधों को बहुत नुकसान होता है, तो हमें चाहिए कि या तो व्यक्तिगत पौधे की सुरक्षा के लिए बागड़ लगाएं या फिर हम पूरे फल उद्यान के लिए ही बागड़ लगाएं, क्योंकि अगर पौधे का शीर्ष भाग किसी पशु के द्वारा नुकसान कर दिया जाता है तो फिर वो जो पौधा है एक झाड़ी नुमा पौधे के रूप में हो जाता है, वृक्ष का आकार नहीं ले पाता है। आप सभी जानते हैं कि अगर हम पौधे को एक निश्चित आकार नहीं देंगे, स्वरूप नहीं देंगे, उसका ढांचा मजबूत नहीं बनाएंगे, तो जब उसमें फल फूल लगेंगे तो वो फल भार से वो पौधे की शाखाएं भी टूट सकती हैं, उसको नुकसान हो सकता है, या वो बेतरतीब बढ़ के जंगली पौधे के रूप में हो सकता है। तो आवश्यकता इस बात की होती है कि हम पौधे के प्रारंभिक समय से ही उसको एक निश्चित आकार दें, उसको स्वरूप दें, ताकि वो आगे भविष्य में फलों के भार को सह सके और अपना जीवन काल लंबा बना सके। इसी के तहत हमें दवाइयों की छिड़काव में भी मदद मिलती है, फलों की तुड़ाई में भी मदद मिलती है, तो ये भी हमें लाभ मिलते हैं। और निश्चित आकार देने के लिए एक विधि अग्र प्रणाली कहलाती है। इसमें होता क्या है कि हम पौधे को प्राकृतिक रूप से लंबाई में, ऊंचाई में बढ़ने देते हैं और प्रारंभ

0: से लगभग 1 मीटर के बाद हम इसमें शाखा को आगे निकलने का मौका देते हैं और फिर 30 से 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के अंतर से दूसरी शाखाएं निकलती हैं जिन्हें हम चारों तरफ चारों दिशाओं में बांटते हुए इसको एक संतुलन देते हैं। तो इसको हम खुला केंद्र प्रणाली कहते हैं, अग्र प्रणाली कहते हैं।
1: कार्यक्रम कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे जानकारी। फल पौधों के रोपण में सावधानियां, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर ए के बधौलिया। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, सुनिए सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: याद रखो हमारी बात,
5: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
4: जंगल है धरती का गहना,
5: सदा इसकी रक्षा करना,
4: होगी जो धरती पर हरियाली,
5: चहुं ओर फैलेगी खुशहाली।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। इसके ठीक बाद यानी 7 बजे हिंदी में समाचार होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
6: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिराष्ट्र यात्राया द्वितीय चरणे ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबोर्न नगरं सम्प्राप्तवान्। ह्यः तस्य आगमन समये ऑस्ट्रेलिया देशस्य नगरावासन मंत्री क्लेयर ओ नील इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्नेहपूर्वकं स्वागतम् अकरोत्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् इयं यात्रा भारताश्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागितायाः ऊर्जां वर्धयिष्यति इति। सामाजिक संचारपटले एकस्मिन् संदेशे श्रीमोदी अवदत् यत् असौ ऑस्ट्रेलिया देशस्य समकक्षेण एंथनी एल्बनीज इत्यनेन सह संवादम् आचरिष्यति। असौ एतदपि कथितवान् यत् भारताश्ट्रेलिया सहभागित्वस्य महत्वपूर्णस्तम्भेन भारतीय प्रवासिना सह संवादाय अवसरः अपि प्राप्स्यामि इति। यात्रावधौ श्रीमोदी तृतीये भारताश्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। असौ भारताश्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी

0: मञ्चे अपि भागं ग्रहीष्यति यत्र सः उभयदेशयोः प्रमुखानां व्यापारनेतॄणां समागममपि सम्बोधयिष्यति। भारत म्यांमार देशौ द्वैपाक्षिक सुरक्षा सहकारिता विषये चर्चां कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिक संवाद व्यवस्थायाः अन्तर्गते प्रगतिं च समीक्षितवन्तौ। भारत म्यांमार देशयोः मध्ये त्रयोविंशतितमं द्विदिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं विद्रोहः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं शस्त्राणां क्रयविक्रयणं मानवव्यापारं वन्यजीवानां क्रयविक्रयणम् इत्यादीनां संघटितानां अपराध प्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिता विषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्यां ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मञ्चेषु आतंकवादरोधी सहयोगम् इतोपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणां अभिव्यक्तिनां च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनं मध्यप्रदेशस्य श्योपुरनगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णं एकीकृतं IMAT इति परीक्षा सफलतया आयोजिता। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृषे उत्तर अरबसागर राजस्थान गुजरात हरियाणा पंजाब इत्येतेषां शेष भागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय बिहार पूर्व राजस्थान मध्यप्रदेश उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम पश्चिमोत्तर प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथजी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वैः तीर्थयात्रिभिः पञ्जीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम् अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
2: भारत आपके फंड्स को सेफ स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार

रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में सत्रहवें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले तीसरे मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओ, अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसे हमारे भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करते हैं। 7:20 पर काव्य पाठ सुना जा सकता है। हम आपको आज डॉक्टर

रविंद्रनाथ मिश्र के कुछ कविताएं सुनवाएंगे। 7:30 बजे फिल्म संगीत सुनेंगे आप, 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। 8:30 बजे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे और 9 बजे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर होगा। 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में डॉक्टर PL गोहदकर का गाया राग अलहिया बिलावल सुनेंगे आप।

0: 10 बजे जिले की चिट्ठी भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे और 10:05 पर व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से श्रोता सुनेंगे। इसमें श्रोताओं की पसंद के फिल्मी गीत हम सुनाते हैं। 11 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। सायंकालीन सभा में 4 बजे विशेष कार्यक्रम होगा संदेश टू सोल्जर्स, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी और 6 बजे NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। सायंकालीन सभा के इन प्रसारण को आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से। हमारे केंद्र से 7:20 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल। इसमें चर्चा का विषय होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके अलावा चर्चा होगी हस्तशिल्प अपनाएं लाभ कमाएं। चौपाल कार्यक्रम में ही किसान भाई सुनेंगे वार्ता स्वच्छता एक लाभ अनेक। इस विषय पर डॉक्टर कमल सिंह यादव से बात करेंगे सोहन सिंह। इसके अलावा किसान भाई कुछ बुंदेली लोकगीत भी सुन सकेंगे। रात 8 बजे से लेकर सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर और आपके मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर। श्रोताओ, सुबह 8 बजे से आप हमारे केंद्र के कार्यक्रम अपने FM बैंड 101.8 पर भी सुनते हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार भोपाल से होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान

0: समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, 3 दशक से जारी सरदार सरोवर विवाद का सर्वसम्मति से हुआ समाधान। आज भिंड में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट, प्रदेश के 9 जिलों में अति भारी और 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 4वां मुकाबला आज ब्रिस्टल में होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लेने और दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। वे मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से बातचीत भी करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया और इसे अविस्मरणीय बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वित्त वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के वृद्धि अनुमान वैश्विक अनुमानों से 2 गुने से भी अधिक हैं। रिपोर्ट में इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3% बताई गई है। इसमें अगले वर्ष 3.4% की वृद्धि की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश की औद्योगिक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में किसान इरिगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 4थी नवीन विनिर्माण इकाई का लोकार्पण कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किसान इरिगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियां प्रदेश में निवेश, रोजगार और तकनीकी प्रगति को नई दिशा दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कंपनी प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए संबोधित किया।
1: 10,000 करोड़ से ज्यादा अलग किसान कल्याण वर्ष में किसान की इंडस्ट्री हो या रेलवे, अब बहुत तेज गति से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग प्रकार की दुनिया में पहुंच रही है। ऐसे में हमारे उद्यमी सागोदी ब्रदर्स ने अपनी रेल के विभिन्न प्रकार की एक्सेसरीज बनाने का और रेलवे कोच बनाने तक का भी जो संकल्प लिया, हमारी मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से 272 करोड़ के अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली सभी प्रकार के वाहन साधनों की एक बड़ी इंडस्ट्री का भी हमने लोकार्पण किया। बीते 10 दिन के अंदर लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा अलग अलग प्रकार के कामों का भूमिपूजन लोकार्पण किया है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कल कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में हुई बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लगभग 3 दशक से जारी पुनर्वास एवं पुनर्बसाहट व्यय विवाद का सर्वसम्मति से समाधान हुआ है। इस निर्णय से मध्य प्रदेश पर पड़ने वाले वित्तीय भार में उल्लेखनीय कमी आएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 24 जून से संचालित 15 दिवसीय प्रदेशव्यापी सेफ क्लिक साइबर सुरक्षा 2.0 जन जागरूकता अभियान का कल समापन हुआ। भोपाल में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कहा कि 3 पूर्व प्रमुख चुनौतियों, साइबर अपराध, नशे के विरुद्ध जन जागरूकता और सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के संकल्प के अनुरूप मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सेफ क्लिक तथा नशे से दूरी है जरूरी व्यापक जन जागरूकता अभियान सफलतापूर्वक संचालित किए गए हैं।
3: वर्ष 2025 में हमने सेफ क्लिक अभियान साइबर जागरूकता का चलाया था और उसके काफ़ी अच्छे परिणाम देखे गए थे। उसके पश्चात प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट में बहुत हद तक रोक लग गई थी, तो चूंकि साइबर फ्रॉडस्टर्स लगातार अपनी मॉडस ऑपरेंडी, अपनी कार्यप्रणाली चेंज करते हैं, तो उनसे बचाव के लिए पब्लिक को जागरूक करना महसूस किया जा रहा था। सेफ क्लिक 2.0 का 24 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था और 15 दिवसीय ये

0: अभियान सारे जिलों में बहुत ही लगन से, मेहनत से चलाया गया। इसमें कई विभाग, कई संगठन, कई एनजीओस को हमने जोड़ा और करोड़ों की रीच इसकी रही।
1: 15 दिवसीय इस अभियान का समापन समारोह खंडवा के पुलिस कंट्रोल रूम में भी आयोजित किया गया। वहीं मंडला, आगरमालवा, झाबुआ समेत अन्य जिलों में भी अभियान का समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर के विस्तार और अद्यतन डाटा सेंटर 3.0 परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार मध्य प्रदेश स्टेट डाटा का आधुनिकीकरण, आईटी एवं डिजास्टर रिकवरी क्षमता विस्तार तथा संबंधित नॉन आईटी अवसंरचना विकास किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश शासन की संयुक्त भागीदारी से भोपाल में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की गई है। प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर 12 दिसंबर 2012 से सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा उप निरीक्षक एवं सूबेदार भर्ती परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस को 8 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सूबेदार एवं उप निरीक्षक संवर्ग के 436 पुलिस अधिकारी मिलने जा रहे हैं। मंडल द्वारा 7 जुलाई को अंतिम परीक्षा परिणाम अपनी वेबसाइट पर घोषित किया गया, जिसमें 87% पदों का परिणाम जारी किया गया है, जिसमें कुल 436 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें 313 पुरुष एवं 123 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश उपलब्ध कराने के लिए 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर पंजीयन, च्वाइस फिलिंग, संशोधन, दस्तावेज सत्यापन, सीट आवंटन संबंधी मार्गदर्शन तथा शुल्क भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार यह मैच रात 10 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड श्रृंखला में फिलहाल 2-0 से आगे है और श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को यह मैच जीतना ही होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार कल पन्ना, छतरपुर और खंडवा सहित कई जिलों में कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। विभाग ने आज भिंड जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, रतलाम, आगरमालवा, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़ और निवाड़ी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसी के साथ विदिशा, उज्जैन, शाजापुर और मंदसौर सहित 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठकें जिला पंचायत सभागार में 13 से 15 जुलाई और 21 से 24 जुलाई तक होंगी। गुना की तहसील कुमराज के ग्राम बिरियाई में जिला प्रशासन द्वारा ग्राम चौपाल और सामाजिक संवाद सह रोजगार उन्मुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। मानसून की सक्रियता के चलते जबलपुर के रानी अवंतीबाई सागर परियोजना बरगी जलाशय में बीते 5 दिनों में बांध का जलस्तर 3 मीटर बढ़ गया है। 31 जुलाई से पहले बांध के गेट खोले जा सकते हैं। शहडोल संभाग कमिश्नर ने ग्राम पंचायत मोहतरा के पोषक ग्राम चुनपथरी स्थित एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने इंदौर रेजिडेंसी कोठी पर आयोग मित्रों के साथ मानवाधिकार संरक्षण सहित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मंडला जिले में 9 जुलाई को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सांची जनपद के ग्राम सनखेड़ी में 2.90 करोड़ रुपये की लागत से बने क्षमता के नए उपकेंद्र का लोकार्पण किया। सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे और बैतूल कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवड़े ने प्रभात पट्टन तहसील के ऐतिहासिक शेरगढ़ किले और वर्धा डैम पहुंचकर सुरक्षा एवं पर्यटन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

में एक अहम किरदार है तू, प्रेम के मेरे संवादों में एक अहम

राजों से पलकों की ही चौंक अगर तुम जाते हो, आवाजों से

आखिरी बन पछतावे की अलमारी में कुछ भूले वादे भी हैं, पछतावे की अलमारी में कुछ भूले वादे भी हैं, उनका अब पूरा हो पाना।

की पगडंडी भूली जब आँखें, तब बूढ़े पीपल ने अपना नाम लिखा। रातें भीगी जब रिमझिम बरसातों में, रातें भीगी जब रिमझिम

ईगी जब रिमझिम बरसातों में, काजल की कोरों ने अपना नाम लिखा। एक नया प्रयोग देखे, धूप थकी चलकर दिन भर एक प्यास लिए, धूप थकी चलकर दिन

यादों की माचिस की जब भी तीली जली, यादों की माचिस की जब भी तीली जली,

अपना नाम लिखा। इसका आखिरी बंद, हुड़दंगी नदिया ने पहनी जब पायल, हुड़दंगी नदिया ने पहनी जब पायल।

0: Angelika.
1: अभी आप सुन रहे थे श्री रविंद्रनाथ मिश्र से उनका काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तुलिका।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। अगला गीत ये रहा। गीत अनजान का, संगीत एक बार फिर बप्पी लाहिरी का, आवाजें विजय बेनेडिक्ट और साथियों की, और फिल्म का नाम डिस्को डांसर।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
2: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फिल्म कर्ज का है ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाजें हैं किशोर कुमार और साथियों की।

आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और साथियों को एक बार फिर। गीत अनजान का, संगीत राजेश रोशन का और फिल्म का नाम याराना।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं इंदिवर की लिखी ये गीत रचना संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, आवाज आशा भोसले की और फिल्म का नाम डॉन।

0: विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको

0: हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और

पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों

0: मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders.

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है

0: 16 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से सुब्बलक्ष्मी और लखनऊ से डॉक्टर प्रियदर्शनी चक्रवर्ती। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारत की स्वतंत्रता का अमृत वृक्ष केवल उन फूलों से नहीं महका जिनकी सुगंध दूर दूर तक पहुंची, बल्कि उसकी जड़ों में अनगिनत अनाम तपस्वियों का रक्त भी समर्पित है जिससे ये फला फूला। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे सीतांशु दत्त रॉय। युगांतर दल के इस निर्भीक सेनानी ने स्वाधीनता को केवल स्वप्न नहीं अपना जीवन व्रत बनाया और इस पुण्य यात्रा में उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे, लेकिन उनके मन में जलती क्रांति की ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। सीतांशु दत्त रॉय का जन्म 1 जुलाई 1907 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मैमनसिंह जिले के ढाकी नामक गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। उनके पिता का नाम शिवदत्त रॉय था। ये 20वीं शताब्दी का उषाकाल था। भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का कठोर शासन था और बंगाल की धरती क्रांति की ज्वाला से धधक रही थी। बंग भंग आंदोलन ने लोगों को झकझोर कर जगा दिया था। स्वदेशी आंदोलन जन जन की चेतना बन चुका था। ऐसे वातावरण में सीतांशु दत्त रॉय बड़े हो रहे थे। उनके पिता स्वयं राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति थे, इसलिए सीतांशु दत्त रॉय के भीतर भी स्वाभाविक रूप से राष्ट्र चेतना जागृत होने लगी। ढाका, मैमनसिंह और बारिसाल जैसे जिले गुप्त क्रांति गतिविधियों के सबसे बड़े गढ़ बन चुके थे। क्रांतिकारी दल युगांतर की गतिविधियां लगातार जारी थीं। इसी बीच सीतांशु दत्त रॉय का संपर्क युगांतर के क्रांतिकारियों से हुआ और वो युगांतर के उद्देश्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इस संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने लगे। उनके भीतर केवल एक संकल्प था, संकल्प भारत की आजादी का।

युगांतर सशस्त्र क्रांति की मशाल लिए आगे बढ़ रहा था। इस दल का उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये अखाड़ों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता था। इतना ही नहीं, यहाँ युवाओं को हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ये संगठन क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों को अपना निशाना बनाता था। उन दिनों अंग्रेजी शासन की खुफिया पुलिस संगठन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखती थी। क्रांतिकारियों की एक छोटी सी भूल भी उनके आजीवन कारावास का कारण बन सकती थी। लेकिन भारत की स्वाधीनता का स्वप्न देखने वाले क्रांतिकारियों के मन में किसी भी बात का भय नहीं था। सीतांशु दत्त रॉय ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी निर्भीक होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा करते थे। वो मैमन सिंह, नेत्रकोना और किशोरगंज के क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करने में जुट गए। वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुप्त संदेश पहुंचाते, कभी क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था करते। पुलिस की निगरानी के बीच क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। सीतांशु दत्त रॉय इस काम को भी अत्यंत चतुराई और सतर्कता से अंजाम देते। अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की वध की योजनाओं में वो इन अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखकर आवश्यक सूचना दल तक पहुंचाया करते थे। इतना ही नहीं, वो युवाओं से बातें करते, उन्हें युगांतर का उद्देश्य बताकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करते, उन्हें दल से जोड़ते। ये सारे काम तलवार की धार पर चलने जैसे थे, लेकिन ये सभी जोखिमपूर्ण दायित्व वो पूरी निष्ठा से निभाने में जुटे रहते। इसी बीच सन 1930 में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ। इस घटना ने अंग्रेजी शासन की नींद उड़ाकर रख दी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के क्रांतिकारियों पर अभूतपूर्व दमन चक्र चलाया। अंग्रेजों का गुप्तचर विभाग अब और अधिक चौकस और सक्रिय हो गया था। युगांतर के अनेक क्रांतिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, जिनमें सीतांशु दत्त रॉय का नाम भी शामिल था। बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन नजरबंदी और यातनाएं अंग्रेजी शासन की नीति बन चुकी थी। पुलिस ने बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट यानी BCLA के अंतर्गत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे।

बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय तक बंदी बनाया जा सकता था। इसी कानून के तहत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिजली नजरबंदी शिविर भेज दिया गया। हिजली केवल एक सामान्य सी जेल नहीं थी, बल्कि यहां अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। हिजली नजरबंदी शिविर की स्थापना सन 1930 में इसी उद्देश्य से की गई थी कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को बिना मुकदमे के यहां कैद किया जा सके तथा उन्हें प्रताड़ित किया जा सके। ये वही जेल थी जहां निहत थे राजनीतिक बंदियों पर ब्रिटिश प्रहरियों ने गोली चला दी थी और संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेन गुप्ता जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। इसी जेल में अब सीतांशु दत्त रॉय कैद थे। उन्होंने यहां असीम शारीरिक यातनाएं सही और अपने साथी क्रांतिकारियों के साहस को निकट से देखा। यहां दी गई हर यातना उनके संकल्प को और दृढ़ करती चली गई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक और गंभीर आरोप लगाया। मैमन सिंह के अत्याचारी जिला मजिस्ट्रेट ग्राहम पर क्रांतिकारियों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में सीतांशु दत्त रॉय को प्रमुख षड्यंत्रकारी बताया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस घटना के लिए हथियार उपलब्ध कराए, योजना बनाई तथा हमले के सूत्रधारों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पर मुकदमा चला। नेत्रकोना की विशेष औपनिवेशिक अदालत में उन्हें प्रस्तुत किया गया। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि सीतांशु दत्त रॉय अपने साथियों के नाम उजागर कर दें। उनसे बार बार पूछताछ हुई, प्रलोभन दिए गए, दबाव भी बनाया गया, लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अंततः अदालत ने उन्हें 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनका मनोबल तोड़ने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया। यहां की एकांत कोठरी, अल्प भोजन और अमानवीय श्रम के बीच भी उनका संकल्प टूटा नहीं। जब अंडमान की जेल में 24 जुलाई सन 1937 को ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू हुई तो सीतांशु दत्त रॉय भी इसमें शामिल हुए। कैदियों की मांग थी कि उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा मिले, अमानवीय व्यवहार बंद हो और उन्हें भारत की मुख्य भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस भूख हड़ताल ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। गांधी जी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर तथा अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप किया। सरकार झुकी तथा कैदियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। सीतांशु दत्त रॉय को भी भारत वापस लाया गया और 1938 में वो रिहा हुए। रिहा होने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। भारत छोड़ो आंदोलन में युगांतर और अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी भूमिगत रहकर इसमें शामिल हुए। सीतांशु दत्त रॉय को सुरक्षा हेतु खतरा मानते हुए पुनः नजरबंद कर दिया गया था। अंततः देश आजाद हुआ और बंटवारे में उनका गृह जिला मैमन सिंह भारत से अलग हुआ और वो पश्चिम बंगाल आ गए। देश की आजादी के बाद किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ या पद की लालसा से दूर उन्होंने एक गुमनाम और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भोपाल।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लेने और दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश की औद्योगिक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि किसान इरीगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियां प्रदेश में निवेश, रोजगार और तकनीकी प्रगति को नई दिशा दे रही हैं। प्रदेशव्यापी सेफ क्लिक 2.0 अभियान का समापन कल भोपाल में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने बताया कि साइबर अपराध, नशे के खिलाफ जागरूकता तथा सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता अभियान सफलतापूर्वक संचालित किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर के विस्तार और अद्यतन डाटा सेंटर 3.0 परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 जुलाई तक प्रवेश मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, रतलाम सहित 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। विदिशा, उज्जैन

शाहजहांपुर सहित 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये मैच रात 10 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तूलिका का नमस्कार। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर। जी हाँ, सुबहें आजकल तो कुछ अच्छी हो ही रही हैं, क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा भीगा भीगा सा हो गया है। इस अंचल में जहाँ बारिश का इंतज़ार कर रहे थे हम, और तमाम खबरें ये आ रही थी कि बारिश जो है वो कम होगी या थोड़ा सा सूखे की तरफ हमारा पर्यावरण या मौसम जा रहा था, लेकिन पिछले दो दिन में बारिश अच्छी हुई है और इसे कहा जा रहा है हमारे अंचल के लिए कि ये सामान्य से लगभग 50% ज़्यादा बारिश है। खैर, नज़र नहीं लगनी चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि बारिश का होना हमारी धरती के लिए बेहद ज़रूरी है, और जब आषाढ़ और सावन का महीना हो तो ये बारिश कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। खैर, हम मेरे दिन की तो शुरुआत पेड़ से जामुन तोड़कर खाने की हुई है। आपके दिन की शुरुआत कैसी हुई है ये आप जानें। खैर, साथ ही साथ जो हम अखबार पढ़ रहे थे तो अखबार में बहुत सारी खबरें ऐसी थीं जो इसी बारिश से संबंधित थी, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। बुरी खबरों पर ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है कि हम उन बुरी खबरों का हिस्सा न बन पाए। गुजरात के सूरत की खबरें हैं कि वहाँ बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि करीब 1,500 कारें, बहुत सारे घर, बेसमेंट्स पानी से भर गए हैं। बहुत नुकसान हुआ है जान का भी और माल का भी। ये समस्याएं जो हैं ये प्रकृति जन्य हैं, लेकिन प्रकृति को इस तरह का कोप दिखाने के लिए हम ही इंड्यूस करते हैं। साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस समय बेहद ध्यान रखनी होंगी, नहीं तो हम भी किसी परेशानी में फंस सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो सावधानी हम आपको बताएंगे, वो भी आज अखबार में है कि पिछले 20 घंटे में सांप के डसने के 25 केस अस्पताल में आए हैं। ये आंकड़े वो हैं जो लोग अस्पताल तक पहुंचे हैं। यानी बरसात के दिनों में चूँकि सांप के बिलों में पानी भरने लगता है, या कह लें कि मेंढक और चूहे वगैरह अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए सांप अपने बिलों से बाहर आते हैं, तो ये सारी चीज़ें रिहायशी इलाकों में ही होती है, इंसान के आसपास ही ये सब जीव जंतु रहते हैं, तो ऐसे में सावधानी की बेहद ज़रूरत है। बरसात में अपने घर के आसपास सफाई रखें, मच्छर मक्खी तो नहीं ही पनपेंगे, साथ ही ये जो जीव जंतु हैं ये भी आपके घर के आसपास नहीं आएंगे। घर में भी सफाई रखें, जितने भी दरारें हैं, चाहे खिड़कियों की हों चाहे दरवाज़ों की हैं हों, उन्हें अच्छी तरह सील करें, जिससे चूहे, मेंढक, जों, केंचुए, टिड्डे, झींगुर ये सब घर के अंदर प्रवेश न कर पाएँ। सावधानी ये भी रखें कि ज़मीन पर कोशिश करें कि ना सोएं, यदि सोना पड़े तो पूरी सावधानी के साथ। इसके बाद भी इतनी सावधानियों के बाद

बाद भी यदि सर्पदंश होता है तो घाव पर चीरा बिल्कुल नहीं लगाएं और ना ही मुंह से जहर चूसने की कोशिश करें। अंधेरी जगहों पर जाने से बचें, यदि जाना पड़े तो टॉर्च का इस्तेमाल करें। सांप के काटने पर झाड़फूंक के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े और समय गंवाए बगैर चिकित्सकीय सलाह लें, सीधे अस्पताल पहुँचे, एंटी वेनम लगाएं और जितनी भी सावधानी हो सकती है उतनी ज़रूर करें। श्रोता साथियों, आज सुबह से ही जो हमारे रेडियो पर खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश है और उससे सटा दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस पर चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है। घने बादल छाए हुए हैं और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये ऑरेंज अलर्ट जारी तो 24 घंटों के लिए किया जाता है, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि इस ऑरेंज अलर्ट को जब तक आपके शहर के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं तब तक मानिए, क्योंकि भारी बारिश की ये चेतावनी होती है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम आसमान में बादल देखते हैं और लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं या आसपास के किसी पर्यटन स्थल पर किसी झरने पर पहुंच जाते हैं। निकलिए ज़रूर, क्योंकि मौसम का मज़ा लेना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखते हुए। यदि आप किसी झरने के आसपास जा रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि झरने का जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत बड़ा है। झरना छोटा हो सकता है, पानी का रिजर्वॉयर छोटा हो सकता है, लेकिन उसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है। तो यदि पानी आसपास के इलाकों में भी बरसता है तो अचानक पानी उस जगह पर बढ़ जाने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो पूरी सावधानी के साथ इन दृश्यों का आनंद लें। इसके साथ ही यदि आप लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, लेकिन अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखकर, क्योंकि बारिश के दिनों में ब्रेक्स जो हैं वो थोड़ा धीमा लगते हैं। तो यदि स्पीड कम होगी तो आप सुरक्षित रहेंगे। जहाँ गड्ढे होते हैं जिन सड़कों पर, उन पर तो स्पीड कंट्रोल हो जाती है, हालांकि गिरने का के चांसेस वहाँ भी होते हैं, लेकिन गड्ढों में चूँकि आप स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं रखते, ऐसे में यदि गिरते भी हैं तो चोट कम लगती है। लेकिन जो सीधी सपाट और बेहतरीन सड़कें होती हैं वहाँ स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बहुत भयंकर होते हैं। तो ये सब चीज़ें बरसात के समय में थोड़ा सा ज़्यादा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यदि आपको अपने कार्यस्थल पर जाना है या किसी वजह से घर से बाहर निकल रहे हैं इसी बारिश में, तो कोशिश करें कि थोड़ा पहले निकलें, क्योंकि इस समय ट्रैफिक जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल्ड स्पीड में चलाते हैं। कोशिश कीजिए कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ना करें, क्योंकि इसमें दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा पहले घर से निकलें, सुबह की तैयारी थोड़ी जल्दी कर लें और समय से 10 मिनट पहले निकलेंगे तो सही समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। और यदि गंतव्य पर जल्दी पहुंच गए तो भी आनंद ही आनंद है, मौसम तो आप ही का है पूरे 24 घंटे। खैर, बातें हमारी और भी होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल एक गीत कतार में लगा है आप तक पहुंचने के लिए, चलिए हम आप तक उसे पहुंचाते हैं।

0: दस लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: एक बार फिर स्वागत है हमारे श्रोताओं का। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर और आपकी दोस्त तुलिका आपके साथ है। श्रोता साथियों, आपने अखबारों में एक और चीज पढ़ी होगी, सेफ क्लिक अभियान है 2.0 साइबर पुलिस का। इस सेफ क्लिक अभियान के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज के अखबार की एक और खबर के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। दरअसल सेना के एक अधिकारी की पत्नी ने इंटरनेट पर एक होटल ढूंढा, वो यात्रा पर जाना चाहती थी और होटल की बुकिंग कराई। होटल की बुकिंग के नाम पर उनके साथ हो गई ठगी। उन्होंने पैसे अलग अलग अकाउंट में दे दिए, जब रसीद मांगी तो नंबर ब्लॉक कर दिया गया या बंद कर दिया गया। बार बार इंटरनेट पर होने वाली ठगी के बारे में हम बातें करते हैं, अखबारों में भी बहुत निकलता है, एक दूसरे से जब चर्चा होती है तब भी लोग एक दूसरे को तमाम लोगों की बातें भी बताते हैं। चर्चा का विषय, गॉसिप का विषय ये हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह ये जो ठग हैं वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं। दरअसल हम थोड़े से लोभ में या लालच में इन ठगों के चक्कर में पड़ते हैं। हमेशा जब भी छोटा या बड़ा कोई भी ठगी का अपराध हो, आप देखिएगा ये मानव मन को बहुत बेहतर तरीके से निशाना बनाते हैं और हमारे थोड़े से छोटे से लोभ को हमारा बहुत बड़ा नुकसान बना देते हैं। तो इन सब चीज़ों से सावधान ज़रूर रहना चाहिए। ये भी साइबर ठगी है और जो सेफ क्लिक अभियान की बात हम कर रहे थे, इसका दूसरा चरण है सेफ क्लिक 2.0। इसके बारे में हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा ये अभियान चलाया गया है और मध्य प्रदेश के नागरिकों को साइबर अपराधों और ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए इसे चलाया जा रहा है। ये जागरूकता अभियान है और इसका उद्देश्य है डिजिटल अरेस्ट, लॉटरी फ्रॉड या अनजान लिंक्स पर क्लिक करने के खतरों के प्रति लोगों को सचेत करना। इसकी मुख्य बातें ये हैं कि ये सोशल मीडिया और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को समझाएगा कि कैसे लोग अपने बैंक खाते का विवरण, OTP या पासवर्ड किसी के साथ साझा ना करें। डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचना है, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई विधा या प्रावधान पुलिस के डिपार्टमेंट में नहीं है, ये लोगों को बार

बार समझाई जा रही है। फ्रॉड कॉल्स और फ्रॉड वेबसाइट्स पर बिल्कुल ना जाएं, इससे सावधान रहें, सतर्क रहें। यदि फिर भी किसी ऐसे मामले में आप फंस रहे हैं तो तत्काल शिकायत का भी एक नंबर इस अभियान के तहत दिया गया है। बल्कि ये जो नंबर है ये साइबर अपराधों का की शिकायत करने के लिए नंबर है। ये नंबर है 1930 1930। ये नंबर याद रखिए, जब भी किसी तरह की शिकायत करनी हो तो यहाँ ज़रूर बताएं। साइबर धोखाधड़ी का यदि आप शिकार हुए हैं या किसी ने आपको शिकार बनाने की कोशिश की है तो ये राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। इस पर कॉल कीजिए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए। कोई यदि आपके साथ ऐसी कोशिश कर रहा है या किसी ने ऐसी बात की है आपके साथ तो नंबर ज़रूर यहाँ दर्ज कराएं। समय रहते आपके पैसों को होल्ड किया जा सकता है यदि आपने शिकायत दर्ज कराई है। जो नोडल बैंकों की बैठक है उसमें भी इस अभियान के तहत साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस और बैंकों के नोडल अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही है, जिससे कि इस तरह के अपराधों को किस तरह रोका जा सकता है, कैसे थोड़ी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, इस पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा यदि आप सेफ क्लिक्स 2.0 के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो AI साइबर सुरक्षा चैटबॉट की जो वेबसाइट है https://safeclicks.in पर जाकर के सारी जानकारी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में पढ़ सकते हैं।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम में तुलिका एक बार फिर हाजिर है आपके साथ। श्रोता साथियों, आपके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सैकड़ों नाम होते हैं, लेकिन आप मुश्किल पड़ने पर किसे फोन करते हैं? दिमाग में कुछ एकाध नाम ही आ रहे होंगे। ये जो एकाध नाम है, यही आपके गहरे दोस्त हैं। बाकी दोस्तों की लिस्ट में जितने भी लोग शामिल हैं, वो सब फेक दोस्तियां हैं। जी हाँ, इन फेक दोस्तियों को ढोते ढोते हम थक जाते हैं, और इसीलिए अब दोस्ती में भी ब्रेकअप का ट्रेंड आ गया है। और ये दोस्ती को लेकर बदलती हुई सोच का संकेत है। एक सर्वे किया गया जिसमें सामने आया कि 67% लोग ऐसे हैं जो ऐसी ही दोस्तियां निभा रहे हैं, जिनमें अब अपनापन नहीं बचा। वो लोग उन दोस्तों से सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि कभी साथ पढ़े थे, कभी साथ काम किया था, या कोई एक ऐसा जीवन का दौर साथ में गुजारा था। 50% से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि दोस्ती का सबसे बड़ा आधार जो है वो शिकायतें हैं, ऑफिस की बातें हैं, पारिवारिक तनाव की बातें हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई, यानी गॉसिपिंग। सिंपल सी चीज़ है कि आप दोस्तों के साथ सिर्फ गॉसिपिंग के लिए मिलते हैं। दरअसल मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जीवन के अलग अलग पड़ावों पर बनने वाले रिश्तों की भूमिका भी बदलती रहती है। स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी पर, जिम या किसी यात्रा में बनी हुई दोस्तियां उस समय तो बेहद मजबूत लग सकती हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, उनमें से कई रिश्ते सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रिश्ते को सिर्फ पुरानी यादों की वजह से या फिर किसी अपराध बोध की वजह से ढोते रहते हैं। ज़्यादा लोगों के साथ एक समान स्तर का भरोसा भी नहीं बन सकता। जुड़ाव बनाए रखना दरअसल व्यावहारिक नहीं होता, इसीलिए दोस्ती में ब्रेकअप को अब बहुत नॉर्मली लिया जाने लगा है। जैसे जैसे हमारे रिश्तों की संख्या बढ़ती है, उनकी गहराई भी कम होने लगती है, यानी हम ज़्यादा गहरे नहीं जुड़ाव हो पाता हमारा। सिर्फ शिकायतों और नकारात्मक बातों पर यदि आपकी दोस्ती टिकी है, तो यकीन मानिए कि ऐसी दोस्तियां आपकी मानसिक थकान बढ़ा सकती हैं। इसलिए

बार बार ये कहा जाता है कि रिश्तों की संख्या पर ज़्यादा भरोसा मत रखिए, ज़्यादा दोस्त हों ये ज़रूरी नहीं है, अच्छे दोस्त हों, गहरे दोस्त हों ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए यदि आप अपने दोस्तों से सिर्फ इसलिए मिलते हैं कि वो किसी की बुराई कर रहे हैं, पूरे समय हम चुगलियाँ कर रहे हैं, तो वो अच्छे दोस्तों में तो बिल्कुल भी शामिल नहीं है। तो आप एक बार पुनर्विचार कीजिए कि दोस्ती कैसी हो, और यदि दोस्ती बोझ है तो वो तो बिल्कुल भी ना हो।

और इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर पीएल गोहदकर का गाया राग अलहिया बिलावल। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं विनय विंदे और सारंगी पर उस्ताद अब्दुल मजीद खान।

करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, फ्लैग मार्च, मतदान केंद्रों की तैयारियों और निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने 20 साल पुराने बैंक एफडी घोटाले के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी, जिससे उनकी सदस्यता रद्द होने से उपचुनाव कराना जरूरी हुआ। उपचुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी की गई। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। नामांकन जांच 14 जुलाई तक और नाम वापसी 16 जुलाई तक की जा सकती है। मतदान 30 जुलाई को होगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ ही नतीजे की घोषणा हो सकती है। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के सफल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को दृष्टिगत रखते हुए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जिले के पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक बीते दिनों आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब रुख करते हैं बारिश की खबर का। मानसून की बारिश शुरू होने के साथ ही दतिया जिले के किसान खरीफ सीजन की खेती में जुट गए हैं। जिले में धान, सोयाबीन, उड़द, मूंग और तिल की बुआई का काम तेजी से चल रहा है। कृषि विभाग किसानों को उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों की सलाह दे रहा है। समय पर बारिश से किसानों के चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा है। हालांकि वे अच्छी बारिश के सिलसिले के बने रहने की उम्मीद लगाए हुए हैं। दतिया जिले में 1 जून से अब तक कुल 494 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 264 मिलीमीटर कम है। दतिया जिला प्रशासन उपचुनाव की तैयारियों के साथ साथ अलग अलग विभागों के माध्यम से राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता और जन कल्याणकारी योजनाओं की नियमित समीक्षा में भी जुटा हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, सड़क मरम्मत, विद्यालयों की व्यवस्थाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। बीते मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक श्री मयूर खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च शहर के मां पीताम्बरा पीठ मंदिर के सामने एक चौराहे से होते हुए गंज राजगढ़ मार्ग, टाउन हॉल, बड़ा बाजार, पटवा तिराहा, किला चौक, दारूगर की पुलिया, बिहारी जी मंदिर और तिगैलिया होते हुए प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा निर्वाचन ड्यूटी में तैनात पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी दतिया की पहचान लगातार मजबूत हो रही है। विश्व प्रसिद्ध माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जिले में सामाजिक जनजागरूकता संबंधी कार्यक्रम भी लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। पौधरोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम, युवा गतिविधियां तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के जागरूकता अभियान लोगों तक पहुंच रहे हैं। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा जिला पुरातत्व पर्यटन तथा संस्कृति परिषद दतिया एवं स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि दो चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में जिले के समस्त शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों द्वारा अपनी टीम का पंजीयन कराया जा सकेगा तथा इस प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में पंजीयन के लिए 25 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन कराया जा सकता है। प्रतियोगिता 7 अगस्त 2026 से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। दतिया के नागरिकों की अपेक्षाएं आज भी विकास, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निर्बाध बिजली, पर्याप्त पेयजल और सुरक्षित वातावरण को लेकर बनी हुई हैं। उपचुनाव के इस दौर में मतदाता केवल राजनीतिक वादों से आगे बढ़कर विकास के ठोस कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियां और तेज होंगी, लेकिन इसके साथ साथ खेती, विकास कार्य, प्रशासनिक सक्रियता और सामाजिक कार्यक्रम भी जिले की प्रगति की दिशा तय करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस लोकतांत्रिक उत्सव के साथ विकास की गति भी निरंतर आगे बढ़ेगी और दतिया नई उपलब्धियों की ओर अग्रसर होगा। दतिया जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे दतिया जिले की चिट्ठी, यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तुलिका।

आशा भोसले और अनवर को अभी आपने फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में सुना। गीत निदा फाजली का था, संगीत खयाम का, पसंद आप सबकी। बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम और कुसुम नेताम, शास्त्री नगर बीड़ शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल। आप हैं पिंगावाला चौक गोरिया जलंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी। फुलजिनचोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बानू बी मुलानी और बादशाह मुलानी। कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर है। आप

हैं धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा।

और आइए अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, पसंद आप सबकी है। आप हैं ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया, तहसील रोड गंजुंडवारा से के एच राही, गुड़िया बेगम वकील और हम्मा जमील, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े, वसंतराव भोजने और पीएस नावकर, गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा, और बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टवूल और पीबी कुल थे। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर मखदूम मोहिउद्दीन की ये रचना, संगीत खयाम का, आवाज़ें लता मंगेशकर और तलत अजीज़ की, फिल्म का नाम बाजार।

अगला गीत आप सबकी पसंद पर है। आप हैं सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा और गिरीश मिश्रा, ग्राम संदलपुर आंतरी से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव, दीपक यादव और चांदनी यादव, हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख और अमन अफरीदी, पोटियागला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर लता मंगेशकर का गाया फिल्म स्वामी का ये गीत। गीतकार अमित खन्ना, संगीतकार राजेश रोशन।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सो योर प्लेस और माइन,
4: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डोम है?
3: कॉन्डोम? लेकिन हम तो
4: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
3: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
5: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर अगला गीत। अमलतास अमरीन होम्स कटारा भोपाल से, योगेश्वर सिंह भारतीय, प्रेमबाई भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, गोपाल भारतीय, कृष्णा भारतीय, न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बावड़िया कला भोपाल मध्य प्रदेश से, डॉक्टर शेखावत सिंह, अमर सिंह, दुर्गा, अमिता और ललिताबाई। आप हैं पिंगावाला चौक गोरिया जलंधर से, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार। गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबद। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। निदा फाजली के गीत को संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने और फिल्म का नाम है स्वीकार किया मैंने।

अभी जो गीत आपने सुना उसे हमने लिया था फिल्म घर से। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत गुलजार का, संगीत राहुल देव बर्मन का था। सुनना चाहते थे आप सब। काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सरोशी, सुषमा सरोशी, परिधि सरोशी, मायरा सरोशी। आप हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और कैफ अंसारी। और गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल और जैनब मुजावर। कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर है। आप हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। आज़ाद रोड सनावत से बेगम सलमा खत्री, सुमैया, आयशा, सादिया, जिक्रा और शादाब खत्री। और वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर स्वयंवर फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। गीत गुलजार का है, संगीत राजेश रोशन का।

ये जो गीत अभी आपने सुना, ये था फिल्म तुम्हारी कसम से आवाज़ें मुकेश और लता मंगेशकर की। इससे पहले जो गीत आपने सुना था वो लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म प्रेम पर्वत से था। इन दोनों ही गीतों की मिलीजुली फरमाइश हम आपको बता दें। आप हैं हयात कॉलोनी अररिया, बिहार से फैज़ल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकबल, नफीसा प्रवीन, जोहानुल हुदा, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और आदिब, और बहरामपुर टेमा खरगोन

प्रदेश से त्रिलोकचंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज आर्यन, बेबी आरोही, यशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा और उनके बहुत सारे साथी। इस गीत के साथ ही फरमाइश फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दृढ़ विश्वास, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच ही सफलता की वास्तविक कुंजी है। सोशल मीडिया पर संस्कृत का एक प्रेरक कथन साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं गुणों से प्रेरित होकर देश के युवा विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। सेफ क्लिक 2.0 अभियान का समापन समारोह कल भोपाल में आयोजित किया गया। समारोह में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पुलिस महानिदेशक श्री मकवाना ने बताया कि 15 दिवसीय सेफ क्लिक अभियान के दौरान साइबर अपराध, नशे के दुष्परिणाम तथा सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 जुलाई तक प्रवेश मेला आयोजित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई। इलाके में भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर फिलहाल नहीं है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, रतलाम सहित 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि विदिशा, उज्जैन, शाजापुर सहित 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और भारत के अर्णव पापरकर विंबलडन जूनियर्स के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। क्वार्टर फाइनल में पापरकर का मुकाबला आज शाम 5 बजे अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारी।
1: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं आज के फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे में। आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आरंभ करें उससे पहले सुनिए मीठी मधुर दिलकश आवाज का ये गीत।

उम्मीद करते हैं आप इस आवाज़ को ज़रूर पहचान गए होंगे, और हमारे जो श्रोता नहीं पहचान पाए हैं उन्हें बता दें कि ये गीत अलका याग्निक की आवाज़ में है। हाल में अलका याग्निक जी को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। हम सभी के लिए और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी अत्यंत गौरव का क्षण था वो।

लेकिन क्या आप जानते हैं पिछले कुछ वर्षों से अलका याग्निक की आवाज नए गीतों में हम क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? जून 2024 में खुद अलका याग्निक ने सार्वजनिक रूप से बताया कि उन्हें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस यानी अचानक सुनाई देना बंद हो जाना, यह एक दुर्लभ श्रवण विकार है जिसमें कान के भीतरी भाग या श्रवण तंत्रिका को नुकसान पहुंचता है, जो वायरल संक्रमण, लंबे समय तक अधिक तेज आवाज के संपर्क में रहना, बढ़ती उम्र, कुछ दवाइयों के दुष्प्रभाव आदि जैसे कारणों से होती है।

0: तो चलिए जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर से और सुनते हैं कि वे क्या कहते हैं इस बारे में।
1: लेकिन हमेशा वो याद आते हैं।
0: हेलो,
2: नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कार्यक्रम में बात आपकी, गीत हमारे।
2: जी मैम, संतोष कुमार राव बात कर रहा था, बीरसिंहपुर पाली उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: जी संतोष कुमार जी, स्वागत। और आप हमारे बहुत ही नियमित श्रोता है, कैसे हैं आप?
2: जी जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम जी, क्योंकि आपके कार्यक्रम से लगातार जुड़ाव रखते हैं, आपको पता है कि आप हम आपकी नियमित श्रोता हैं।
0: जी बिल्कुल। तो आज है कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे, और हमारा आज का विषय है कि कहीं आप तेज आवाज सुनने के आदि तो नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि तेज आवाज में हम टीवी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, या कहीं डीजे बजता है, तो आप कितनी रेंज की आवाज में गीत संगीत को सुनते हैं?
2: जी तेज ध्वनि का हमेशा ही, मतलब अगर देखा जाए तो इसका असर हमारे खास करके मवेशियों में पड़ता है, बच्चों में पड़ता है, और खास करके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें तेज मतलब आवाज अगर सुनाई देता है तो उनको बहुत ज्यादा समस्याएं आती है, खास करके हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स भी उसमें से उत्पन्न होती है, और कान में सुनने की क्षमताएं भी कम होती है। तो तेज स्पीकर का हमें आविष्कार करना चाहिए, मतलब कि उसे थोड़ा सा एनर्जी दूर करना चाहिए, क्योंकि जो तेज स्पीकर होते हैं हमारे बहुत सारी समस्याओं को भी लेकर उत्पन्न कर देते हैं मैडम जी। खड़ी है
0: जी जी। और आजकल हम देखते हैं कि अक्सर जो नई युवा पीढ़ी है वो हमेशा हेडफोन लगाए रखती है, मोबाइल से अटैच्ड रहती है, और वो न जाने कितनी तेज आवाज में सुनते हैं, तो इस बारे में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं?
2: जी जो हेडफोन का उपयोग करते हैं खास करके उनके जो सुनने की क्षमता होती है, आजकल हम लोग देखते हैं जैसे कि जिस प्रकार से भी हमने देखा है, अलका जी को देखा है, अलका याग्निक के एक मुख्य कलाकार, मतलब अभिनय में जो उनकी आवाज थी शैली बोलने की और गाने में इतना उन्होंने मधुरता लाई है, तो उनकी देख वो सुन भी नहीं सकती हैं और खड़े भी नहीं हो सकते, तो ये जो तेज ध्वनि के कारण ही ये सब कुछ उत्पन्न होते हैं, ये सारी समस्या। तो युवा पीढ़ी जो है खास करके हेडफोन लगा करके बातें करते हैं, गाने भी सुनते हैं,

0: और इसे इंजॉय के रूप में लेते हैं, तो ऐसा ना करें, ये हानिकारक है और इससे बचाव रखेंगे तो अपने शरीर को खुद मेंटेन पाएंगे आप।
1: बिल्कुल, हमारी जो कार्यक्रम में आरंभ में जो हमने बात कही थी वही बात आपने इस कॉल में कह दी है कि अलका याग्निक जी बहुत बेहतरीन उदाहरण है इस बात का कि आज विधि की विडंबना देखिए कि जो गीत उन्होंने गाए हैं वो खुद नहीं सुन पाती है, कितनी अफसोस की बात है।
0: जी बिल्कुल मैम, इसीलिए और खास करके हमारे जो युवा मतलब हम जैसे युवा वर्ग की बात करते हैं, हम लोग तो ट्रांजिस्टर पर आपका कार्यक्रम सुनते हैं और जो रेडियो की बातें होती है, रेडियो की धुनी बहुत धीमी होती है और जितनी भी सुनी जाए वो कम पड़ जाती है, रेडियो की धुन बहुत प्यारी होती है और रेडियो की वॉल्यूम बहुत तेज नहीं होती है। रेडियो ने बहुत कुछ हमें दिया है और जो कार्यक्रम चलता है बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम, इसके माध्यम से हम सभी युवाओं से भी अपील करना चाहते हैं कि हेडफोन की दूरी बनाए रखें, डीजे पर थोड़ा सा डीजे का वॉल्यूम कम करके अगर डांस कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, इससे हमारे जो घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग होते हैं इनमें इनकी देखभाल जरूर करें और इसका ध्यान अवश्य रखें कि घर में बड़े बुजुर्ग भी उपलब्ध होते हैं।
1: जी, वो भी रहते हैं और कई बार ये होता है कि जहाँ डीजे बजता है उससे कितनी दूरी तक जो आवाज जाती है उससे भी कितने लोग परेशान हो जाते हैं कई बार, तो हमें भी इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हम ध्वनि प्रदूषण ना फैलाएं।
0: जी बिल्कुल मैम, और मैम बताऊं आपसे कि जैसे पेड़ों में रहने वाले पक्षी होते हैं, खास करके जब रात में डीजे बजता है उसकी रोशनी जाती है तो उनमें भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, वो लोग भी थोड़ा सा उनके अंदर भी थोड़ा सा वो रात में जाग जाते हैं क्योंकि रात में सोने की अवस्था होती है उनकी,
1: बिल्कुल
0: तो पशुओं में भी असर पड़ता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि पशु पक्षी होते हैं उनमें भी श्रवण शक्ति तो आखिर होती ही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज उन्हें भी नुकसान पहुँचाती है।
0: जी बिल्कुल मैम।
1: जी धन्यवाद संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार
0: जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कार्यक्रम है बात आपकी, गीत हमारे, स्वागत करते हैं, अपना नाम बताइए।
1: नाम हमारा गिरधारी सेन है, दमोह से बोल रहे हैं
0: जी। गिरधारी जी स्वागत है, पहली बार फोन लगाया आपने?
1: नहीं हम तो लगाते रहते हैं, लेकिन ये है कि हफ्ता 15 दिन में या पर महीना खाने से हो जाते हैं।
0: बराबर है, बराबर है। कैसे हैं आपके हाल चाल बताइए।
1: बढ़िया बढ़िया है मैडम,
0: बढ़िया है। तो आज जानते हैं आप, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में क्या बातचीत होती है और
1: आज का टॉपिक क्या है?
0: आज का टॉपिक है कि कहीं आप तेज आवाज में गीत संगीत सुनने के आदि तो नहीं है, और उसके क्या लाभ है क्या नुकसान है। लाभ तो कम ही है, क्या नुकसान हो सकते हैं
1: उसका? ये है ना मैडम जी की अगर जैसे अपन पड़ोस में सुन रहे हैं तो डिस्टर्ब होता है, जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बाजू में तो उनका भी डिस्टर्ब होता है, और जैसे अपन शौकीन हैं अपने संगीत के तो अपने इतने से लोग बजाओ कि अपने तक सीमित रहे, दूसरों तक डिस्टर्ब ना हो।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, ये बात सही है कि हमारी वजह से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
1: जी जी मैडम, और
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी सिंह जी आपका, नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हाँ हाँ, मैं ग्राम बालोड़ा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ।
0: जी कन्हैयालाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है।
0: बढ़िया है, आज कार्यक्रम
1: आनंद ले रहे हैं।
0: अच्छा, बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बात
1: जी।
0: है।
1: हाँ, बारिश हो रही है ना अभी, हल्की हल्की बूंदाबांदी।
0: हाँ, वही हम पूछने वाले थे कि झमाझम हो रही है या हल्की फुल्की हो रही है।
1: हाँ, हल्की हल्की हो रही है अभी, क्योंकि अभी तो अलर्ट हो रहा है अभी तो, इधर दिल्ली में नहीं, इधर था अभी समाचार में देख के आया।
0: जी जी जी तो कन्हैयालाल जी, आज के कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, तो हमारे विषय पर हम आपके विचार जानना चाहते हैं कि तेज आवाज में गीत संगीत सुनना, उसके क्या नुकसान है और इससे कैसे बचना चाहिए?
1: क्या वारिस है
0: तेज आवाज में गीत संगीत या कोई भी, हम जैसे टीवी भी देखते हैं तेज आवाज में सुनते हैं, रेडियो है, डीजे गीत संगीत वगैरह इत्यादि जो भी चीजें होती है ना,
1: इससे क्या हो कि उसमें ध्वनि प्रदूषण होता है और कम आवाज करेंगे तो उसमें क्या है कि किसको दिल का अटैक है तो वो उसमें क्या है कि बहुत मतलब परेशानी आती है और कभी डेथ भी हो जाती है उसकी।
0: जी
1: ऐसा ऐसा भी है, हमारे गांव में हुआ है कि जो डीजे बज रहा है था ना, वहाँ पे क्या लगे हुए थे, जहाँ शादी चल रहा है था, फिर बाद में क्या हुआ कि उसका अटैक की बीमारी थी तो वो ज्यादा ध्वनि थी, ध्वनि के कारण उसका डेथ हो गई।
0: जी, हम अक्सर समाचार पत्रों में भी ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि डीजे के तेज संगीत के कारण इस तरह के प्रभाव हुए हैं,
1: ये हानि होती, नुकसान होता है।
0: जी जी जी जी जी, धन्यवाद कन्हैयालाल जी आपका, शुक्रिया।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, पीछे से रेडियो की आवाज़ बहुत तेज आ रही है, कृपया उसे कम कर दीजिए।
1: जी जी जी
0: जी।
1: आज फोन करेंगे, सुने हैं कि बात आपकी गीत हमारे,
0: आज बात आपकी गीत हमारे है और हमारा विषय भी यही है कि जो अभी हमने आपको हिदायत दी कि रेडियो की आवाज कम कर लीजिए, तो आज विषय भी उसी से संबंधित है कि तेज आवाज में सुनने के क्या नुकसान है। पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी बोला जी, अम्बेडकर चौक से अग्रवाल खुराई से परमानंद बोल रहा मैम।
0: जी परमानंद जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: जी तो आवाज से आजकल कान देखो जी, कहीं जैसे स्कूल वगैरह है वहाँ हॉर्न वगैरह ना बजाए। दूसरी बात जी, आजकल हमने देखा है छोटे बच्चे बच्चे और जो भी रहते हैं हेडफोन लगा लेते हैं, उनके कानों पर असर पड़े। और अभी अभी एक सूचना मिली है अलका याग्निक के कान शायद, मतलब ऐसी रिपोर्ट आई है हमने देखा है कि उनके कान बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। तो उनसे सीख लें और कम आवाज में अपना काम करें और कम आवाज में आपके रेडियो वगैरह साउंड है, आपकी डीजे वगैरह, अपन बारात में जाते हैं तो कितनी धम धम की आवाज आती, दिल बिल्कुल धड़कन रोकने की, मतलब
0: मतलब हम वहाँ खड़े रहते हैं तो हमारी भी धड़कन उतनी ही तेजी से चलने लगती है उस आवाज को सुनकर।
1: बिल्कुल घटना दुर्घटना हो चुकी और होती भी है,
0: होती भी है बिल्कुल है। और इससे ये होता है कि हमारी सुनने की शक्ति तो कम होती ही होती है, साथ ही साथ हमारे दिल पर भी कितना बुरा असर होता है इसका,
1: और खतरनाक असर पड़ता है डीजे वगैरह।
0: तो आप तेज आवाज में सुनते हैं या कम आवाज में सुनते हैं?
1: हम तो रेडियो कम आवाज में सुनते हैं, वही चल रहा था प्रोग्राम,
0: अभी तो हमें सुनाई दे रही थी तेज आवाज।
1: हाँ, एफएम चल रहा था।
0: हाँ जी हाँ, चलिए कोई बात
1: आप
0: नहीं,
1: तो प्रोग्राम भी सुनते रहते
0: जी, जी। परमानंद जी सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम और अपने कानों का और अपने दिल का ख्याल रखते हुए खुद भी कम आवाज में सुने और दूसरों को भी कम आवाज में सुनने की सलाह दे। धन्यवाद जी।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, स्वागत है आपका।
1: जी, हम ग्राम छात्र तहसील उदयपुरा से भगत जी बैरा की बात कर रहे हैं जी।
0: जी बैरागी जी, स्वागत है, कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे।
1: बात आपकी आ रही में। हाँ जी, तो फिर आज को विशेष
0: आज का विषय है कि तेज आवाज में जब आप सुनते हैं तो उसके क्या नुकसान।

0: इंसान ही और उससे कैसे बचना चाहिए।
1: तेज आवाज में सुनते हैं तो हमें बहरापन हो जाता है।
0: और
1: फिर इस चश्मा की संबंधित बीमारी है, जैसे देर में हर एक बात सुनना, देर में बात को समझना
0: विषय है। बस हम तो यही के पूछना चाहते हैं कि जो हमारा आज का विषय है उस पर आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कि जिससे वो इसके नुकसान से बच सके।
1: जैसे हमें हेडफोन लगा के गाना नहीं सुनना चाहिए, अधिकतर गाना हमें दूर से सुनना चाहिए। और कोई कोई तो हेडफोन लगा के सो जाता है और कान में मोबाइल चलत रही था और भी सो जाता है और एकदम से भी उठाता है तो दिमाग की संतुलन खो बैठा था भी।
0: बराबर, बिल्कुल बहुत सही बात कही।
1: हमें हेडफोन लगा करके गाना नहीं सुनना चाहिए
0: जी, आजकल
1: दूर से सुनो।
0: बिल्कुल, आजकल बच्चों में ये आदत देखी जा रही है कि ईयरफोन लगा लिया और सुनते सुनते नींद लग गई उनकी। और
1: गाना सुनते सुनते नींद तो
0: समझ कर जी हाँ,
1: मोबाइल चार्ज पे लगा दो के बाद मैं सो जाओ।
0: बिल्कुल, और इसके कारण कई बार ऐसा होता है कि उसकी जो गर्म वेव्स, जो हीट निकलती है वो कानों में अंदर हमें नुकसान दे जाती है कई बार।
1: वैसे तो आजकल आदमी गाड़ी भी चला रहा है तो हेडफोन लगा कर चला रहा है।
0: कितनी गलत बात
1: जैसे कहूँ, फोन गाड़ी पे कम फोन पे ज्यादा जाते तो एक्सीडेंट इसी समय हो जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने
1: जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार
1: जी। नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। नमस्कार
1: जी। नमस्कार मैडम जी,
0: बताइए अपना नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी? मैडम जी, मैं तहसील चंदवा मध्य प्रदेश से देवीदास वड़ीले बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी देवीदास जी, कैसे हैं आप
1: जी? बढ़िया हूँ मैडम जी। और रिमझिम बरसात हो रही है।
0: तो ये जो बरसात की बूंदे है, इसकी आवाज, इसकी आवाज आपके कानों को क्या कहती है, कुछ हमें बताएंगे?
1: अभी पानी आ रहा है, रिमझिम बरसात अच्छी बढ़िया हो रही है। और बरसात का मजा ले रहे हैं मैडम जी,
0: ले रहे हैं। तो
1: और
0: इसकी
1: बेटे बेटे आपके जो रेडियो से जो गाने आ रहे हैं वो भी सुन रहे हैं।
0: सुन रहे हैं जी। तो ये जो बरसात की रिमझिम आवाज है, ये कानों को सुकून दे रही है आपको?
1: हाँ दे रही ना मैडम जी,
0: दे रही है। और जब यही आवाज बादलों की गरज के रूप में जब आपके सामने आपके कानों में पड़ती है, तब कैसा लगता है आपको?
1: बढ़िया लगता है मैडम जी एकदम। ये बरसात का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है, लेकिन उस गरज से, बादल की गरज से आपको ऐसा नहीं लगता है कि कानों पर कुछ प्रभाव होता है, अच्छा बुरा?
1: हाँ मैडम जी, जो ज्यादा जब एकदम तेज बिजली कड़कती है, जब कुछ असर होता है।
0: देवीदास जी, आज हमारा विषय भी यही है कि जब तेज आवाज हम सुनते हैं तो उसके क्या नुकसान है।
1: मैडम जी, ज्यादा तेज आवाज आए तो अपने वो सावधानी बरतना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ जो आता है ध्वनि प्रवाह से थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। और थोड़ा जो अपने जो कान में जो है, थोड़ा बहुत कैसा जो रुई के सहारे थोड़ा बहुत सावधानी वापरना चाहिए।
0: बिल्कुल। तो जब बादलों की तेज गरज जब होती है, तब भी ये होना चाहिए कि हमें अपने कानों को थोड़ा सा सहारा दे देना चाहिए, हाथ रखकर, ताकि तेज आवाज प्रभावित न करें,
1: जी मैडम जी,
0: है ना? और आपने बताया कि आप इसके साथ रेडियो भी सुन रहे हैं, तो कहीं बारिश की आवाज में आपने रेडियो की आवाज तेज तो नहीं कर दी है?
1: नहीं मैडम जी, जो पहले जो रेडियो चलते थे दिन भर के, उसमें जो खरखर की आवाज आती थी मैडम जी, जैसे बिजली का आवाज जो खड़कती थी, तो उसमें रेडियो की बहुत मतलब एकदम मिट्टी बताता है
0: जी,
1: जो बिजली की आवाज वो रेडियो में करती थी। और अभी जो परिवर्तन हुआ है मैडम जी, जो मतलब परिवर्तन जो हुआ है तो बहुत बढ़िया हुआ है। और जो हम अभी जो डिटेल से सुनते हैं मैडम जी,
0: मोबाइल पर सुनते हैं आप रेडियो? तो ईयरफोन
1: सुनते हो? जो डिटेल मैंने लगा रखा है।
0: तो ये बताइए कि जब आप मोबाइल पे रेडियो सुनते हैं, तो उसे ईयरफोन पे हेडफोन लगाकर, ये ब्लूटूथ वाला हेडफोन लगाकर सुनते हैं, या नॉर्मल आवाज में सुनते हैं मोबाइल पर रेडियो?
1: मैडम जी, मैं मोबाइल से नहीं सुनता मैडम जी, वो जो डिटेल लगा कर रखा है मैंने, और जो दो डीजे मैंने बना कर रखा है उसमें सुनता मैडम जी, बहुत मजा आता है और बहुत एकदम साफ सुथरा आता है।
0: साफ सुथरा आता है ना, बिल्कुल। तो ऐसी ही धीमी आवाज में और सुरक्षित माहौल में हमें अच्छा गीत संगीत सुनना चाहिए। धन्यवाद देवीदास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।

0: हेलो,
1: हेलो मैम।
0: हाँ जी नमस्कार, कार्यक्रम में बात आपकी गीत हमारे।
1: नमस्ते,
0: कौन बात कर रहे हैं? स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: हीरू पड़ियार
0: जी जी बिल्कुल, आप पास जो शोर हो रहा है उससे आपको परेशानी नहीं हो रही है क्या? आपके आसपास बच्चे बात कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं।
1: हाँ
0: तो आपको कुछ परेशानी नहीं हो रही है क्या उनकी आवाजों से, इतनी तेज आवाज से?
1: हाँ थोड़ी कम कम आ रही आवाज।
0: हाँ, और पीछे से देखो रेडियो की भी आवाज हमें आने लगी, तेज हो गया रेडियो।
1: हाँ।
0: तो इसके क्या नुकसान है जब ये तेज आवाज में हम सुनते हैं, तो ये बताइए। तो जब हम बारिश की आवाज के साथ में जब रेडियो आप सुनते हो, तो रेडियो की आवाज आपको बढ़ानी पड़ जाती होगी ना?
1: हाँ मैम,
0: तो फिर ये कानों को नुकसान नहीं देती है आपको क्या?
1: मतलब हम ज्यादा नहीं सुनते हैं इसमें।
0: अच्छा।
1: हाँ
0: और ये जो आसपास गीत संगीत कई बार डीजे में बजता है शादी में पार्टी में, तो उसको उससे कभी आपको कोई

0: परेशानी हुई है?
1: हाँ जी मैम, ज्यादा ये डीजे वगैरह सब चलता है तो इसे ज्यादा अपन के ऐसे धड़क धड़क करता है, तो हम तो दूर ही रहते हैं इससे, मतलब पास पास में नहीं जाते।
0: और जब बच्चे घर के आंगन के बाहर खेलते हैं और बहुत शोर मचाते हैं तब आप क्या करते हैं?
1: हाँ वो उनको डांट देते हैं,
0: डांट देते हैं,
1: परेशान करते हैं तो।
0: क्यों क्यों डांट देते हैं?
1: डांट देते हैं, लड़ देते हैं, जोर से मत चिल्ला चोट करो, धीरे धीरे खेलो करके।
0: बिल्कुल, ताकि क्या है कि बच्चे जब चिल्ला चिल्ला के खेलते हैं तो उनका गला भी खराब होता है।
1: हाँ,
0: उनकी
1: वो
0: आवाज
1: समझते नहीं मैम।
0: हाँ जी, उनकी आवाज भी खराब होती है और दूसरा जब वो चिल्लाते हैं तो दूसरों को ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि घर में हम आराम कर रहे होते हैं या हमारा मूड अच्छा नहीं है तो हमें चिड़चिड़ाहट होती है।
1: हाँ तो ऐसे कहने जाते मैम, तो फिर उनको माँ बाप अपन को फिर चिल्ला चोट करते, इनके बच्चे उनको नहीं मतलब अक्ल देते।
0: बराबर है, तो आप बिल्कुल
1: अपन सही बात बोलते तो उनको बुरा लगता है।
0: बिल्कुल, आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि तेज आवाज के क्या फायदे या क्या नुकसान है। तो बातों बातों में आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

श्रोताओं, आज के विषय पर आपसे बात करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जितना हो सके हाई रेंज में गीत संगीत सुनने से बचें।

आजकल शादी पार्टी में बजने वाला डीजे का गीत संगीत हमारे कान के पर्दों को अंदर तक हिला देते हैं। कई बार टीवी देखते समय, रेडियो सुनते समय तेज आवाज हमारी श्रवण क्षमता को धीरे धीरे प्रभावित करती है। मॉर्निंग वॉक

पर जा रहे, गाड़ी चला रहे हैं तो कानों में ईयरफोन हेडफोन आजकल आम तौर पर चलन में देखा जा रहा है। भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर आंगन में गूंजती किलकारी की खुशी आप महसूस न कर पाए, कहीं ऐसा ना हो कि अपने बच्चों की तरक्की उनकी मुंह जबानी सुनकर आप अपनी आंखों में खुशियों का पानी न भर पाए, कहीं ऐसा ना हो कि कम सुन पाने या ना सुन पाने की वजह से अपने जीवन की अनमोल खुशी से आप वंचित रह जाएं।

जरा महसूस कीजिए अलका याग्निक जी का वो दर्द कि जब पद्मश्री सम्मान के लिए उनका नाम पुकारा गया और वो खुद सुनकर उस खुशी को महसूस नहीं कर पाई। आज की युवा पीढ़ी से विशेष आग्रह करते हैं कि ईयरफोन हेडफोन का उपयोग कम करें, अपना पसंदीदा गीत संगीत आवश्यक हो उतनी ही रेंज की आवाज में सुने। लाइव कॉन्सर्ट की आज की उनकी खुशी कल के सपनों को धूमिल ना कर दे। जागरूकता के साथ अपनी श्रवण क्षमता को महत्व दीजिए और इस गीत को सुनते हुए अनुमति दीजिए आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका को आज का कार्यक्रम यही समाप्त करने की। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में उच्च स्तरीय भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और आर्थिक कार्ययोजना कार्यक्रम के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बहुप्रतीक्षित तीसरे वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में 11 और 12 तारीख को नागपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठक के दौरान परिवहन

क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जा रहे तरीकों का आदान प्रदान और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने सेफ क्लिक 2.0 अभियान के समापन समारोह में बताया कि 15 दिवसीय इस अभियान के दौरान साइबर अपराध, नशे के दुष्परिणाम तथा सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई। इलाके में भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। ये गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। सबसे पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म आशिक से। गीत को सुरों से सजाया मुकेश ने। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है औरंगाबाद से। श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि राजेश। अगले श्रोता इंदौर से हैं श्रद्धा शर्मा, आयुष शर्मा, पुष्पेंद्र शर्मा, विपिन मिश्रा और आशा शर्मा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मेला से। ये खूबसूरत गीत लिखा है शकील बदायूं ने, गीत को संगीतबद्ध किया नौशाद ने। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सिंहपुर बड़ा से, श्रोता हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। अगले श्रोता कनेरा पटियाला से हैं, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। चलिए श्रोताओं सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म अभिलाषा से। गीतकार है मजरू, संगीतकार है आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है नेपाल पैलेस सागर से। श्रोता हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। अगले श्रोता खंडवा ग्राम लोहारी से हैं, राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला, गायत्री। अगले श्रोता खुर्दी रोड मानपुर से हैं, विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

फिल्म शिकारी से अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है रजावत कॉम्प्लेक्स एमपी शाजापुर से। श्रोता है मनमोहन रजावत, राज, मधु, राशि रक्षित, चित्रंजन कमल उमेश, सरोज आरती कमल, रितिका रिचा स्वीटी सागर और ऋषभ रजावत। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह के स्वर में आप सुनेंगे फिल्म बाहर आने तक से। गीत लिखा इंदिवर ने, संगीतकार राजेश रोशन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है घंटागढ़ चौक खंडवा से। श्रोता है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। अगले श्रोता महादेव घाट अमलेश्वर से हैं, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। अगले श्रोता भाटापारा दत्तरेंगी से हैं, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा।

अलका याग्निक के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे। फिल्म का नाम दिल का रिश्ता। गीत लिखा समीर ने, संगीतकार है नदीम श्रवण। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है डोगर गांव छत्तीसगढ़ से। श्रोता है राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। इन्हीं के साथ हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। अगले श्रोता बनियापारा धमतरी से हैं रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, खुशी, शरद और पूजा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा।

0: jitter.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर.

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक हंसना मना है का 8वां भाग।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: दोस्त विनय,
2: हाँ जी बोलिए।
1: एक बात बताओ।
2: जी जी।
1: अभी 4-5 दिन पहले मैं सूट पहन के,
2: अच्छा
1: बढ़िया टाई सूट नया और जूते में पॉलिश वगैरह, ऐसा सब बढ़िया टिप टॉप बन के सब्जी बाजार गया।
2: सब्जी बता।
1: हाँ, अच्छा। आलू लेना था, भटा लेना था और वगैरह वगैरह धनिया मिर्ची वगैरह। लेकिन एक बात बताऊं, आलू महंगा मिला, भटा महंगा, गोभी महंगी, हरी धनिया मिर्चियां, जितनी भी सब्जी मैंने खरीदी सब महंगी मिली।
2: अरे
1: सब महंगी। हाँ, और जब 2 दिन के बाद सूट मैंने नहीं पहना, मैंने क्या किया, एक पुराना सा मेला कुर्ता था मेरे पास, भटा पैजामा था,
2: क्या बात है,
1: एक रद्दी वाली स्लीपर थी, उसको पहन के मैं सब्जी लेने गया। अरे भैया, आलू सस्ता, भिंडी सस्ती,
2: भिंडी सस्ती,
1: गोभी सस्ती,
2: सस्ती,
1: ये हमारे आज तक नहीं समझ में आया कि लोग सूट जो पहन के आते हैं उनको महंगा क्यों देते हैं। हाँ यार, हमको महंगा दिया, और जब हम आपका कुर्ता फटा वाला पैजामा वगैरह पहन के गए तो हमको सस्ता दिया यार उन्होंने,
2: सस्ता दिया।
1: हाँ,
2: ये तो कपड़ों का असर लगता है हमको भैया, ऐसा लगता है कि सूट के कारण आपको महंगा दिया।
1: हाँ?
2: और फटे कुर्ते के कारण आपको सस्ता कर दिया।
1: हाँ?
2: औकात देख के।
1: हाँ?
2: अब आप तो एक काम कीजिए,
1: बोलिए,
2: कटोरा लेके चले जाते तो सब्जी फ्री में मिल जाती। एक साहब शौकीन तबीयत के थे, हमेशा अच्छा खाना और अच्छे पहनने पर ज्यादा विश्वास रखते थे, और शौकीन तबीयत के होने के कारण कभी कभार ड्रिंक वगैरह का भी शौक करते थे, और काफी इस तरह के शौक पालते पालते 4 दोस्त और यारों के बीच में काफी प्रसिद्धि पा गए कि साहब फला और अमुक व्यक्ति तो इतने ज्यादा शौकीन है कि इनके सामने खाने पीने की कोई भी वस्तु ला के रख दी जाए और इनकी आंख में पट्टी बांध दी जाए तो ये बिना देखे सिर्फ सूंघ कर ये बता सकते हैं कि ये कौन सा पदार्थ हमारे सामने रखा हुआ है। तो ये तो साहब बहुत अच्छी बात है, एक बार उनकी परीक्षा ली जाती है, आंख में पट्टी बांध दी जाती है, उनके सामने एक कप प्याली ला चाय की रखी जाती है, अब बोला जाता है कि साहब बताइए क्या है, आप फौरन सूंघ के बताते हैं साहब ये चाय है, दूसरे सेकंड में उनके सामने कॉफी का प्याला आ जाता है, बोले साहब ये बताइए ये क्या है, बोले साहब ये कॉफी है, तीसरे सेकंड में उनके पास टमाटर सूप का एक मग आ जाता है, बोले साहब ये बताइए ये क्या है, आप आंख में पट्टी बांधे लगातार सूंघ के बताते जा रहे हैं, बोले साहब ये टमाटर सूप है, उसके बाद एक ड्रिंक का पैग उनके सामने लाया जाता है ग्लास में भर के, बोले साहब ये क्या है, आप फौरन कोई ऐसा नाम बता देते, बोले साहब ये हेड वाइपर है, ये ब्रोक राइटर है, ये रूम साइटर है, ये जूनिक बॉक्स है, बोले साहब ये तो हर टाइप का ब्रांड पहचानते हैं, एक ग्लास में खाली पानी भर के इनको दे दिया, बोले साहब बताइए ये कौन सा ब्रांड है, अब पानी को जैसे ही सूंघते हैं उसको दोबारा सूंघने की आवश्यकता महसूस करते हैं, उसके बाद ग्लास रख देते हैं और फौरन बोलते हैं साहब ब्रांड जरूर नया है लेकिन मार्केट में ज्यादा दिन चलेगा नहीं। गीत और संगीत के बहुत सारे जोक्स और ऑब्जर्वेशन आपने सुने होंगे, मैं एक ऐसा म्यूजिकल आइटम प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें एक अंग्रेज जो कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखता था और हमारे देश में काफ़ी समय से रह रहा था तो टूटी फूटी हिंदी भी बोल लेता था, लेकिन कुछ भजनों और गीतों को, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत पुरानी है

और इसके लिए वो कई गीतों को पसंद किया और उन गीतों को वो अपनी भाषा में कुछ अंग्रेजी का समावेश करके कुछ हिंदी के शब्दों का चयन करके आप तक पहुंचाया करता और जो उसको पसंद था तो वो लोगों को सुनाया करता और लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते। वही कुछ बातें हमने भी सुनी, आपकी प्रस्तुत आपकी नज़र कर रहा हूँ। सबसे पहले अंग्रेज एक भजन प्रस्तुत कर रहा है, मैं आपको वो ओरिजिनल भजन सुनाने जा रहा हूँ, वो भजन कैसा है और उसके बाद उसकी दो लाइनों के बाद वो अंग्रेज अपने अंग्रेजी शब्दों के समावेश के साथ उस भजन को कैसे प्रस्तुत कर रहा है, दोनों बातें एक साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

और इस सुंदर से भजन को अंग्रेज महोदय ने जिस समय गाना शुरू किया तो अपने शब्दों के समावेश के साथ वो किस तरह गा रहे, देखिए उनका अंदाज कुछ और है और वो उस तरह के भजन को अपने अंदाज में किस तरह सुना रहे हैं, एक बार फिर से

भजन तो हमको आपका बहुत पसंद आया है, लेकिन आप कुछ ऐसा कोई गीत सुना सकते हो तो साहब हमें बड़ा मजा आएगा। अंग्रेज साहब ने किसी हिंदी फिल्म के गीत को सुनाने का प्रयास किया, उसमें भी कुछ अपने शब्दों का समावेश किया। तो देखिए, हिंदी फिल्म का किसी हिंदी फिल्म का कोई अच्छा सा गाना जो शायद आ चुका हो या आने वाला हो, आपकी नज़र कर रहे हैं अंग्रेज साहब,

दिया और अंग्रेज ने इस गीत को कैसे आप सभी के सामने, हम सभी के सामने प्रस्तुत किया, ये अंदाज प्रस्तुत कर रहा हूं। अंग्रेज इसी गीत को कैसे प्रस्तुत करेगा, अंग्रेज अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में।

0: हंसना मना है,
1: हंसना मना है,
0: अरे हंसना मना है,
1: हंसना मना है।
0: कोशिश कोई लाख करे कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
1: हंसना मना है।
0: माहौल शादी का हमारे पूरे भारतवर्ष में समय समय पर होता आ रहा है और विगत हजारों सैकड़ों हजारों साल से होता आ रहा है ये माहौल शादी का। जब शादी के माहौल की हम एक जब शुरुआत करते हैं, लड़की को देखने का सिलसिला शुरू होता है, लड़का आता है लड़की को देखता है और फिर सगाई होती है, लगुन भेजी जाती है, फिर शादी की और भी बहुत सारी रस्म पूरी होती हैं, तो इस सब माहौल को देख के बड़ा आनंद आता है। अब विश्वास करिए कि जब कभी भी आप किसी की शादी में जाते हैं मेहमान बनके उसके निमंत्रण पर, तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि जब आप किसी की शादी में जाते हैं तो आपको अपनी शादी की बात जरूर याद आती होगी। जो कुंवारे हैं उनको तो खैर नहीं आती, क्योंकि वो तो खैर बेचारे सपने देखते रहते हैं कि काश हमारी शादी होती, न जाने कब हमारी शादी होगी। लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उनको दूसरे की शादी देख के अपनी शादी की जरूर कहानी याद आती है। तो कुछ इसी तरह की बात मैं आपको सुना रहा हूं कि मेरी शादी में क्या क्या हुआ, ये मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि अभी कल ही मैं एक की शादी में गया था। बड़ा बढ़िया खाना पीना बना था, दूल्हे राजा बैठे थे, दुल्हन साहिबा आई, बहुत आनंद आनंद हुआ, गाना बजाना भी हो रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जो मेरी अपनी शादी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई हैं, वो परेशानी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, परंतु आप सभी से ये निवेदन है कि आप किसी को बताएं ना कि मेरी शादी में क्या क्या परेशानी हुई है, क्योंकि आप हमारे अपने हैं, आप हमारी आकाशवाणी के हैं, हम आकाशवाणी के हैं, आप हमारी आकाशवाणी के हैं, हम सभी फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन हमारी बात आप किसी को बताइएगा नहीं, है ना। चलिए ठीक है, तो मैं सुना रहा हूँ अपनी शादी की कहानी। हमारी बारात चली जबलपुर शहर से, चलती गई चलती गई चलती गई गुजरात पहुंची। जब गुजरात हमारी बारात पहुंची तो हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने हमारे ससुर को यानी होने वाले ससुर को पत्र के माध्यम से यह सूचना दे दी थी कि मेरा लड़का जो दूल्हा बन के आ रहा है वो कार में नहीं बैठेगा, जीप में नहीं बैठेगा, ना तांगे घोड़े पे बैठेगा, वो सिंगल घोड़े पे जरूर बैठेगा, इसलिए घोड़े की व्यवस्था की जाए। ठीक है साहब, हमारे ससुर साहब बड़े सीधे साधे थोड़ा पहलवान हैं, उनकी वैसे तो थोड़ा बुद्धि में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उनकी बालकनी लोग कहते हैं कि खाली है। तो ठीक है साहब, कहानी आगे हमारी शादी की बढ़ती है। घोड़े का इंतजाम किया गया, वो घोड़ा किसी के घर का नहीं था, सर्कस का घोड़ा था। अब सर्कस का घोड़ा दूल्हे के लिए बुलवाया गया। हम जैसे ही उस घोड़े पे बैठे, बैंड बाजे बजे, तो बैंड जब बजते थे तो वो घोड़ा नाचने लगता था, और जब वो नाचे तो हम गिर पड़े।

बताइए, दूल्हा अगर घोड़े से गिर जाए तो कितना बुरा लगेगा? हम तो 5 बार गिरे और 5 बार फिर उठ गए, फिर बैठ गए। चलिए ठीक है साहब, कन्या पक्ष के द्वार पे हमारी बारात चली जा रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं। तो बैंड बाजे जब बज रहे थे तो स्वागत सत्कार हुआ, कन्या पक्ष वाले स्वागत के लिए खड़े हो गए, कोई फूल माला लिए है, कोई कुछ लिए है, कोई चावल लिए है, कोई आरती लिए है। तो पहले वहाँ का दृश्य जो मुझे याद आ रहा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये बैंड बाजे की आवाज़ बड़ी दूर से सुनाई दे रही है। ये बैंड बाजे की आवाज, ये बारात चली आ रही है। किसकी बारात चली आ रही थी? मेरी बारात चली आ रही थी। मैं तो दूल्हा बना हुआ था, वो किराए के घोड़े पर बैठा था और भगवान को बार बार याद कर रहा था कि हे भगवान, ये घोड़ा अब ना नाचे, और अगर ये नाचा तो मैं गिरा और दूल्हा बन के फिर से एक बार गिरूंगा तो कितना बुरा लगेगा। धीरे धीरे धीरे धीरे चली आ रही है बारात। ये कन्या पक्ष के द्वार पे बारात पहुंची, कन्या पक्ष के द्वार पे बारात पहुंची तो लोगों ने फूल मालाओं से हमारा स्वागत किया, कहा आइए साहब, आइए आइए साहब, आइए, आपका स्वागत है साहब, आइए आइए। अरे कुर्सियां लाओ भाई, कुर्सियां लाओ, अरे कुर्सियां लगाओ भाई साहब। है कुर्सी नहीं आई क्या? तो किसी का टेबल कुर्सी को छोड़ तखत तखत कुछ बुलवा लो भाई। अरे चादर वादर कुछ बोरा वोरा बिछा दो भाई, जल्दी आइए साहब, आइए आइए आइए। अरे फूल माला लाओ, हाँ गुलाब जल लाओ, गुलाब जल लाओ, आइए साहब, आइए आइए आइए साहब आइए। गुलाब जल नहीं है? गुलाब जल बिल्कुल नहीं है? तो एक काम करो, वो जो गुलाब जल की शीशी, वो जो वो स्टील का जो वो डालने का है ना, गुलाब जल छिड़कने का है, उसमें एक काम करो, पानी डाल के ले आओ। आइए साहब आइए, आइए साहब आइए। बहुत अच्छा, पूरी बारात आ गई, अरे दूल्हे राजा आ गए, दूल्हे राजा आ गए, आइए साहब आइए आइए। हाँ अरे बैंड वाले भैया, ओ बैंड बाजे वाले भैया, ओ भाई बैंड बाजे वाले भैया, अरे जरा बंद कर देना भाई, अरे अरे मिलनी का प्रोग्राम होने वाला भाई, ओ बैंड बाजे वाले, अरे बंद करो, बंद करो। ये किसने चिल्लाया बंद करो बैंड वाले भैया लोगों को? मेरे ससुर ने। वो जो ससुर हैं हमारे आज भी हैं, जीवित अवस्था में हैं, बहुत सारी उम्र भगवान से, उम्र भगवान से वो लेके आए हैं। उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाया, पहलवान तो है वो, उन्होंने बड़ी जोर से चिल्लाया, बैंड बाजे वाले बंद कर दिए बजाना। बजाना क्या बंद कर दिए, वो तो घर चले गए। हाँ उन्होंने रुकना पसंद ही नहीं किया, सीधे घर वापस। चलिए ठीक साहब, अब क्या होता है, हम तो दूल्हे बन के खड़े हुए हैं द्वार पे, घोड़े पे बैठे हुए, बड़ा मजा आ रहा था। हमको वैसे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी। क्यों शर्म आ रही थी? इसलिए शर्म आ रही थी कि हम पहली बार दूल्हा बने थे। पहली बार दूल्हा बने थे तो कुछ शर्म भी आ रही थी और खुशी भी हो रही थी। ठीक है साहब, अब क्या होता है, जब कन्या पक्ष के द्वार पे बारात आती है, माहौल बड़ा खुशी का होता है, लोगों के मन, जितने भी कन्या पक्ष वाले हैं, जितने भी वर पक्ष वाले हैं, वो कुछ ना कुछ खुशी के गीत गुनगुनाते जरूर हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पर हमारी बारात में भी गुनगुनान का प्रोग्राम हुआ था, लेकिन गुनगुनाने वाला कोई मनुष्य रूप धारण किए हुए नहीं था, वहां पर एक स्पीकर वाला भैया बैठा था, पुराने जमाने का स्पीकर वाला। उसके पास बड़े बड़े रिकॉर्ड थे, बड़ी अच्छी अच्छी पुरानी पुरानी कंपनी में। वो कौन कौन से रिकॉर्ड थे, आपने कभी आकाशवाणी से वो गाने सुने होंगे? बड़े पुराने पुराने गाने सुनाते आकाशवाणी वाले, और हमारे दूरदर्शन वाले भी बड़े प्यारे प्यारे गाने सुनाते भी हैं और दिखाते भी हैं। तो ये तो सुना रहा था कौन, हमारी शादी वाला स्पीकर वाला। पुराने जमाने का ग्रामाफोन था उसके पास। कौन सा ग्रामाफोन? आजकल तो क्या है, वो को टेप रिकॉर्डर चल रहे हैं और रिकॉर्ड प्लेयर चलते हैं, सीडी वगैरह चल रही है, बड़ा मॉडर्न जमाना है। हम तो पुराने समय की कहानी आपको सुना रहे हैं, जिस समय ग्रामाफोन चला करते थे। वो उसने क्या किया, स्पीकर वाले भाई ने ग्रामाफोन में चाबी दी, जब चाबी भरी तब तो वो तैयार हुआ और चलने के लिए कौन, ग्रामाफोन। उसने पुराना रिकॉर्ड बजाया, हमने कहा वाह वाह वाह वाह, ऐसा रिकॉर्ड नहीं बजाना चाहिए। उसको मेरी शादी में जब कन्या पक्ष के द्वार पे बारात आई, उस समय स्पीकर वाले भाई को थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल अगर वो कर लेता तो कौन सा गीत बजाता, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएंगे बैंड बाजा। लेकिन नहीं, वो बुद्धिहीन था, अखंड बुद्धिहीन था वो। उसने मेरी शादी में जब मैं कन्या पक्ष के द्वार पर खड़ा हूं, घोड़े पे बैठा हूं, उस समय स्पीकर वाले भाई ने कितना गलत रिकॉर्ड बजाया ग्रामाफोन में चावी देने के बाद। अरे हाँ, उनके ग्रामाफोन में चावी देने की आवाज से मैं पहले आपको परिचय करा दूं, बड़ा अजीबो गरीब उसमें से साउंड निकलता है, कैसा आवाज, ये ग्रामाफोन में चावी देने की

आवाज है, ये आपको हर बार सुनाई देगी। हाँ, चाहे आप आज सुन लो तो कल सुन लो तो, क्योंकि उनका जो ग्रामाफोन था बहुत पुराने जमाने का था, सिकंदर आजम के जमाने का, कुतुबुद्दीन तुगलक, मोहम्मद गौरी शेर शाह सूरी के जमाने का था, शायद मोहन जोदड़ो की खुदाई में उनको मिला था, भगवान जाने कहां से मिला था। जब वो ग्रामाफोन में चाबी देते तो ऐसी आवाजें आई। ठीक है साहब, अब हम खड़े हैं, अब देखिए कौन सा गलत रिकॉर्ड बजा रहा है, संपूर्ण गलत रिकॉर्ड, कौन सा।

गई मैं कि मिट गई मैं कि आया आया अटरिया पे कोई चोर आया आया। बताइए हम दूल्हा बन के खड़े हैं द्वार पे घोड़े पे बैठे हैं, स्पीकर वाले भैया क्या बोलते हैं, आया आया अटरिया पे कोई चोर, बात गलत है ना? ठीक है साहब, हमारे ससुर साहब आ गए, भगवान उनका भला करे, थोड़ी सी बुद्धि उनकी कम है, पहलवान है, तो वैसे पहलवान खराब नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत समझदार होते, बड़े ज्ञानी होते हैं, हैं प्रभु भक्त होते हैं, लेकिन हमारे ससुर थे थोड़ा सा अनोखा ही स्वभाव था उनका। वो हमारे पास आए, हमसे बोलते हैं, हाँ दूल्हे राजा, ए दूल्हे राजा अब आप आ गए हैं, हैं दूल्हे राजा अब आप नीचे घोड़ी से, ए दूल्हा, अरे ए दूल्हा, अबे ए दूल्हा नीचे उतर, तो हम उतरने की जगह गिर पड़े। तो लोगों ने कहा, कन्या पक्ष वाले बोलते अरे दूल्हा गिर गया, दूल्हा गिर गया, तो हम खड़े होकर बोलते, हमने कहा किसने कहा गिर गया, ये तो हमारी स्टाइल है, हम ऐसे ही उतरते हैं। चलो साहब, कन्या को बुलाया गया, यानी मेरी धर्मपत्नी जो अब हो चुकी हैं, उस समय तो होने वाली थी, मेरी धर्मपत्नी को बुलाया गया, उनके हाथ में एक फूल माला, एक हाथ में मेरे फूल माला, मैंने उनको माला पहनाई, उन्होंने मुझे माला पहनाई। उस समय स्पीकर वाले भैया को बहुत अच्छा गीत बजाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो बुद्धिहीन था, अखंड बुद्धिहीन स्पीकर वाला था। अरे हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, जो हमारे मित्र वर्ग हैं जो मेरी शादी में मेरे साथ गए थे मेहमान बन के, उन सभी ने मुझसे बोल दिया था कि दूल्हे राजा इतना याद रखना, जिस समय तुम्हारी धर्मपत्नी पहली बार तुम्हारे सामने आए माल्यार्पण के लिए, जयमाल के लिए, उस समय अपनी धर्मपत्नी का चेहरा देखना नहीं। तो हमने, क्यों भाई, वो तो मेरी पत्नी होने वाली है, मैं क्यों चेहरा ना देखूं? कहता, नहीं नहीं मत देखा, उस समय नहीं देखते भाई, बड़ा बुरा लगता है, बाद में तो जीवन भर देखना है। हमने, चलो भाई आपकी बात मान लूंगा, आंखें अपनी बंद कर लूंगा, नहीं देखूंगा। वहां पर हुआ उल्टा, मेरी जो धर्मपत्नी थी उनकी जो सहेलियां थी, उन्होंने कुछ मेरी वाइफ से कुछ और अजीब सी बात कही। क्या कहा? सुनो दुल्हन, जब तुम्हारी शादी हो रही है ना, और तो जब तुम माला पहनाने अपने दूल्हे राजा के पास जाओगी ना, तो जब माला पहनाओगी ना, तो उस समय अपने पति का चेहरा देख लेना। हाँ, अगर एंड बैंड मोटर स्टैंड हो तो माला नहीं पहनाना, हाँ नहीं तो एक बार माला पहना दी ना, तो समझ जाओ गई भैंस पानी में। ठीक है साहब, उन्होंने मुझे माला पहनाई, मैंने उनको माला पहनाई, जयमाल हो गया, बड़ी खुशी का माहौल था, बहुत आनंद आ रहा था। उस समय स्पीकर वाले भैया को कुछ आशीर्वाद स्वरूप कोई बढ़िया सा गाना बजाते था, लेकिन नहीं, उसने नहीं बजाया, उसने अपने मन का किया। जब मेरी वाइफ ने मुझे देखा, होने वाली वाइफ ने जब मुझे देखा, उस समय वही पुराने जमाने के ग्रामाफोन में चाबी देने के बाद कौन सा रिकॉर्ड बजाता है वो।

0: गड्ढा मिल गया।
1: साहब कहानी आगे बढ़ती है, अब फेरे होते हैं। एक फेरा हुआ, भावरे जिसको हम बोलते हैं, एक फेरा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो जो हमारे पूजा कराने वाले श्रीमान जी आए थे, उन्होंने थोड़ा सा, मालूम नहीं क्या बात है, थोड़ा लालच उनमें जरा ज्यादा आ गई थी, क्या इत्तेफाक था भगवान जाने। वैसे लालच आना नहीं चाहिए, लेकिन न जाने कौन थे वो, मुझे कुछ अजीब से लगे जो मेरी शादी करा रहे थे। वो श्लोक बोलते जा रहे हैं और कुछ अनोखी अनोखी चीजें की डिमांड भी कर रहे हैं। देखिए उनका श्लोक बोलने का तरीका और वो क्या क्या मांग रहे हैं, जरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा। ओम स्वाहा। लड़का लड़की के नाना नानी, काका काकी, मासा मासी, भाई भाभी, सबको बुलाओ स्वाहा।

0: और साहब होती है विदाई दूसरे दिन। विदाई का मार्मिक बड़ा दृश्य होता है। विदा हो रही थी, सभी लोग रो रहे थे, कुछ लोग मजबूरी में रो रहे थे। मजबूरी में रो इसलिए रहे थे कि नहीं रोएंगे तो रिश्तेदारी में गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए लोग संतरे के छिलके आंखों में मार के रो रहे हैं, कुछ लोग पिपरमेंट लगा के रो रहे थे। चलिए साहब, जब पूरी जनता रो रही थी उस समय कन्या का छोटा भाई यानी मेरी धर्मपत्नी का भाई, मेरा साला हुआ वो, है ना, तो मेरा साला मेरे ससुर के पास यानी वो स्वयं अपने पिता के पास जाकर बोलता है,
1: कहले बाऊजी अपनी दीदी बहुत रो रही है, बाऊजी बहुत रो रही है बाऊजी, वो जो जीजा जी जबलपुर से जो गोली पे बैठ के दूल्हा बन के आए हैं ना बाऊजी, ये तो बहुत हंस रहे हैं बाऊजी, अपनी दीदी रो रही है और जो जीजा जी हंस रहे हैं, ऐसा क्यों है बाऊजी?
0: तो मेरे ससुर ने, उस लड़के के पिता ने कितनी बात बढ़िया कही, कहा बेटा तुम्हारी बहन इसलिए रो रही है कि आज उसको आखिरी दिन रोना है बेटा, और तुम्हारा बहनोई जीजा जो जबलपुर से आया है वो इसलिए हंस रहा है कि बाकी जिंदगी उसको रोना है बेटा। कन्या की विदा हुई, दुल्हन साहिबा यानी हमारी धर्मपत्नी को हम विदा करा के जबलपुर ला रहे थे। उस समय स्पीकर वाले भैया को कोई बहुत अच्छा गीत बजाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो जो स्पीकर वाला था वो आकाशवाणी से संबंधित नहीं था, उसने पूरी तरह गलत रिकॉर्ड बजाया विदा के समय। कौन सा रिकॉर्ड बजाया देखिए।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है की आठवीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इसमें दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ बहुप्रतीक्षित तीसरे वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में 11 और 12 तारीख को नागपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठक के दौरान परिवहन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जा रहे तरीकों का आदान प्रदान और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने सेफ क्लिक 2.0 अभियान के समापन समारोह में कल भोपाल में बताया कि 15 दिवसीय इस अभियान के दौरान साइबर अपराध, नशे के दुष्परिणाम और

0: सुरक्षा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। महाराष्ट्र हिंगोली जिले में आज भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। इलाके में भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और भारत इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में रात 10 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 1 बजे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम।

बहनों नमस्कार। कार्यक्रम महिला सभा की आज की कड़ी में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी सुधा मिश्रा। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बहनों अब तो बारिश की फुहारों ने गर्मी की तपिश से बहुत राहत दे दी है। वर्षा ऋतु का स्वागत तो बहनों हमारे कवियों लेखकों ने अपनी विशिष्ट शैली अपने विशिष्ट अंदाज में खूब किया है। हमने अपने स्कूली दिनों में भी बहुत कविताएं पढ़ी हैं, सुनी हैं, लेख पढ़े हैं, आलेख पढ़े हैं। मतलब ये बहनों की वर्षा ऋतु की महत्ता इसकी खूबसूरती से तो हम भली भांति परिचित हैं। बारिश के पानी में कागज की कश्ती, कागज की नाव खूब बनाई खेली होगी आपने भी। पैदल चलते हुए वर्षा के पानी में पैरों से छपाक छपाक करते अटखेलियां करते हुए ही पहले का बचपन बड़ा हुआ करता था। तो आप अपने बचपन की यादों में खो ना जाएं, इसलिए पहले हम आपको लिए चलते हैं इस खूबसूरत बारिश के गीत की तरफ और आपको सुनवाते हैं ये गीत।

पेनो, अभी हम बात कर रहे थे बारिश के मौसम की खूबसूरती की, लेकिन इस ऋतु में अगर हमने थोड़ी असावधानी रखी बहनों तो हमें परेशानी हो सकती है और आपका यह प्रफुल्लित मन गुस्से, परेशानी और चिड़चिड़ाहट से भर सकता है। तो इसलिए बहनों, अपने कार्यक्रम में हम आपको समय समय पर उपयोगी जानकारियां देते रहते हैं जिससे आप बिना परेशान हुए, बिना ज्यादा किसी तरह की परेशानी में आए, आप हर मौसम का आनंद ले सकें। तो अब बारिश की ही बात लें। इस समय बहनों हमें अपने खाने पीने में विशेष एहतियात की ज़रूरत होती है। वातावरण में नमी की वजह से चीज़ों में कीड़े जल्दी लगते हैं, खाद्य पदार्थ जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो हमें करना बस इतना है कि भोजन कम बनाना है, जितनी आवश्यकता हो बस उतना ही भोजन बनाएं। भूख से थोड़ा अगर हम कम खाएंगे तो स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों से भी हम खुद को बचाकर रख सकेंगे। पीने के पानी में भी सावधानी बहुत ज़रूरी है बहनों। दूषित जल बिल्कुल भी ना पिएं, पानी का पात्र भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, फिल्टर पानी ही पिएं। अगर फिल्टर की सुविधा ना हो तो पानी को उबालकर ठंडा करें और छानकर उसका सेवन करें। निश्चित रूप से आप कई बीमारियों से बची रह सकेंगी। अपने घर और आसपास पानी न जमा होने दें ताकि मच्छर न बढ़ें और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से हम अपने आप को बचाकर रख सकें। बहनों, इस समय वाहन चलाते समय भी विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। अगर आप गाड़ी चला रही हैं तो अपनी गति नियंत्रित रखें, हेडलाइट का उपयोग करें और पर्याप्त दूरी भी बनाकर रखें। गीले हाथों से घर के किसी भी स्विच या विद्युत उपकरण को न छुएं। अगर आप कहीं रास्ते

0: रास्ते में हो बहनों और बारिश होने लगे और बिजली चमकने लगे ज़्यादा, तो ध्यान रखें कि खुले मैदान, विद्युत खंभे, ऊंचे पेड़ के नीचे आप न खड़े हों। यहाँ इन जगहों से खड़े होने से आप बचें। अगर भीग गई हों पानी में तो जल्दी से जल्दी सूखे कपड़े पहने, क्योंकि इस समय त्वचा संबंधी भी तमाम परेशानियां हो जाती हैं। तो बहनों बस हमें थोड़ा सा अपनी दैनिक दिनचर्या में अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे, अपने घर को थोड़ा और ज़्यादा सूखा और साफ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस मौसम का पूरा आनंद ले सकेंगे। क्योंकि बहनों वर्षा केवल ऋतु नहीं, प्रकृति का वह मधुर संगीत है जो सूखी धरती में भी नए जीवन का संचार कर देता है। तो थोड़ी सी सावधानी से हम भी इस ऋतु के नवजीवन के संदेश को आत्मसात कर सकते हैं। और अब हम आपको सुनवाते हैं आज की अपनी भेंटवार्ता। आज की हमारी भेंटवार्ता का विषय है बहनों, बच्चों को दांत निकलते समय होने वाली समस्याएं और निदान। इस विषय पर डॉक्टर अश्विन कुमार त्रिवेदी से बातचीत की है हमारी साथी आशा पारे ने। सेहत की बात कार्यक्रम में आज का विषय है बच्चों को दांत निकलते समय होने वाली समस्याएं और निदान। बहनों हम सब जानते हैं कि बच्चों में दांत निकलने की जो शुरुआत होती है वो ऐसा समय होता है जब बच्चा अपनी तकलीफ किसी से नहीं कह सकता, बल्कि उसकी सारी तकलीफें हमें ही समझनी होती है। तो आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी, वरिष्ठ दंत चिकित्सक। और डॉक्टर साहब से हम इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार डॉक्टर साहब, बच्चों में किस उम्र से दांत निकलने की शुरुआत हो जाती है?
1: बच्चों में 6 माह का जब बच्चा होता है तब दांत निकलते हैं, और ये जो दांत हैं नीचे के जो दांत रहते हैं नीचे के जबड़े में, वो सामने के दांत निकलना चालू होते हैं, और 2.5 वर्ष तक की उम्र में ये दूध के दांत निकलते हैं। पहले इन्हें दूध के दांत कहा जाता है
0: जी।
1: मिल्क टीथ भी कहते हैं इनको, हम अपनी डेंटिस्ट्री की भाषा में डेसिडुअस टीथ कहते हैं। 2.5 साल के पश्चात जब बच्चा 6 साल का होता है तब उसके परमानेंट टीथ जो कि जीवन भर उसके साथ देते हैं वो निकलना चालू होते हैं, और ये दूध के दांत जो है उस समय से निकल मुंह के अंदर से बाहर निकल जाते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब ये देखा गया है कि जब बच्चों में दांत निकलने की शुरुआत होती है तो बच्चे कुछ चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका रोना भी बढ़ जाता है, तो क्या उनको कोई तकलीफ होती है इस
1: हाँ,
0: समय में?
1: बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो बच्चों में जो मेनली जो देखा गया है कि दस्त लगने की प्रॉब्लम जिसे हम डायरिया कहते हैं
0: जी,
1: उल्टियाँ होती हैं बच्चों को, सर्दी जुकाम होता है, हल्का सा फीवरिश भी बच्चों को आता है, बुखार भी रहता है, और बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं
0: जी। तो उस समय में हमको क्या करना चाहिए?
1: उस समय पे जैसे कि ग्राइप बॉटल वगैरह है, कैल्शियम की सिरप है
0: जी,
1: ये देना चाहिए, और बच्चा अगर फीवर में है तो पैरासिटामोल के ड्रॉप्स देना चाहिए। बेटर ये रहेगा कि बच्चों के जो डॉक्टर रहते हैं उनसे कंसल्ट कर लिया जाए उस समय, तो वो क्योंकि हम लोग क्या है कि बच्चों जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं उनके जो ड्रॉप्स रहते हैं, डोजेज रहते हैं, वो उनको बहुत अच्छे से मालूम रहते हैं, तो बच्चों के डॉक्टरों से परामर्श करना चाहिए।
0: अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि 4 माह के बाद बच्चे को हम कुछ आहार ऊपरी भी देना शुरू कर देते हैं, तो क्या उस समय में भी कुछ खान पान का विशेष ध्यान रखें, या जैसे माँ फीडिंग कराती है तो माँ अपने खान पान में कुछ परिवर्तन करे?
1: नहीं, माँ को तो पौष्टिक आहार लेना ही चाहिए। जब माँ पौष्टिक आहार लेगी तो स्वाभाविक है कि जो मिल्क है माँ का वो बच्चे के शरीर में जाएगा, तो वो भी उसके लिए ताकतवर साबित होगा।
0: कभी कभी डॉक्टर साहब जो दांत निकलते हैं बच्चे के वो टेढ़े मेढ़े से निकलने लगते हैं, तो क्या इस बारे में हम कुछ सावधानी पहले से ले सकते हैं?
1: देखिए दूध के दांत जो है जब बच्चा अंगूठा पीता है तो ये जो जब तालू है ऊपर का ये थोड़ा सा बढ़ जाता है आगे, परंतु अगर बच्चा 2.5 साल तक की उम्र में दांत पीता है, अंगूठा पीता है, तो उसमें जबड़ा जो है नॉर्मल अपने समय पे ग्रोइंग स्टेज में एडजस्ट हो जाता है। अगर 2.5 साल के बाद भी बच्चा अंगूठा पी रहा है तो फिर इसके दांतों में जबड़ा जो है इसके बाहर आने के चांसेस रहते हैं, तो कोशिश ये रहना चाहिए कि 2.5-3 साल की उम्र में बच्चा अंगूठा पीना छोड़ दे। अब इसके लिए उपाय है कि जैसे कि कोई कड़वी गोली लगा दिया जाए या मिर्च लगा दी जाए, या हाथ में ऐसा टेप बांध दिया जाए कि बच्चे जो है अंगूठा नहीं पी सके। टेढ़े मेढ़े की बात है तो ये जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं ये परमानेंट टीथ में होते हैं, दूध के दांतों में इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, मेनली टेढ़े मेढ़े दांतों में परमानेंट टीथ में दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं
0: जी। कभी कभी बच्चों में दांत देर से निकलते हैं तो माता पिता को चिंता होने लगती है, तो बच्चों में दांत समय पर निकले इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?
1: इसके लिए तो वही बताया मैंने आपको, कैल्शियम जो सिरप है ये देना

0: ये बच्चों को
1: किस उम्र से?
0: 5 महीने 4 महीने से दे सकते हैं अपन, और ये तो 6 साल 10 साल तक देना उचित रहता है। अच्छा, एक कंटिन्यूएशन में नहीं देना चाहिए, 1-2 महीने दिया, फिर कुछ 2-4 महीने के

0: फीड करा दिया जाता है, उसके बाद एक सादी बॉटल रखना चाहिए पानी की
1: जी।
0: बाद में उसको लगा देना चाहिए, नहीं तो क्या है दांतों की जो दूध की लेयर है वो दांतों में बच्चों के जम जाती जम है जाती। और एक रैम्पेट केरीज होती है, उससे बच्चों के पूरे दांत जो है कीड़े खा जाते हैं। तो अगर पानी की बॉटल लगा देंगे तो वो जो दूध की लेयर जम गई है दांतों में वो धुल जाएगी और वो पेट में चला जाएगा पानी, तो उससे दांत क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे बार बार तो ब्रश करा नहीं सकते, आप कुल्ला उनको करा नहीं सकते, तो पानी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मुंह को बिल्कुल क्लीन रखता है और कोई भी बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देता है।
1: जी, ये तो सचमुच बहुत उपयोगी जानकारी है जिसका अक्सर माएं ध्यान नहीं रख पाती, क्योंकि रात में नींद में रहते हैं। हाँ। तो बच्चे को बस दूध की बोतल लगाई और उसके बाद में मुंह धोने का ध्यान नहीं रहता,
0: लगा देना चाहिए।
1: तो पानी की बोतल लगाना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। क्या इसके अलावा और कोई सावधानी जो ली जा सकती है?
0: और कोशिश ये करना चाहिए कि जैसे कि 2.5 साल 3 साल की उम्र में बच्चों को पेस्ट ब्रश करने की आदत डालना चाहिए।
1: जी,
0: कभी कभी बच्चे पेस्ट खा जाते हैं, तो कुछ भी ऐसे पेस्टेज हैं जो बच्चों के लिए खास आते हैं, उनको कराना चाहिए। बच्चे अगर पेस्ट नहीं कर रहे हैं तो कपड़े से कम ये है कि गीला पानी का लेके और दांतों में अच्छे से मसूड़ों फेर के, जीभ में फेर के, वो पूरा जो लेयर जम जाती है खाने की दांत और मसूड़ों में और जीभ में, वो उसको धो दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है।
1: ये माँ की जिम्मेदारी है,
0: माँ की जिम्मेदारी
1: है
0: मुंह को साफ रखना है बच्चे के।
1: बिल्कुल, तो ये तो बहुत ही उपयोगी जानकारी है डॉक्टर साहब। और हमारी जो भी श्रोता बहन है वो बहुत ध्यान से इस भेंटवार्ता को सुन रही है और इन सब बातों का अगर वो ध्यान रखेंगी तो बच्चों को जो दांतों से संबंधित परेशानियां होती है उनसे बचा जा सकता है। क्योंकि बच्चों को जो भी परेशानियां होती है वो पूरे परिवार के लिए परेशानी का सबब होती है। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी हमारी बहनों को दी। इसके अलावा और कोई संदेश जो आप बहनों को देना चाहेंगे?
0: अगर जैसे दूध के दांत है अगर कीड़े वगैरह लग गए उन बच्चों में, क्योंकि बच्चों की क्या है तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, तो मेरी यही सलाह है कि अगर कीड़े लग गए हैं तो उसको समय रहते तकलीफ होने से पहले उन दांतों को फिलिंग भरवा दिया जाए, जिससे कि उनको खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं हो। क्योंकि जो दाढ़ें हैं वो 11.5 से 12.5 साल की उम्र में निकलती हैं, दूध की जो दाढ़ें हैं, सामने के दांत तो 6 साल से निकलना चालू हो जाते हैं जैसे मैंने बताया आपको। दाढ़ों को बचाना जरूरी रहता है, क्योंकि दाढ़ें अगर अच्छी रहेंगी तो बच्चा कोई भी चीज अच्छे से चबा लेगा, अच्छे से च्यू कर लेगा। कोशिश ये करना चाहिए जो चॉकलेट्स वगैरह हैं जो ज्यादा चिपकती हैं दांतों में, जिससे कि कैविटी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, उनको नहीं दी जाए। च्यू चबाने से मुंह की एक्सरसाइज भी होती है, प्लस जो अन्य के कण दांतों के बीच में फंसे रहते हैं ट्विस्ट होके धुल जाते हैं और एक क्लीनिंग प्रोसेस होती है। तो ये आदत डालना चाहिए बच्चों को, और ये जरूर सिखाना चाहिए कि चबाने के बाद में उसको फेंक दिया जाए, बाहर थूक दिया जाए, अंदर नहीं ले उसको शरीर के, वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल, तो मुंह साफ रहेगा तो सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब एक चीज और देखिए, जैसे आपने मसूड़े मजबूत होने वाली बात कही है, तो कई बार बच्चों को कुछ हार्ड चीज चबाने के लिए मन करता है, उस समय में बच्चों के दांतों में कुछ ऐसा, उनको कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ हार्ड चीज चबाई जाए, तो माताएं अक्सर प्लास्टिक की कुछ चीजें दे देती है उनको चबाने के लिए, तो उससे कोई नुकसान
0: नहीं? नहीं, देखिए क्या है कि जैसे 4 माह का जब बच्चा रहता है, 5 माह का तब जो उसके बिल्कुल दांत निकलना चालू होते हैं, तो उस समय बच्चों में मसूड़ों में इचिंग होती है। इचिंग होने से क्या रहता है कि उनको दबाव पड़ता है मसूड़ों में, उनको लगता है कि मैं कोई चीज कड़ी दबाऊं, तो जैसे कि लकड़ी की पहले चलते वो आती थी मुठिया बोलते हैं, आज का टीथर वगैरह जैसे आते हैं फाइबर उसके रहते हैं, क्या बोलते प्लास्टिक, वो तो वो दे देना चाहिए, जिससे कि बच्चे उसको मसूड़ों से दोनों मसूड़ों के बीच में दबाए, तो उससे क्या प्रेशर से वो जो दूध के दांत है वो धीरे धीरे ऊपर आएंगे और जो बच्चों के मसूड़ों में इरिटेशन हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, वो कम हो जाएगी।
1: जी बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी हमारी बहनों को दी और निश्चय ही इस जानकारी से वो लाभान्वित हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों अभी आपने ये भेंटवार्ता सुनी, विषय था बच्चों को दांत निकलते समय होने वाली समस्याएं और निदान। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अश्विन कुमार त्रिवेदी और इनसे बातचीत कर रही थी डॉक्टर आशा पारे।

मैनू अपना घर होना हर किसी का सपना होता है। एक ऐसा घर जहां सुरक्षा हो, सम्मान हो और बेहतर भविष्य की उम्मीद हो। तो बहनों, इसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न आय वर्ग और जरूरतमंद परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, जिससे कि देश के प्रत्येक पात्र परिवार के पास रहने के लिए सम्मानजनक

पत्थर हो। बहनों, यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों ही पात्र परिवारों के लिए है। गांव में संचालित इस योजना के तहत परिवार को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मकान के साथ साथ शौचालय निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा और दूसरी जरूरी सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जाता है। वहीं शहरी योजना में वे परिवार लाभ ले सकते हैं जो पहली बार अपना घर बनाना या खरीदना चाहते हैं। जो भी पात्र लाभार्थी होंगे उन्हें उनकी श्रेणी के अनुसार सहायता दी जाती है। गृह ऋण पर ब्याज में भी राहत प्रदान की जाती है। तो बहनों, इतनी सुविधा अगर हमें शासन की तरफ से मिल रही है तो क्यों कोई भी बेघर रहे। तो बहनों, अगर आपकी पहचान में भी ऐसे लोग हों जो शासन की इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं तो उन्हें जरूर बताएं। अपना घर का सपना हर किसी का साकार हो, इसी उम्मीद के साथ हम आज अपनी चर्चा यहीं संपन्न करते हैं। अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों, रोचक चर्चा के साथ फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आज बस इतना ही। अनुमति दें अपनी सखी सुधा मिश्रा को। नमस्कार।

0: महिलाएं अभी सुन रही थीं अपना मनपसंद महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे इंदुबाला मिश्रा के गाए लोकगीत। तो लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए इंदुबाला के स्वर में ये लोक भजन।

इंदुबाला मिश्रा के स्वर में अभी आपने सुना लोक भजन। लीजिए अब सुनिए झूला गीत, स्वर इंदुबाला मिश्रा का है।

इंदुबाला मिश्रा के गाई इस कजरी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे शुभ्रा बैनर्जी के गाए गीत और भजन। तो लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए शुभ्रा बैनर्जी के स्वर में ये भजन।

शुभ्रा बनर्जी के स्वर में अभी आपने सुना भजन। लीजिए अब सुनिए शुभ्रा बनर्जी की आवाज में ये गीत।

शुभ्रा बैनर्जी के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट या फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्रियों को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा ये है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करता है। सूचना समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म भागम भाग का ये गीत। गीत समीर का है और संगीत है प्रीतम का।

सईद कादरी का लिखा अन्नू मलिक के संगीत से सजा हुआ गीत सुनिए आमिर जमाल की आवाज में। फिल्म का नाम है मर्डर।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग पर अहम समझौते किए। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ, जिससे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप और डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर की भी शुरुआत की गई है।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील का दौरा किया। उन्होंने यहां किसान सम्मेलन में शिरकत की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 4 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली कार्य की समीक्षा की। यहां भूस्खलन से रेलवे लाइन को भारी नुकसान हुआ था। मध्य और पश्चिमी रेलवे की टीमें मिलकर यहां काम कर रही हैं। एक लाइन बहाल कर दी गई है और अब ट्रेनें 2 इंजनों के साथ चलाई जाएंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण दौरे पर प्रदेश में आए हुए हैं। कल देर रात वे मंदसौर जिले के करोट स्थित रुपरा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं और हाईवे के कारण खेतों में पानी भरने की समस्या पर ध्यान देने की अपील की। करीब 1,10,000 करोड़ रूपये की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे का करीब 244 किलोमीटर हिस्सा प्रदेश से होकर गुजरेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की। उन्होंने भगवान कामतानाथ की पूजा अर्चना की। करीब 5 किलोमीटर की परिक्रमा उन्होंने पैदल पूरी की। रास्ते में श्रद्धालुओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। परिक्रमा 2 घंटे 10 मिनट में पूरी हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री बांदा रवाना हो गए, जहां वे विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में भी बारिश की संभावना है। इस साल अब तक प्रदेश में सामान्य से 10% अधिक बारिश हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में इंग्लैंड फिलहाल 2-0 से आगे है। भारत को श्रृंखला में बने रहने के लिए मैच जीतना बेहद जरूरी है। तीसरे मैच में भारत को 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच कलेक्टर ने कल जिले के मालखेड़ा और जावी गांवों में जैविक खेती कर रहे किसानों के खेतों का निरीक्षण कर प्राकृतिक खेती की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। जल जनित बीमारियों से बचाव के उद्देश्य से आगरमालवा जिले के ग्राम थड़ौदा के प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। शिवपुरी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में कल स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण सुरक्षा का कवच विषय पर एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया। झाबुआ कलेक्टर ने कल जिले के विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक गतिविधियों, मध्याह्न भोजन और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की। भिंड में मध्यप्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का जिला स्तरीय आयोजन 7 अगस्त को किया जाएगा। राजगढ़ के सभी पेयजल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: विकास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानिस विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बानिस ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि 10 लाख का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
2: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरु

0: प्रोग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
1: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
2: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
1: And critical minerals.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्ययोजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
4: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
3: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @

0: एआर न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो एनसीआर दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान है। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आपकी पसंद के गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर, फिल्म जुर्म से। आवाजें हैं साधना सरगम और कुमार सानू की। गीत लिखा है इंदिवर ने और इसे संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने। और फरमाइश भेजी है

आप सभी श्रोताओं ने बेलाताल दमोह मध्य प्रदेश से रवि खरे, सुनील खरे, बबीता रजनी, आदित्य और अनुश्री खरे ने। साथ ही इसी गीत को सुनना चाह है कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म जुर्म का ये गीत।

इंद्र और नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉब वफा गीत जिसे आवाजें दी हैं लता मंगेशकर, गीत लिखा है गुलजार ने और इसे संगीत से सजाया है खयाम ने। लीजिए सुनिए।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। लीजिए अब सुनिए फिल्म हसीना मान जाएगी का गीत मोहम्मद रफी और लश्कर की आवाज में।

राजेश, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म धनवान का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। गीत लिखा है साहिर ने और इसे संगीत से सजाया है हृदयनाथ मंगेशकर ने। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत जिसे हमने लिया है आप सभी की फरमाइश पर फिल्म कन्यादान से। नक्श लैलपुरी का लिखा ये गीत जिसे संगीत से सजाया है खयाम ने और आवाज है लता मंगेशकर की। पसंद आप सभी श्रोताओं की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर की।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज के बीच तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। दोनों देशों ने ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग पर अहम समझौते किए। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील का दौरा किया। उन्होंने यहां किसान सम्मेलन में शिरकत की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली कार्य की समीक्षा की। यहां भूस्खलन से रेलवे लाइन को भारी नुकसान हुआ था। मध्य और पश्चिमी रेलवे की टीमें मिलकर यहां काम कर रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निरीक्षण दौरे पर प्रदेश में आए हैं। कल देर रात वे मंदसौर जिले के करोट स्थित रूपरा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की। उन्होंने भगवान कामतानाथ की पूजा अर्चना की। करीब 5 किलोमीटर की यह परिक्रमा उन्होंने पैदल पूरी की। रास्ते में श्रद्धालुओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। केंद्र सरकार ने कृषि अंतरीकरण उपमिशन के तहत किसानों को बड़ी मदद की है। अब तक देश भर में किसानों को लगभग 22 लाख कृषि मशीनें दी गई हैं। इनकी कीमत करीब 9,404 करोड़ रुपए है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बिल्कुल

आग रजनी, आज वसंत रानाडे का राग कमोद में वायलिन वादन। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने विविध कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज आएंगे इंदु बाला मिश्रा के गाए लोकगीत। तो लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए इंदु बाला मिश्रा के स्वर में ये लोक भजन।

इंदु मिश्रा की गाई, इंदु बाला मिश्रा की गाई इस कजरी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे शुभ्रा बैनर्जी के गाए गीत और भजन। तो लीजिए सुनिए शुभ्रा बैनर्जी के स्वर में ये भजन।

शुभ्रा बनर्जी के गाए इस गीत के बाद सुगम संगीत में लीजिए अब सुनिए ये भजन, स्वर शुभ्रा बनर्जी का है।

शुभ्रा बनर्जी के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने पर, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कयामत से कयामत तक, इस फिल्म का गीत सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत है आनंद मिलिंद का।

आकाशवाणी भोपाल से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए अब सुनिए फिल्म दिल जले का गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और इसे संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

इंदीवर का लिखा बप्पी लहरी का संगीत से सजा हुआ गीत अब सुनिए, बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम है प्रेम प्रतिज्ञा।

आकाशवाणी भोपाल से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का आखिरी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म एक लड़का एक लड़की से। आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की। इस गीत को लिखा है मजरूह ने और संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने। लीजिए सुनिए।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता कर द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्ञान शील एकता के ध्येय वाक्य के साथ विद्यार्थी और युवा शक्ति को राष्ट्र सेवा के संस्कार प्रदान करने वाला संगठन है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से वल्लभ भवन में यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। बैठक में शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी, एनीमिया नियंत्रण, कुपोषण, बाल विवाह की रोकथाम और उच्च जोखिम गर्भावस्था के प्रभावी प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली के कार्य की समीक्षा की। यहां भूस्खलन से रेलवे लाइन को भारी नुकसान हुआ था। मध्य और पश्चिमी रेलवे की टीमें मिलकर यहां काम कर रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण दौरे पर प्रदेश में आए हैं। कल देर रात में मंदसौर जिले के करोट स्थित थ्रोपरा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। और मौसम विभाग ने आज भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, शाम के 4 बजे
1: है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

टू सोल्जर लेकर हाजिर है शाहिद। और यहाँ पर संदेश टू सोल्जर में हमेशा हम बात करते हैं अपने वीर साहसी सैनिकों के बारे में और उनकी गाथाएं हम सुनते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं, और हम उनकी जर्नी, उनके करियर के बारे में भी जानते हैं, और अपने प्रोग्राम में हम उनकी लाइफ में झांक उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं और उनके स्ट्रगल को, उनके करियर को, उनके जोश और जज्बे को हम जानने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज संदेश टू सोल्जर के खास प्रोग्राम में शाहिद है आपके साथ। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल SSB, जो राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित हैं, और इसके अलावा कई सारे कमेंडेशन एप्लीकेशन से भी नवाजे जा चुके हैं शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट SSB। तो बहुत जल्द इस गाने के बाद हाजिर हैं और मिलाते हैं आपको आपके आज के हमारे खास मेहमान संदेश टू सोल्जर के।

से भी नवाजे जा चुके हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट SSP। तो बहुत जल्द इस गाने के बाद हाजिर होते हैं और मिलाते हैं आपको आपके आज के हमारे खास मेहमान संदेश टू सोल्जर्स के।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स शाहिद आपके साथ और आज के हमारे खास मेहमान हैं संदेश टू सोल्जर्स में श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स के हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट सेल और FM रेडियो रेनबो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमें मौका दिया गया है कि मैं अपने संदेश को पूरे देश और विदेश के सभी लोगों के साथ साझा कर सकूं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे पास आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने का।
1: सर धन्यवाद।
0: आपको बता दें कि श्री शिवम कुमार असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता अदम्य साहस सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स मेडल्स कमेंडेशंस और एप्रिसिएशंस सर्टिफिकेट्स तो उनको मिले ही हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में और आपसे जानना चाहते हैं कि सर आपके बारे में हमने जब जाना तो आपने फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल की विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो SSB और NIFT तो काफ़ी मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, तो कुछ बताइए इसके बारे में।
1: सर इसके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि अंग्रेजी के एक पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय।
0: ओके,
1: मेरी कहानी है कुछ ऐसी ही रही है
0: जी।
1: जब शुरुआत से बचपन से तो यूं मैं नहीं कहूंगा कि मुझे फौज में आने का शौक था
0: जी,
1: लेकिन जब मैं नौकरी कर रहा था NIFT के उपरांत तो हमारे सोसाइटी में एक शहीद मेजर नितेश राय थे।
0: ओके,
1: जिन जो शहीद हुए थे अफगानिस्तान के इंडियन आर्मी के एक मिशन में।
0: ओके,
1: और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था हमारे सोसाइटी में जिसमें मुझे होस्ट करने का मौका मिला।
0: अच्छा, तो आप उस जमाने में पढ़ रहे थे?
1: नहीं, मैं कॉलेज के बाद में नौकरी कर रहा था।
0: अच्छा,
1: तो उसके जब उस होस्टिंग के दौरान मुझे उनकी पूरी जीवनी जानने का मौका मिला, उन्होंने क्या क्या त्याग किए देश के लिए इसको जानने का मौका मिला, उनके साहस और शौर्य से वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय के किसी कोने में जाके बैठ गई
0: जी।
1: उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे भी यही करना है, वर्दी तो धारण करनी है देश के लिए और राष्ट्र सेवा में ही
0: जी। तो जो शहीद मेजर थे वो आपके प्रेरणा स्रोत बने और आप फैशन टेक्नोलॉजी से सीधा सशस्त्र सीमा बल।
1: जी बिल्कुल, फैशन से ये सशस्त्र सीमा बल का जो सफर है
0: जी,
1: उसको
0: जी।
1: उनको मैं शहीद मेजर नितेश राय को डेडिकेट करता हूँ।
0: क्या बात है सर। सर यहाँ ये भी बताइए हमें शिवम कुमार जी के ये जो सफर आपका रहा, मतलब आपने जैसे कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, आपने क्या महसूस किया उस वक्त जो

0: वो एक
1: जी
0: फौजी में तब्दील करती है, लेकिन वो दैट
1: एग्जैक्टली
0: इज़ द बेस, वो बेस है, फाउंडेशन है,
1: जी
0: उसके ऊपर आपको लगातार कोर्सेज करने हैं ताकि आप एक हुनरमंद और
1: जी
0: एक आप एबल ऑफिसर बन सकें, तो इसके लिए सारे
1: मतलब
0: कोर्सेज कराए
1: आप
0: जाते
1: अपनी
0: हैं।
1: निपुणता को लगातार जो है बढ़ाते रहें,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसमें एडिशन करते रहें। इसी
0: ये
1: एडिशन में आपकी एक बहुत ज़बरदस्त जो आपने ग्वालदाम उत्तराखंड में की, कमांडो ट्रेनिंग भी आपने की इन सब के साथ साथ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
0: जी, कमांडो, कमांडो जो है वो एक फिजिकल और मेंटल
1: जी
0: दोनों तरीके से आपको सशक्त बनाता है कि आप विषम परिस्थितियों में,
1: जी
0: दुर्गम पहाड़, दुर्गम वनों में आप लंबे लंबे ऑपरेशंस कर सकें, अपनी ट्रूप्स को, मोराल को हाई रख सकें और ऑपरेशंस में सामरिक रणनीति के साथ ऑपरेशन में विजय हासिल कर सकें।
1: तो सर ये तो ट्रेनिंग बहुत टफ रही होगी, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस इस कमांडो ट्रेनिंग वाला?
0: जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग तो टफ होती है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ट्रेनिंग तो बहुत टफ रहती है, लेकिन आपके अंदर जो वो जज्बा होना चाहिए वो ऐसा निहित कर दिया जाता है उस्तादों के द्वारा, इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, कि वो
1: जी
0: समय धीरे धीरे पार हो जाता है और आप जब बिगर पिक्चर की ओर देखते हैं, जब आप देखते हैं कि यहाँ से जब आप तप के जाएंगे, जब आप निखर के जाएंगे यहाँ से, तो फील्ड में इसके कई फायदे होते हैं, जो कि फायदे आज हमें महसूस कर रहा हूँ मैं।
1: सर, आपने इतनी सब ट्रेनिंग हासिल करी, आपने अपनी एक बहुत ही एक अलग इमेज, एक बहुत ही बड़ी पोजीशन आपने बनाई, और इसके ही एवज में आपको अपनी सेवाओं के बदले ही बहुत ज़्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया, आपको बहुत सारी कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस भी मिले, और साथ ही साथ आपने अपनी जो लीडरशिप स्किल थी, ऑपरेशनल एक्सेलेंस थे, और ख़ास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस, उसमें भी आपने न सिर्फ उनको अच्छे से किया बल्कि उनमें निपुणता हासिल करके एक अपनी एक ऐसी पोजीशन बनाई जिसकी वजह से आपको वो रिकॉग्निशन, वो अवार्ड्स, वो मेडल्स से नवाजा गया।
0: जी बिल्कुल, मेरा ये सौभाग्य था कि एकेडमी से निकलते ही मुझे पहली ही पोस्टिंग एंटी नक्सल ऑपरेशंस के थिएटर में मिली,
1: जी
0: जो कि बिहार के लखीसराय ज़िले में था, और क्योंकि मैं झारखंड बिहार से मेरा ताल्लुक़ है,
1: जी
0: तो सन ऑफ सॉइल होने का फ़ायदा मुझे मुझे वहाँ पे मिला। मतलब वहाँ पे लोगों की क्या पीड़ाएं हैं,
1: जी
0: नक्सल का मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं विलेजर्स के साथ, कैसे उनको ब्रेन वॉश करते हैं, ये समझना मेरे लिए ज़्यादा आसान था क्योंकि लोग मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते थे, बींग अ लोकल मुझे ये फ़ायदा मिला। और फिर फाइनली जो आगे की रणनीति थी, जो सीनियर्स का सपोर्ट था, उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग हुई।
1: और आगे हम आपसे जानेंगे कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन आपने किए, एंटी माइस्ट ऑपरेशंस भी आपने किए, और बिहार का एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यादगार एक ऑपरेशन था जिसके ही बदले में आपको उस सेवा की ही एवज़ में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया, और हम उसके बारे में आपसे जानेंगे आगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे सुनने वालों के, हमारे श्रोताओं के, आपके लिए। आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल।

0: भारत तुझे सलाम। देश के नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर, बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगा एक बार फिर आपका आज के इस बहुत ही स्पेशल शो में, जिसमें जोश से भरपूर श्री शिवम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं।
1: धन्यवाद साहिद जी।
0: और मैं अपने लिसनर्स को, अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप हमें, हमारे पास लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं, और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, जिन लोगों को अभी तक मैं नंबर नहीं बता पाया था। और आप साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में हमसे हैं जुड़े हुए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से हुआ सफर शुरू बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन के साथ श्री शिवम कुमार का, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो बन गए एक जोशीले जांबाज सिपाही सशस्त्र सीमा बल के। सर, आपकी पूरी सर्विस में अभी तक की, आप अभी भी सर्विस में हैं, और सर्विस के दौरान आपकी पोस्टिंग रही SSB एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में और 32 बटालियन SSB बिहार में, और फिलहाल आप सर्व कर रहे हैं CI & JW स्कूल ग्वालदाम। तो सर, ये जो आप प्रेजेंटली जो सर्विंग है आपकी, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, CI & JW स्कूल में आप क्या करते हैं और ये क्या है?
1: काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदाम में, उत्तराखंड में स्थापित है। ये हमारे इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे कि जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसे कि सभी बलकर्मी इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक उस कोर्सेज को पूरा करते हैं ताकि वो अपनी सेवा में और दक्षता हासिल कर सकें। तो हमारे CI & JW स्कूल ग्वालदम में माउंटेनियरिंग विंग है, जहाँ पे कि मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि SSB की टीम माउंट एवरेस्ट की सीमाओं पर भी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर
0: जी
1: अपना विजय तिरंगा फहरा चुकी है।
0: बहुत खूब सर, क्या बात है।
1: इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग होती है, कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, बहुआयामी ट्रेनिंग सेंटर है ये।
0: तो आप इस ट्रेनिंग सेंटर में एज ए ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बतौर इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
0: जी, तो सर किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप पहले सर्व कर चुके, उसके बाद फिर आप अब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो सीखना और फिर सिखाना, इन दोनों में कितना अंतर आप पाते हैं और क्या ज़्यादा कठिन आपको लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही का अपना अपना महत्व है। जिस व्यक्ति ने धरातल पर

0: कार्य किया है, जिसे धरातल की जो भी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, वो पता है, वह बेहतर तरीके से उसको अपने आने वाली पीढ़ी को या जो भी ट्रेनीज रहते हैं उसको बता सकता है। और यही करने की मैं कोशिश करता हूँ, जो भी मैंने ग्राउंड में अपने अनुभव से और जो हमारा एक वहाँ पर टेन्योर रहा है उससे सीखा है, उसको ट्रेनीज को बताने की मेरी चेष्टा होती है ताकि वो ग्राउंड के लिए रेडी बन सके।
1: जी अच्छा शिवम कुमार जी, हम यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे कि एक जब फौजी बन रहा होता है तो उसके दिल में क्या अरमान, क्या जज्बा होता है देश सेवा को लेकर के? क्या वो सब चीज़ें चाहता है कि वो जाएगा फ्रंट पर और जैसे दुश्मनों का मुकाबला करेगा और वो बिल्कुल एकदम बेखौफ होकर के, निडर, बिल्कुल साहस के साथ उनका सामना करेगा भले ही फिर वो अपनी जान की परवाह ना करे, कुछ भी हो जाए, वो जज्बा कैसा होता है?
0: बिल्कुल शाही जी, इसमें ऐसा है कि जब हम बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत धीरे धीरे हमारी नौकरी आदि बढ़ती जाती है
1: जी,
0: तो हमें ये समझ में आ जाता है कि एक फौजी के जीवन का ध्येय वाक्य होता है कि लड़ाई ना तो अधूरी होती है और ना ही अधूरे मन से लड़ी जाती है।
1: क्या बात है।
0: तो एक फौजी अपने पूरा जीवन न्यौछावर करता है, इसी के लिए वो तपता है ताकि जब मौत सामने नाच रही हो
1: जी
0: तो फौजी उसका डटकर सामना करे और अपने देशवासियों का, अपने राष्ट्रवासियों का, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसे दिया गया है
1: जी,
0: उसे बखूबी निभाए।
1: क्या बात है, ये जोशीले स्वर आ रहे हैं हमारी तरफ श्री शिवम कुमार जो हैं असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर ये जज्बा और ये जोश आप जो जिस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं आपको देख करके और आपसे सुन करके, तो इस जज्बे के साथ ही हमारा युवा अगर इसमें जाना चाहता है तो किस तरीके से आप उसको गाइड करना चाहेंगे?
0: जी, युवाओं के लिए सशस्त्र सीमा बल में जाने के 3 रास्ते हैं
1: जी।
0: अगर कोई कांस्टेबल लेवल पे भर्ती होना चाहता है तो SSC द्वारा GD की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी मैट्रिकुलेशन होती है,
1: ठीक है।
0: इसके उपरांत कोई अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर के पद पर जाना चाहे
1: जी
0: तो SSC द्वारा CPO की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है किसी भी स्ट्रीम में। और बतौर डायरेक्ट क्लास ए ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट अगर इसमें कोई जाना चाहे
1: जी
0: तो UPSC द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन करवाई जाती है, जिसके लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है।
1: ओके, जैसे कि आपने UPSC पास करके
0: जी बिल्कुल
1: एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आपने ज्वाइन किया
0: जी बिल्कुल।
1: लगातार हमारे पास हमारे आज के मेहमान श्री शिवम कुमार के लिए यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला लगातार जारी है। शिवम कुमार जी, मैं आपको वो मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे आपका जो बहुत ही ज़्यादा एक यादगार मैं कहूँ और वो हर तरह से यादगार एंटी माइस्ट ऑपरेशन आपने जो किया लखीसराय बिहार में फरवरी 2022, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कितना क्रिटिकल था, वो ऑपरेशन कितना कामयाब था और कितना खतरनाक था वो ऑपरेशन।
0: जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपनी नौकरी के पहले 1-2 वर्षों में ही
1: जी
0: ऐसे एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल होने का मौका मिला और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा श्री सोमी जोशी सर जो इंस्पेक्टर जनरल थे
1: जी,
0: श्री दीपक सिंह जो मेरे बटालियन के कमांडेंट थे 32वीं वाहिनी के, इसके अतिरिक्त मेरे जो सीनियर्स थे श्री नरपत सिंह
1: जी,
0: श्री जसवीर सिंह तोमर, श्री गुलशन झा, और जो मेरे सबऑर्डिनेट्स और कलीग थे ऋतुराज, अरविंद
1: जी,
0: राणा और प्रदीप का, जिन सब के टीम वर्क ने जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे ग्रूम किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था फौज के लिए, मुझे ग्रूम किया ताकि मैं इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकूं, लीड कर सकूं और विजय हासिल कर सकूं
1: जी। और आपको हम बताना चाहेंगे कि शिवम कुमार जी हमारे पिछले संदेश टू सोल्जर्स में कुमार ऋतुराज जी भी हमारे साथ इस शो में मौजूद थे, तो वो आपके सीनियर थे, उन्होंने भी बहुत गाइड किया आपको।
0: जी जी बिल्कुल, वो मेरे साथ काम करते थे, वो मेरे सबऑर्डिनेट थे और उनका भी सहयोग रहा है इस चीज़ में
1: जी। तो हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे ये ऑपरेशन किस तरीके से आपने कंप्लीट किया और कितना टफ था, कैसे प्लानिंग करी और कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, आपका टीम वर्क कैसा था?
0: जी बिल्कुल, सर्वप्रथम यह है कि किसी भी ऑपरेशन को
1: जी
0: सिर्फ आप असले और बारूद के बल पे आप नहीं जीत सकते हैं, ऑपरेशन जीता जाता है टीम वर्क से, साथियों के सहयोग से
1: जी,
0: एक उचित मार्गदर्शन से और सामरिक रणनीति से। इस ऑपरेशन में भी हमने सबसे पहले जो किसी भी ऑपरेशन का मूल आधार होता है वो है इंटेलिजेंस इकट्ठा करना
1: जी।
0: सबसे पहले हमने इंटेलिजेंस इकट्ठा की माओवादियों के बारे में, जिस एरिया में मैं काम करता था लखीसराय बिहार में, वहाँ जितेंद्र कोड़ा, विनोद कोड़ा और अर्जुन कोड़ा, ये सब आतंक के प्रतीक थे जिनके ऊपर 50 से अधिक हत्याओं के मामले चल रहे थे, ये सभी नक्सली टीम के मेंबर्स थे और 50 से अधिक

0: हत्याओं के इन पे मामले थे, हमने उनके बारे में आसूचना हासिल की, इंटेलिजेंस हासिल किया उनके बारे में, इसमें कि हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थे
1: जी,
0: और टेक्निकल चीज़ों का भी हमने मदद लिया, गैजेट्स का हमने मदद लिया। उसके बाद उनको हमने एक चक्रव्यूह में फंसाया, जिस चक्रव्यूह में सभी नक्सली फंसते चले गए और फाइनली ये ऑपरेशन, एक लंबी कहानी है ये, एक दिन का सफर नहीं था, 3 महीने तक इसकी तैयारी चली।
1: ओके, तो आपने ये जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे इनको न्यूट्रलाइज भी किया और इनको, मतलब इनके उन जो काम थे इनके, उनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी उनको भी आपने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया इस ऑपरेशन के माध्यम से।
0: जी बिल्कुल, उनका उनका जो शैली था उनका, वो किडनैपिंग करते थे, एबडक्शन करते थे
1: जी,
0: लोगों में उनका आतंक था, कभी भी रात में किसी भी घर किसी के घर घुस जाना और बंदूक की नोक पे उससे ऐसे कार्य करवाना जिसको कि वो नहीं चाहता है करना, और उनके डर के कारण वहाँ की जो जनता थी कभी खुल के हमसे बात नहीं करती थी, अपनी शिकायतों को नहीं रखती थी। तो इस चीज़ पे हमने काम किया और फिर ये एक पूरी प्रक्रिया थी जिसको कि हमने किया, इंटेलिजेंस जनरेशन से लेकर के और ऑपरेशन एग्जीक्यूशन तक।
1: और जाहिर है कि जब इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया तो फिर वो जो एक भरोसा जो टूट रहा था वो जनता में भी फिर दोबारा से कायम हुआ होगा।
0: जी बिल्कुल, इसमें ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के उपरांत असली खुशी तो वही होती है, असली खुशी ये नहीं है कि आपने नक्सली को मार दिया
1: जी
0: या आतंकवादी को मार दिया, असली खुशी वो है कि जब आप जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल से निकलें, जब आपका कॉन्वॉय निकले
1: जी,
0: या छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा या बिहार के भीमबांध से जब आपकी गाड़ी निकले और तब कोई बच्चा हाथ में झंडा लिए जय हिंद आपको करता है,
1: क्या बात है,
0: तब जो उसके चेहरे की जो वो सुरक्षा का भाव उसके चेहरे पे रहता है, ये आपकी असली जीत है बतौर फौजी,
1: क्या बात है। तो उस झंडे के साथ और उस जय हिंद के नारे के साथ वो जो खुशी मिलती है वो खुशी सबसे बढ़कर होती है।
0: जी बिल्कुल, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है कि जनता का विश्वास जो हमने जीता है
1: जी,
0: वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है और इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ये करने में सक्षम हुए थे।
1: जी बिल्कुल, क्या बात है। और यही वो ऑपरेशन था जिसकी वजह से आपको प्रेस्टीजियस पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया राष्ट्रपति द्वारा 2024 में।
0: जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन में सबका सहयोग था, सीनियर से लेकर के जूनियर सबका सहयोग था
1: जी।
0: मैं आपको छोटा सा वृतांत इस ऑपरेशन का बताना चाहता हूँ।
1: जरूर जरूर।
0: ये हमारी प्लानिंग चल रही थी, जो बिहार के लखीसराय में मैं लोकेटेड था, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी, तो हमारी प्लानिंग चल रही थी कि वहाँ का जो नक्सल ग्रुप है उसको कैसे ट्रैप किया जाए, अपने चक्रव्यूह में कैसे लाया जाए। तो जिन सीनियर्स के मैंने नाम बताया आप
1: जी,
0: उनके सानिध्य में हमारी प्लानिंग चली, फिर हमने एक गुप्तचर को प्लांट किया उनके नक्सली टीम में और फिर उसके द्वारा दी गई सटीक जानकारी के बेसिस पे हमें ये पता चला कि दिनांक 2 फरवरी 2022 जो मुठभेड़ का दिन था
1: जी,
0: उस दिन ये नक्सली जंगल में आने वाले थे, कोई एक खास जगह थी जहाँ पे वो आने वाले थे। तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे, हमने पहले से एक लंबी प्लानिंग कर रखी थी। तो हमारी टीम उसके अंदर लॉन्च हुई
1: जी,
0: हम अपने पूरे फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ लॉन्च हुए और हमारे हमारे जो कमांडेंट जो थे श्री दीपक सिंह एवं श्री सुशील कुमार जो लखीसराय बिहार के SP थे एवं श्री मनोरंजन पांडे हमारे कमांडेंट सर थे, उनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम लॉन्च हुई जिसमें नरपत सिंह डिप्टी कमांडेंट, गुलशन झा सर, जसवीर तोमर सर और मैं, और मेरे साथ अलग अलग रैंक्स के लड़के थे, हमने 2 टीमें बनाई। और जंगल की अपनी चुनौतियां हैं,
1: बिल्कुल
0: जंगल में आपको ये नहीं पता होता है कि गोली कब किधर से आएगी,
1: क्योंकि
0: कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। तो हमें एक जनरल इलाका पता था कि यहाँ पे नक्सली आने वाले हैं
1: जी,
0: तो हम उस इलाके की तरफ बढ़ रहे थे अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ। और 2 तारीख को लगभग 9 बजे सुबह की बात है ये
1: जी,
0: सीधे गोलियों की बौछार हम पे आई।
1: ओके, तो यानी कि आपकी जब आंख खुलती है तो सीधा गोलियों से आपका स्वागत करते हैं
0: जी,
1: वो लोग।
0: जी बिल्कुल, हम जब आगे बढ़ रहे थे उस एरिया की तरफ जा रहे थे तो एकदम से हमारी गोलियों की बौछार हमारे ऊपर आई, क्यों, और जंगल में एक सिद्धांत चलता है
1: जी,
0: यू मिस एंड आई हिट, और पहली गोली जो थी नक्सलियों की वो उन्होंने मिस कर दिया था,
1: ओके,
0: से किसी को भी वो उनकी पहली गोली नहीं लगी। तब हमें पता था कि अब हमें क्या करना है, उसने मिस कर दिया, वी आर गोइंग टू हिट देम,
1: एग्जैक्टली, मतलब हम नहीं मिस करेंगे किसी भी कीमत पर।
0: बिल्कुल, एक हमारी ट्रेनिंग ही इसलिए होती है
1: जी,
0: कि हमको उसको हिट करना है। तो हमने वहीं पर रणनीति बनाई कि कौन किधर से कैसे अटैक करेगा, और फिर जवाबी जो हमारी कार्रवाई थी वो हमने फुल स्ट्रेंथ में जवाबी कार्रवाई की नक्सलियों के ऊपर, क्रॉस फायरिंग चली, बहुत देर तक फायरिंग चलती रही, लगभग आधे घंटे तक ये फायरिंग चली, उसके उपरांत जाकर के ये फायरिंग समाप्त हुई। तो तो ये जो यज्ञ, ये जो नक्सल एनकाउंटर होता है ना, ये हम फौजियों के लिए एक यज्ञ जैसा है, एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा है, जिसमें कि हम अपना तन मन धन सब झोंक देते हैं। तो फिर जब ये फायरिंग खत्म हुई
1: जी,
0: उसके बाद जाकर के हमने देखा तो हमने पाया कि दो बॉडीज वहां पे हमें मिली, और संयोग से वो दोनों बॉडीज थी जितेंद्र कोड़ा और विनोद कोड़ा की,
1: मतलब जो उनके लीडर्स थे।
0: जी बिल्कुल, जो उनके लीडर्स थे, जिनका आतंक जो है वो पूरे पूरे लखीसराय क्षेत्र में कहें, पूरे बिहार क्षेत्र में फैला हुआ था, और जिनके आतंक के कारण जनता हमसे कुछ बात नहीं करती थी, हमारे नज़दीक नहीं आती थी, उन दोनों की बॉडीज़ हमें वहाँ मिली। और उसके अतिरिक्त एक उनका और लीडर था अर्जुन कोड़ा
1: जी,
0: जिसको कि उसके राइट थाई में जा करके हमारी गोली फंस गई थी, और फिर आगे आने वाले एक महीने बाद
1: जी
0: उसने सरेंडर किया एक दूसरी फोर्स के सामने, और उसने ये बताया
1: जी
0: कि उस दिन SSB के साथ हुई मुठभेड़ में वो गोली जो है मेरे थाई में आके फंस गई है, और अगर मैंने सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इलाज नहीं करवाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।
1: तो उसके बाद इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा।
0: जी बिल्कुल, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी, मैं इसे अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम पल, अविस्मरणीय क्षण मानूंगा, जहां पे कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ ऐसे राक्षस से लड़ा
1: जी
0: और उसे पराजित किया, और उसका जो फल मिला वो सबसे सुखद फल था कि जो हमारा ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा बंधुत्व
1: जी,
0: हमने सेवाएं दी वहां की जनता को, उनके मन में नक्सलियों को मारने के उपरांत
1: जी
0: उनके मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ
1: बिल्कुल,
0: और अंततः वो बंधुत्व में तब बदला जब मैं उसी गांव वाले के साथ जो हमसे बात नहीं करता था उसी के साथ मैं बैठ करके चाय पीता था
1: और क्या बात है,
0: खाना खाता था।
1: क्या बात है सर,
0: ये सशस्त्र सीमा बल की जीत थी।
1: बेशक बेशक, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आपका इतना डायरिंग ऑपरेशन था उसके बाद इसमें जो आपने कामयाबी हासिल करी तो यही सबसे बड़ी जीत थी कि जो विश्वास जो आपने बनाया उन लोगों में जो आपसे पहले बात करने में डरते थे। यहाँ जिस तरीके से शिवम कुमार आप अपनी जिस तरीके से ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे, भाई इमेजिन कर रहा था स्टूडियो में बैठ करके कि वो क्या सिचुएशन, वो मंजर रहा होगा। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ, एक शायद लिसनर भी जानना चाहता है, और इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको अभी ले नहीं पा रहा, बाद में लूँगा। तो क्या ये जो हम अक्सर मैं बात करता हूँ कि हम इस तरीके की कुछ सिचुएशंस देखते हैं, आप आमने सामने से दो ग्रुप में जो फायरिंग चल रही है, बैटल चल रही है, वॉर सिचुएशन है, तो वो हम फिल्मों में जो देखते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट सा होता है, लेकिन आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, और आप अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी वहाँ पर लगा रहे हैं उन क्रिमिनल से, उन आतंकवादी से लड़ने के लिए। सर वो मोमेंट, वो जज्बा, वो जो एक फीलिंग होती है वो क्या होती है, वो खौफ, वो डर, वो सिचुएशन, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके अपने शब्दों में।
0: सबसे पहले तो मैं जो सुन रहे हैं जितनी भी श्रोतागण, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये फिल्मों में जो ग्लैमराइज किया जाता है, फौज में आने के सबसे पहले दिन तो आपका ग्लैमर जाता है, वो ग्लैमर छूटता है सबसे पहले, क्योंकि आप ग्लैमर के बल पे आप ये बहुत लंबी सेवा नहीं दे सकते हैं
1: जी।
0: इसमें आपके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना
1: जी,
0: जो राष्ट्र के प्रति जो आपकी सेवा भाव है, जो अंतर्निहित किया जाता है, वही आपको लंबे समय तक बतौर फौजी आपको खींचेगा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जब गोलियां चलती हैं
1: जी,
0: तो हमारी तैयारी इसी क्षण के लिए होती है। एक फौजी के जीवन में ये सबसे बड़ा क्षण होता है कि जब उसको सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसने समाज के में कई हत्याएं की हैं
1: जी,
0: कई बेगुनाहों की जान ली है, जब वो उसका खात्मा करता है तो हम इसे किलिंग नहीं, इसे हम वध मानते हैं, और एक राक्षस का वध करते हुए जो अनुभूति होती है, जो आनंद आता है, वो
1: उसके कहने क्या है,
0: उसको लफ्जों में बयां नहीं किया जा
1: सकता। क्या बात है, और इसीलिए देश की मिट्टी को सलाम करने को जी चाहता है उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ शिवम कुमार ने इस खतरनाक ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। सर मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता, मैं आपको एक एक करके कुछ मैसेजेस पढ़ करके सुनाऊंगा। शुरुआत जो सबसे पहला मैसेज आया हमारे पास यहां पर, बोथ आरजे एंड असिस्टेंट कमांडेंट शिवम जी एंड ऑल AIR न्यू दिल्ली फ्रॉम, ये मुबारकबाद दे रहे हैं, वणक्कम नमस्कारम, और ये हैं श्रीरंगम राजेश, श्रीरंगम त्रिची त्रिचुपल्ली तमिलनाडु से
0: जी। धन्यवाद और जय हिंद राजेश जी आपको।
1: और इसके बाद है एक मैसेज, जय हिंद साहब, बहुत बहुत मुबारक सर आपको, SSB के जरिए पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं आप, आपके साथ
0: कजरा लिखा है,
1: हाँ कजरा में काम कर रहे बहुत कुछ सीखने को मिला साहब, जय हिंद। सर ये आपके कोई एसोसिएट कोई आपके साथी या जूनियर लगते हैं?
0: बिल्कुल ये मेरे साथ के हैं मेरे। अच्छा। जूनियर और सीनियर तो है, ये पूरी टीम की बात है क्योंकि
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: मेरे टीम के साथी हैं,
1: साथी
0: हैं, कार्य किया है हमारे साथ।
1: और इसके बाद ये जय हिंद टू रेस्पेक्टेड गेस्ट सर एंड आरजे सर हियर। आई वुड लाइक टू पे माय ग्रेटिट्यूड टू शिवम सर एंड ऑल आवर इंडियन आर्मी।

0: from bottom of my heart. It's because their selfless service with dedication, devotion, they discharge their duty fearlessly. They are real heroes. I bow my hat to them, so I would say Jai Hind, Bharat Mata Ki Jai, Vande Mataram. Myself, Shankar Lodh, and my wife, Anjali Lodh, offer obedience to all my, to them. My request to Arjun sir, please forward my message, Shivam sir. Thank you. Sir, aapka message humne pahuncha diya hai, Shivam sir sun rahe hain.
1: Ji, dhanyawad, Mrs. and Mr. Lodh ji. Main आशा करता हूं कि आप ये सभी संदेश जो फौजियों के द्वारा दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इस चीज के लिए आपका धन्यवाद
0: जी। इसके अलावा मैसेज है, ये शुभ संध्या कह रहे हैं, जय हिंद, राजेश भल्ला एडवोकेट हैं कंकड़खेड़ा मेरठ से।
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको राजेश जी। मुझे खुशी है कि
0: जी
1: एडवोकेट से लेकर के टीचर सभी वर्ग के लोग हमारा इस संदेश को सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल सर, अपने कर्म और मजबूत इरादों के लिए पहचाने गए नक्सल उन्मूलन हेतु कृत संकल्प राष्ट्र प्रेमी को सल्यूट है। ललन मिश्र रांची झारखंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको।
1: जी बिल्कुल, रांची मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि रही है, तो यहां से मैसेज आया।
0: बिल्कुल, आपके अदम्य साहस और त्याग के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं। आप हमारे असली नायक हैं। जय हिंद, जय भारत। यह है नेहा मिश्रा सर।
1: मुझे खुशी है कि समाज के सभी लोग फौज के कार्यों का, फौज की जो भी ड्यूटीज होती हैं उसका इतना सम्मान कर रहे हैं।
0: और ये है सर, जय हिंद सर, प्लीज एक कविता भारत माँ के नाम कहिए। रोहित मेहर हैं ये, विजयपुर बारगढ़ उड़ीसा से।
1: जी रोहित जी धन्यवाद, मैं कविता सुनाऊंगा आपको अंत में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर सुनना चाहेंगे सर। हम लोगों का शिवम सर के साथ काजरा बिहार में कार्य करने का अनुभव बहुत उम्दा रहा। शिवम सर का पुलिस को जनता से करीब लाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है काजरा लखीसराय बिहार में। सर ये भी आपके कोई साथी लगते हैं, सौम्य झा इनका नाम आ रहा है।
1: जी बिल्कुल, ये मेरे साथ के ही हैं, और हमारा उद्देश्य यही होता था कि जनता और पुलिस के बीच, फोर्स के बीच की जो खाई है उसको, उस खाई को पाटना ही
0: पाटना
1: हमारा उद्देश्य था।
0: बिल्कुल, करीब लाना है। जय हिंद सर, मैं आपको सुन रही हूँ, आपकी बातें और आपकी, आपके जज्बे को सलाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारे देश के नौजवान प्रभावित होकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, मैं शबनम हूँ बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से। गैलेंट्री अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई दे रही है सर आपको।
1: धन्यवाद शबनम जी, जय हिंद।
0: और ये हैं शिवम जी, यू आर अ पर्सन ऑफ ग्रेट विल पावर एंड करेज, एट द सेम टाइम यू आर वेरी काइंड ह्यूमन, अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर आवर यंगर जनरेशन। मैसेज आया सर ये विश्वजीत बिहार से, प्राइड ऑफ नेशन, प्राइड ऑफ बिहार, शिवम कुमार।
1: धन्यवाद विश्वजीत जी हमारे कार्यों की सराहना करने के लिए।
0: जी और ये हैं सर, हेलो सर, ग्वालदाम में महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे से आपने काम किया है। ये हैं मृदुल झा।
1: जी धन्यवाद मृदुल जी आपको, ये मुझे उम्मीद है कि ये शायद हमारे यहाँ माउंटेनियरिंग कोर्स जो महिलाओं का,
0: जी जी जी, उसकी ये उसकी जरूर जरूर पार्टिसिपेंट रही होंगी। मैं नरपत सिंह, उप कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ कांकेर छत्तीसगढ़, अपने 60 जवानों के साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं सर। ये FM रेनबो की पूरी टीम को हार्दिक आभार, कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक और आनंददायक है। हमारे साथ श्री दकेश्वर प्रसाद चंद्र सहायक कमांडेंट भी उपस्थित हैं, उनकी ओर से भी शिवम जी एवं पूरी टीम को विशेष रूप से जय हिंद।
1: नरपत सर 4 बार के गैलेंट्री विनर हैं, मैं
0: okay.
1: तो अपना गुरु मानता हूं, और हमारे टीम के ये ग्राउंड कमांडर्स में से एक थे, तो okay. जो मैंने सीखा है इन्हीं सीनियर्स से सीखा है।
0: क्या तो, बात है सर, तो नरपत सिंह जी भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने इस शो के माध्यम से, आपने हमें मैसेज भी किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है शिवम सर, एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी, फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही ट्रूली डिजर्व्स ऑल द एक्लेड्स because of his team and their dedicated efforts, a lot of people today live terror free, proud of him. Ayush Dhadich hain ye Nayi Delhi se.
1: Ji bilkul, ye hamare junior hain aur main ummeed karta hu ki jis pehal ki shuruaat hum logon ne ki hai us pehal ko aage aane wale jitne bhi adhikari hain usko maqam tak le jayenge apni team ke sath.
0: Bilkul, aur Ayush bhi uska hissa rahenge.
1: Ji bilkul.
0: Aur ye hain naxali operation ko successful banane ke liye bahut bahut badhai Shivam ji, proud of Shalini Pathak likh rahi hain aapke liye.
1: धन्यवाद शालिनी जी आपका।
0: और यह है, मैं सोता हूँ रातों को चैन से क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे लिए कोई जाग रहा है। शिव है ये मेरठ से।
1: ये हमारा फर्ज है, हमने राष्ट्र सेवा की कसम खाई है, और आप ऐसे ही आप चैन से सोएं यही हमारी कल्पना है।
0: और यह है सर, शिवम सर के साथ कचरा में काम करने का अवसर मिला, कई ऑपरेशन में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। शिवम सर का नक्सलियों के लिए डायलॉग था कि ये कि या तो तुम अपनी हरकत छोड़कर समर्पण कर दो या ये देश, वरना अंजाम तो जानते ही हो। टीम को सदा फ्रंट से लीड किया है, ये कह रहे हैं पंकज लखीसराय से। सर आपके साथी हैं भी।
1: जी पंकज हमारे साथ के थे, और ये सभी जाबाज ये टीम मेंबर्स हैं मेरे, जिन्होंने गोलियों के सामने जिन्होंने सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया।
0: जी जी जी, और आपका पूरा पूरा साथ दिया और अपने आप को बिल्कुल कदम से कदम मिला करके।
1: जी बिल्कुल, ये इनके बिना

0: ये सारी उपलब्धि या ये सारा ऑपरेशन संभव ही नहीं था।
1: बिल्कुल। और एक और मैसेज है सर, जय हिंद सर, जब भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं संदेश टू सोल्जर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर आपको बहुत बहुत बहुत जय हिंद। हम भी सर अपने बच्चों के को आर्मी में भेजना चाहते हैं। हम संजय बोल रहे हैं उत्तम नगर से नई दिल्ली, और आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है और हमारे आर्मी के सभी जवानों को जय हिंद कह रहे हैं। ये
0: धन्यवाद संजय जी, और एक बार फिर से जैसा इन्होंने कहा, मैं एफएम रेडियो को, एफएम रेनबो को धन्यवाद देना चाहता हूं
1: जी,
0: कि जो देश विदेश के सभी लोगों को फौज के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे अवगत करा रहा है और फौज के राष्ट्रप्रेम से, राष्ट्रप्रेम की झागना को, भावना को प्रज्वलित कर रहा है लोगों के अंदर।
1: बिल्कुल सर, आकाशवाणी रेनबो का ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड शो है ये, और ये है संदेश टू सोल्जर्स। सर आपके साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। जो समय हमारे पास बचा है वो बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए इस जोश और जज्बे के साथ। हमारे साथ हैं श्री शिवम कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स शाहिद के साथ।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शायद के साथ और हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट हैं सशस्त्र सीमा बल। सर, हम आपसे बहुत ही शानदार और जोश और जज्बे से भरी हुई बातें यहां पर कर रहे हैं और लगातार मैसेजेस का भी सिलसिला जारी है, मैं आपको जैसे अभी बता रहा था। तो हम यहां पर अब आगे बढ़ेंगे सर और जानना चाहेंगे कि आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस है जो आपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में दिखाया, उसके अलावा आपने कई खतरनाक वांटेड एक्सट्रीमिस्ट और क्रिमिनल्स को भी ढेर करा, उनको पकड़ने में पूरे पूरे सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाए, उसके अलावा आपने इसके अलावा भी कई हाई रिस्क ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं जिनके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रेस्टिजियस अवार्ड था पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2024 में। उसके अलावा आपको कई सारे मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशन मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं डायरेक्टर जनरल SSB से, इंस्पेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से और कमांडेंट से और अदर सीनियर ऑफिसर से भी आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के लिए, आपकी लीडरशिप के लिए, आपके प्रोफेशनलिज्म के लिए, पब्लिक स्पीकिंग और साथ ही एक चीज़ और भी जो आपके साथ जुड़ी हुई, इतनी सारी आपकी जो खूबियाँ हैं उनके साथ साथ कि आपकी जो लीडरशिप स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को, और साथ ही साथ फोर्स लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी आप कंडक्ट कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी शाजी जी, इसमें सबसे प्रथम ये है कि आप जिसके साथ भी कार्य करते हैं तो हमारे के जितने भी टीम मेंबर्स होते थे, हमारे जितने भी साथी होते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक,
0: जी
1: आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं, आप उनके साथ के ही हैं। जब आप उनकी परिस्थिति को समझेंगे, जब आप उनके शूज में आएंगे, तभी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो एक कमांडर का सर्वप्रथम यह कार्य है कि वो अपने साथियों की परेशानियों को समझे, उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ मुहैया करवाए और उनको मोटिवेटेड रखे कि हर परिस्थिति में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल इश्यूज हो, लगातार उसको केटर करे, उसकी उसकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करे और हर वक्त उसके साथ खड़ा हो, उसके अच्छे दिन में, उसके बुरे दिन में, तभी जा कर के वो फौजी या वो जो भी आपका सबॉर्डिनेट है,
0: जी
1: वो आपसे आगे, जब भी बाधा आएगी, जब भी गोली आएगी, तभी वो आपसे आगे, कमांडर के आगे वो खड़ा होगा। जब उसको पता होगा कि उसका कमांडर उसके लिए हर क्षण खड़ा है, तभी वो आपके लिए खड़ा होगा,
0: तभी वो खड़ा होगा क्योंकि आप उसके लिए पहले से खड़े हैं। सर, हम आपके अवार्ड्स और जो कमेंडेशंस हैं और जो आपके मेडल्स हैं उनकी बात करते हैं। नवंबर 2025 में एंटी नक्सल ऑपरेशंस और शानदार लीडरशिप के लिए ऑनरेबल गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने भी आपको अवार्ड से सम्मानित किया था, वो कौन सा अवार्ड था?
1: जी, मुझे एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए 2024 के नवंबर में,
0: जी
1: 2025 के नवंबर में, क्योंकि मैं झारखंड का रेसिडेंट हूँ,
0: जी
1: तो मुझे झारखंड के ऑनरेबल गवर्नर एवं ऑनरेबल CM के द्वारा सम्मानित किया गया था, क्योंकि मैं वहाँ का वासी हूँ, मेरा स्टेट झारखंड है और मैंने अपने फोर्स के लिए और अपने देश के लिए या अपने टीम के साथ मिलकर मुझे ये कार्य करने का अवसर मिला था,
0: जी
1: इसका सम्मान किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा।
0: जी, और सर इसके अलावा आपको उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी जनवरी 2026 में भी आपको सम्मानित किया गया था। आपकी जो एज ए ट्रेनर CINJW स्कूल SSB गोलदाम में आपने जो अपनी सेवाएं दी एज ए ट्रेनर, उसके लिए भी आपको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने भी सम्मानित किया था।
1: जी, मैं मेरी अभी जो करेंटली जो मेरी पोस्टिंग है,
0: जी
1: वो CINJW स्कूल SSB ग्वालदम में उत्तराखंड में है, जहाँ मैं बतौर ट्रेनर हूँ। तो पिछले 2 वर्षों से मेरी सेवाओं को फैसिलिटेट करने के, उसको सम्मानित करने के लिए मुझे ये मौका मिला कि मेरे सीनियर्स के द्वारा मेरा नाम नामित किया गया। मेरे DIG सर थे, श्री DN बॉम्बे सर, उन्होंने मेरा नाम नामित किया और मुझे झारखंड उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये पुरस्कार दिया गया।
0: जी, तो ये सर इतने सारे पुरस्कार हैं, इतने सारे आपके जो कमेंडेशंस हैं, मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं, इनको पा करके आप सर कैसा महसूस कर रहे थे और करते हैं?
1: सच पूछूं तो जब भी कोई ये कार्य करता है, अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में मैं जा रहा था, तो सर्वप्रथम इसमें ऐसा नहीं था कि पुरस्कार के लिए ये चीज़ें की जाती हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: तब सिर्फ राष्ट्रहित और देशहित का जो जज्बा है वही आपको इन चीज़ों के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन पुरस्कार उसका फल है। तो मैंने जितने भी ऑपरेशंस किए, मैंने अपने सीनियर से सीखा है कि आप फल के पीछे ना भागें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि जिंदगी और मौत जो है वो लाइन पे खड़ी होती है। तो इसके लिए पुरस्कार सिर्फ आपका मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, ये टीम एफर्ट है, राष्ट्रहित की भावना है जिसके लिए मैं ये कर रहा था।
0: जी,
1: और जब पुरस्कार से इसको नवाजा जाता है तो निश्चित रूप से ये अच्छा प्रतीत होता है,
0: बेशक, और हौसला और भी बढ़ता है और आपके जो भी साथी होते हैं उनको भी हौसला मिलता है। सर, ये सब ऑपरेशंस में, इतनी सारी आपकी ट्रेनिंग में, इतने आपके कोर्सेज में, और फैशन टेक्नोलॉजी से एसएसबी में आने में, परिवार का आपका किस तरीके से पूरा एक रोल रहा, सहयोग रहा, कैसी सपोर्ट रही, ये भी बताइए
1: जी। मैं बताना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे, मैं बड़े परिवार से आता हूँ जिसमें कि तीन, हम लोग चार भाई बहन हैं और मेरे माता पिता हैं और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी धर्म पत्नी भी हैं
0: जी।
1: तो मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने इसका खुले दिल से इसका सपोर्ट किया जब मैं फोर्स में आना चाहता था। हालांकि मेरी माँ डरती थी इस चीज़ से, लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत बार मुझे मोटिवेट किया। और मेरे जितने भी भाई बहन हैं और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरी दो बहनें बड़ी हैं, एक मेरे बड़े भाई साहब हैं,
0: अच्छा,
1: उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए लगातार। और अंत में जिस व्यक्ति का एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो है मेरी पत्नी। उन्होंने लगातार, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको ही इस कठिनाई को झेलना पड़ता था जब मैं बाहर रहता था, तीन चार दिनों तक मेरी बात नहीं होती थी उनसे,
0: तो ज़ाहिर ये सपोर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट।
1: हाँ, ये ऐसा सपोर्ट था जिसकी कि मैं कल्पना नहीं की थी मैंने, तो मैं उसके लिए सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है।
0: सर बिल्कुल, समय हमारे पास ख़त्म हो चुका है और बातें बहुत सारी बची हुई हैं और मैसेजेस इतने आ चुके हैं मेरे पास कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूँ तो मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट उसी में निकल जाएंगे। लेकिन मैं बस चलते चलते आपसे एक दो मैसेज पढ़ने के बाद चाहूँगा कि आप युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कहना चाहें तो वो कहें, और साथ ही अपनी वो एक स्पेशल कविता की चंद पंक्तियां भी जरूर सुनाइएगा। और मैं आपको तब तक एक दो पैसेज बता दूं सर, ये है, वी आर प्राउड ऑफ यू शिवम सर, रागिनी है गुवाहाटी से। इसके अलावा जय हिंद सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से। इसके अलावा ये है, हमारे देश के फौजी भाइयों की हमारे को हमारे ओर से सल्यूट, और काफ़ी लंबा मैसेज है, ये है पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरावाद से, और आप इसी तरह सभी को प्रेरणा देते रहें, और जय हिंद कह रहे हैं, यह हैं सरिता मिश्रा जी। और इसके अलावा प्रसाद दुबासी, HC आर्मर सर, यू आर लीडरशिप इज इंस्पायरिंग एंड यू आर एन एक्सेलेंट ऑफिसर, और योर वी अप्रिशिएट योर डेडिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। शायद ये आपके साथी होंगे।
1: बिल्कुल मेरे साथी हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि इसमें से मोस्टली जितने हैं उन्होंने मेरे साथ कार्य किया है, तो ये एक अच्छी बात।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप हमारे शो में आए और अपना समय निकाला। श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, आज के संदेश सोल्जर के हमारे खास मेहमान। धन्यवाद बहुत बहुत सभी लिसनर्स का और हमारे आज के खास मेहमान का।
1: धन्यवाद सर।
0: जय हिंद।
1: जय हिंद, जय भारत।

0: प्रस्तुत हैं इस घंटे।
1: सीमा चौकियों का दौरा किया और मौजूदा सुरक्षा स्थिति तथा सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का यह पहला दौरा है। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान की मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि पिछले साल कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में हुए विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से वल्लभ भवन में यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। बैठक में शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी, एनीमिया नियंत्रण, कुपोषण, बाल विवाह की रोकथाम और उच्च जोखिम गर्भावस्था के प्रभावी प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली कार्य की समीक्षा की। यहां भूस्खलन से रेलवे लाइन को भारी नुकसान हुआ था। मध्य और पश्चिमी रेलवे की टीमें मिलकर यहां काम कर रही हैं और भारत

सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब युवा श्रोताओं के लिए हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम हमारे जबलपुर केंद्र का योगदान है।

0: नमस्कार दोस्तों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सफर में हैं, ऑफिस से लौट रहे हैं या बस यूं ही रेडियो सुन रहे हैं तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ जरूर बिताइए। मैं हूं अनमोल द्विवेदी
1: और मैं हूं आद्या नायक और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का अपना युवा कार्यक्रम युववाणी, जहां हर बार होती है नई सोच, नए विषयों पर बातचीत और ढेर सारी प्रेरणा।
0: लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले आज आपके लिए हैं दो मजेदार सवाल। देखते हैं किनके जवाब आपको पहले से पता हैं या नहीं।
1: हमारा आज का पहला सवाल है, भारत में यदि किसी के साथ ऑनलाइन ठगी या साइबर अपराध हो जाए तो शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है।
0: और दूसरा सवाल है, भारत के किस महान नेता को पूरे देश में प्यार से बाबूजी कहा जाता था।
1: अगर आपको जवाब पता है तो बहुत बढ़िया,
0: और अगर नहीं पता तो चिंता की कोई बात नहीं, इन दोनों सवालों के सही जवाब हम आपको कार्यक्रम के आखिर में बताएंगे।
1: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म टू स्टेट से और जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा ने।

0: अच्छा आद्या, एक सवाल पूछूं?
1: हाँ अनमोल, लेकिन पहले ये बताओ कि सवाल आसान है या गूगल करना पड़ेगा?
0: अरे गूगल वाला नहीं है, दिमाग वाला है। अगर किसी युवा को उसका मोबाइल और बटुआ दोनों एक साथ खो जाए तो पहले वो क्या ढूंढेगा?
1: आजकल तो मोबाइल, क्योंकि बटुए में पैसे होंगे लेकिन मोबाइल में पूरी दुनिया ही रहती है।
0: बिल्कुल, दोस्त, परिवार, फोटो, यूपीआई, नोट्स। आज का युवा सुबह अलार्म से कम मोबाइल के नोटिफिकेशन से ज्यादा उठता है,
1: और रात को तो बस 5 मिनट और कहते कहते पता ही नहीं चलता कि कब एक घंटा निकल जाता है।
0: हाँ, और रील्स देखने बैठो तो पहले खाना ठंडा होता है, फिर माँ की आवाज गर्म हो जाती है।
1: मजाक अपनी जगह अनमोल, लेकिन डिजिटल दुनिया ने हमारी जिंदगी सच में आसान बना दी है। ऑनलाइन पढ़ाई, नई भाषा सीखना, जॉब के लिए आवेदन, यहाँ तक कि घर बैठे बैठे अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना, सब कुछ बस एक क्लिक दूर है।
0: सही कहा, आज का युवा सिर्फ कंटेंट देख नहीं रहा है, कंटेंट बना भी रहा है। सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा, रोजगार भी पैदा कर रहा है।
1: लेकिन जहाँ इतनी रोशनी होती है वहाँ थोड़ा अंधेरा भी होता है।
0: बिल्कुल, डिजिटल दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी मेहनत की कमाई पर बस एक क्लिक की दूरी पर नजर लगाए बैठे रहते हैं।
1: इसीलिए अगर कोई मैसेज आए, कंग्रेचुलेशंस, आपने करोड़ों रुपए जीत लिए हैं, तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए, मैंने आखिर किया क्या था।
0: हाँ, बिना टिकट खरीदे अगर लॉटरी लग रही है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कहानी में विलन जरूर है।
1: और OTP, उसका मतलब ही समझ लीजिए, ओनली तुम पढ़ोगे, किसी और को नहीं बताएंगे।
0: अरे वाह, ये फुल फॉर्म तो साइबर पुलिस को भी पसंद आ जाएगा।
1: पासवर्ड ऐसा रखिए जो दूसरों के लिए पहेली हो लेकिन खुद के लिए याद रखना आसान हो।
0: मेरे हिसाब से डिजिटल दुनिया बिल्कुल समुद्र जैसी है, जिसे तैरना आता है उसे नए रास्ते मिलते हैं, और जो बिना कुछ सोचे कूद पड़ता है उसे लहरें सबक सिखाती हैं।
1: वाह अनमोल, क्या बात कही है। दोस्तों, डिजिटल दुनिया से दोस्ती कीजिए, लेकिन आंखें खोलकर।
0: सीखिए, बढ़िए, सपने पूरे कीजिए, और सबसे जरूरी, ऑनलाइन जितने एक्टिव रहिए उतने ही सतर्क भी रहिए,
1: क्योंकि स्मार्टफोन तो सबके पास है लेकिन स्मार्ट यूजर बनना हमारे अपने हाथों में ही है।
0: तो साथियों, इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट सॉन्ग, जिसे लिया गया है फिल्म बर्फी से और जिसे आवाज दी है निखिल पॉल जॉर्ज, श्रेया घोषाल और प्रीतम ने।

0: आद्या, कभी कभी ना इतिहास की किताबों में कुछ ऐसे नाम मिल जाते हैं जिन्हें पढ़ते ही लगता है यार, इनके बारे में पहले क्यों नहीं पढ़ा था।
1: बिल्कुल अनमोल, और आज जिस व्यक्तित्व की हम बात करने जा रहे हैं वो ऐसे ही है, एक ऐसा नाम जिसने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया और सेवा को अपना जीवन।
0: जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे प्रेरक व्यक्तित्व हैं बाबू जगजीवन राम, जिन्हें पूरा देश प्यार से बाबूजी कहता था।
1: वैसे अनमोल, बाबूजी सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है?
0: घर वाले बाबूजी जो कहते हैं पंखा बंद कर दो, बिजली का बिल कौन भरेगा।
1: लेकिन हमारे आज के बाबूजी सिर्फ एक परिवार के नहीं पूरे देश के प्रेरणा स्रोत हैं।
0: हाँ, उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिले के चंदवा गांव में हुआ था। बचपन आसान नहीं था, समाज में भेदभाव था, मुश्किलें थी, लेकिन उनके हौसले उनसे कहीं बड़े थे।
1: कहते हैं कि मुश्किल रास्ते अक्सर मजबूत इंसान बनाते हैं। बाबू जगजीवन राम ने भी चुनौतियों को रुकावट नहीं सीढ़ी बना लिया था।
0: उन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो उन्होंने शिक्षा का साथ कभी नहीं छोड़ा,
1: और यही शिक्षा आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बदली बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद की नई राह भी बनाई।
0: आजादी की लड़ाई हो या भारत का निर्माण, हर जगह उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: उन्होंने कृषि, रेल और रक्षा जैसे कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया।
0: सन 1971 के भारत पाक युद्ध के समय वे भारत के रक्षा मंत्री थे। उस दौर में भारत ने ऐतिहासिक विजय हासिल की जो देश के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय था।
1: लेकिन मुझे उनकी सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या लगती है पता है अनमोल, कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि परिस्थितियां खराब हैं इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा कहा कि परिस्थितियां जैसी भी हों काम नहीं रुकना चाहिए।

0: रूप में याद करते हैं।
1: बाबू जगजीवन राम जी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म जब तक है जान से, और जिसे आवाज दी है राघव माथुर और शिल्पा राव ने।

0: आद्या एक बात बताओ, आजकल सबसे ज्यादा भरोसा लोग किस पर करते हैं, दोस्त पर या पासवर्ड पर?
1: पासवर्ड पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आधे लोगों का पासवर्ड आज भी 123456 या password@123 ही होता है।
0: लेकिन सच कहूं, आज हमारी जेब में सिर्फ मोबाइल नहीं होता,

0: पूरा बैंक भी होता है, पहचान भी होती है और कभी कभी हमारी आधी जिंदगी भी।
1: बिल्कुल अनमोल, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ईमेल, सोशल मीडिया, सब कुछ उसी छोटे से फोन में रहता है, इसीलिए उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है।
0: हाँ, वैसे तुम्हारे पास भी ऐसे मैसेजेज आते होंगे ना कि आपकी केवाईसी आज रात 12 बजे बंद हो जाएगी। ऐसे मैसेज पढ़कर लगता है इन लोगों को हमारी बैंक से ज्यादा हमारी चिंता है।
1: यही तो उनकी चाल होती है, वो हमें डराते हैं या फिर लालच देते हैं ताकि हम बिना सोचे समझे क्लिक कर दें।
0: तो क्या करें, मोबाइल चलाना छोड़ दें?
1: अरे नहीं, मोबाइल क्यों छोड़े, बस थोड़ी समझदारी रखिए। जैसे ओटीपी किसी को ना बताना, अनलोन लिंक पर जल्दबाजी में क्लिक ना करना और पासवर्ड ऐसा रखना जिसे गेस करना आसान ना हो।
0: अच्छा, और मैं एक आदत तो हमेशा अपनाता हूँ, कोई भी मैसेज पढ़कर अगर बहुत ज्यादा खुशी हो या बहुत ज्यादा डर लगे तो तुरंत विश्वास नहीं करता। पहले सोचता हूँ, फिर जांचता हूँ, उसके बाद ही कोई कदम उठाता हूँ।
1: वाह अनमोल, यानी पहले वेरीफाई फिर ट्रस्ट, ये रूल तो सबको याद रखना चाहिए।
0: और अगर कभी गलती से ऑनलाइन फ्रॉड हो भी जाए तो शर्माने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लेकिन जितनी जल्दी शिकायत करेंगे उतनी जल्दी मदद मिलने की संभावना और बढ़ जाती है।
1: मुझे लगता है कि आज साइबर सिक्योरिटी भी हेलमेट जैसी हो गई है। पहले लोग कहते थे इतनी सी दूरी है, हेलमेट की क्या जरूरत है, लेकिन आज वही बात कुछ लोग इंटरनेट पे भी कहते हैं, अरे मेरे साथ थोड़ी होगा।
0: और जब तक समझ आता है तब तक नुकसान हो चुका होता है, इसलिए हेलमेट सड़क पर जरूरी है और साइबर सिक्योरिटी डिजिटल दुनिया में।
1: तो दोस्तों, मोबाइल स्मार्ट है, एप्स भी स्मार्ट है, अब बारी हमारी है स्मार्ट यूजर बनने की।
0: तो सुरक्षित रहिए, सजग रहिए और डिजिटल दुनिया का आनंद लीजिए पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम में जोड़ते हैं ये गीत जिसे लिया गया है फिल्म डॉन से और जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने।

0: तो दोस्तों, देखते ही देखते आज का युववाणी अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है
1: और अब समय है कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए उन दो सवालों के जवाब देने का।
0: तो साथियों, आज का पहला सवाल था, साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो दोस्तों, जिसका सही जवाब है 1930।
1: और हमारा दूसरा सवाल था कि भारत के किस महान नेता को पूरे देश में प्यार से बाबूजी कहा जाता था, जिसका सही उत्तर है बाबू जगजीवन राम।
0: तो दोस्तों, अब हमें दीजिए अनुमति, अगले अंक में मिलेंगे कुछ नए विचारों, नई जानकारी और ढेर सारे सकारात्मक ऊर्जा के साथ।
1: तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और डिजिटल दुनिया में स्मार्ट ही नहीं, सुरक्षित भी रहिए। अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त आद्या नायक
0: और आपके रेडियो साथी अनमोल द्विवेदी को।
1: नमस्कार।

ये था युवा श्रोताओं का दैनिक प्रसारण युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ।

मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम। आकाशवाणी।

कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह और भेजती हूँ आप तक प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं सुहानी सी शाम है, धुला धुला सा आसमान है, धुली धुली सी फिजा है, भीगी भीगी सी ये शाम मुस्कुरा रही है और इन पलों में हमारा और आपका साथ संगीत के स्वरों की तरह गुनगुना उठा है। फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है। वैसे दोस्तों फिल्मी गीतों ने इंसान के हर भाव हर एहसास को शब्द दिए हैं। मोहब्बत के भी कितने रंग हैं इन गीतों में, कितनी तस्वीरें हैं मोहब्बत की इन गीतों में। यहाँ मोहब्बत कभी पुकार है, कभी आराधना है, कभी पहली नजर का जादू तो कभी मीठा सा इंतजार। हर गीत दिल की इसी अनकही भाषा का एक नया पन्ना खोलता है। तो आज की शाम इन्हीं कोमल भावनाओं और सुरीले एहसासों के साथ आइए शुरू करते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इंतजार से ही जन्म लेती है। मन की देहरी पर कोई आहट वर्षों तक दीपक बनकर जलती रहती है। जब प्रेम का नाम होठों तक नहीं आ पाता तब आंखें ही कहा करती हैं। यही मौन पुकार किसी दिन हवा के कंधों पर बैठकर अपने

आजा नचले। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं, आवाज राहत फतेह अली खां की है। गीत लिखा है जयदीप सहनी ने और संगीत सलीम सुलेमान का है।

श्रोताओं, जब मन कहीं पहुंचकर ठहर जाता है तब संसार की सारी राहें उसी ओर मुड़ जाती हैं। ये लगन पाने की नहीं, खुद को खो देने की है। यहां मोहब्बत ख्वाहिश नहीं, इबादत हो जाती है और फिर हर धड़कन एक बंदगी हो जाती है।

अमजद इस्लाम अमजद का लिखा ये गीत है पाप, फिल्म का नाम है, आवाज़ राहत फ़तेह अली ख़ान की और संगीत शानी का।

मोहब्बत में आंखें जुबान से कहीं अधिक बोलती हैं, उनमें शरारत भी होती है, अपनापन भी होता है और अनकहे वादों की चमक भी। एक पल की नज़र कभी कभी उम्र भर की मुस्कान बन जाती है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत परिचय शायद आंखों से ही होता है।

मोहब्बत में इंतज़ार एक बेहद खूबसूरत सा एहसास है जो आने वाले पलों के लिए कितने सपने संजोता है, कितने गीत रचता है, कितने मौसमों की महक अपने भीतर समेट लेता है। इरशाद कामिल का लिखा गीत आप सुन रहे हैं, संगीत प्रीतम का है, आवाज़ उस्ताद राशिद खान की, फिल्म का नाम जब वी मेट।

तो श्रोताओं, फिल्म गीतों में मोहब्बत की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंगतें आपने महसूस की। उम्मीद है फिल्म संगीत का आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाज़त दें इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसपी कॉन्फ्रेंस 2026 में जमीनी सीमाओं से सटे लगभग 119 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को संबोधित किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज रतलाम पहुंचे। यहां से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान रतलाम कलेक्टर मीशा सिंह ने उन्हें एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। देश की आकांक्षाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत जो अधिक विकास और अधिक उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया और मौजूदा सुरक्षा स्थिति तथा सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से वल्लभ भवन में यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली कार्य की समीक्षा की। यहां भूस्खलन से रेलवे लाइन को भारी नुकसान हुआ था। मध्य और पश्चिमी रेलवे की टीमें मिलकर यहां काम कर रही हैं और भारत इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी जोहार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लवण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान

0: के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
1: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
0: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं। ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
1: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
0: बिल्कुल।
1: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
0: जी।
1: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
0: जी अजीत जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
1: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
0: जी अजीत जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
0: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
0: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वाले सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से,
1: आज का प्रश्न है क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे,

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले-पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। यह नदी अब सूख गई है।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियां तोड़ दी है। हाँ
0: अरे धृताची।
2: हाँ भैया।
0: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दिया।
2: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो। अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
3: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे मगर... भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
3: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
3: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़ईयों और लोहारों के घर गया है। उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
4: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
3: जी पिताजी।
4: उसमें रख कर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
3: ठीक है।
4: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है। कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
3: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
4: अरे प्रवाहन।
1: जी पिताजी।
4: तुम तो मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
1: वो पिताजी,
4: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है? कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
4: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
1: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
3: हाँ हाँ पिताजी।
1: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज और शत्रुमर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
4: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
1: जी
4: कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
4: वहाँ महाराजाधिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी। वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
0: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
3: जी पिताजी।
0: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
4: बहुत अच्छा।
0: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।

0: पिताजी, देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
1: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
2: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो, तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं, जौ और चावल ले जाना।
1: जी।

0: जा रहा है?
1: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
0: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
2: चल चल बढ़िया है कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
3: और क्या,
2: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
0: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
2: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
1: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
2: जी पिताजी।
1: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
2: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पैने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे। और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे। भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
4: हाँ।
2: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
1: हाँ ये तो है।
5: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
6: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: अरे सुनो सुनो कुछ कह रहे
1: हैं। इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
2: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है।
1: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
2: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
1: चलो देखते क्या होता है।
3: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
4: अरे वो देखो वो देखो,
1: क्या
4: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
1: अरे क्या बांके और सजीले सवार है।
4: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
5: पहुंच गया।
3: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा, धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र? मुझे तो

गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण

0: अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद
1: मित्र। कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र?
1: मुझे तो दी अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
4: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
3: हाँ, चलो।
4: अरे ये देखो कितना अच्छा घोड़ा।
1: वाह,
4: अरे हाँ,
1: इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
4: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं। चलो
1: चलो।
4: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
5: अरे ये पकड़ा।
1: अरे ये कोलाहल कैसा है?
6: छोड़ दो। ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
1: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
3: अरे चलो भाग चले, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
1: अरे रुको तो सही। अरे देखो
3: क्या
1: आचार्य तो वही पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
3: हाँ, अच्छा हुआ संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
1: हाँ।
3: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
1: हाँ।
3: उनका प्रभाव, कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
7: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
5: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
5: सफर में
4: आपके साथ।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, मैं सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज है यादों की रिमझिम फुहारें। जी हाँ, और वजह है आज की तारीख 9 जुलाई। 9 जुलाई सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता संजीव कुमार का जन्मदिन है। तो आज फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम उन्हें याद करेंगे और उनकी फिल्मों के गीत सुनेंगे। श्रोताओं, कुछ कलाकार पर्दे पर अभिनय नहीं करते हैं, वो जीवन को जीते हैं। उनके चेहरे पर भाव नहीं आते, भावनाएं उतर आती हैं। वो कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक ऐसे ही अद्भुत कलाकार थे संजीव कुमार। 9 जुलाई 1938 को उनका जन्म हुआ था। उन्होंने सिद्ध किया था कि अभिनय उम्र का नहीं, प्रतिभा का मोहताज होता है। युवा होते हुए भी उन्होंने पिता, वृद्ध, प्रेमी, पुलिस अधिकारी, किसान, कवि, साधारण इंसान, हर चरित्र को इतनी सहजता से निभाया कि वो सभी किरदार आज भी हमें अपने से लगते हैं। आज के इस विशेष फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम उन्हीं की यादों को उनके गीतों के माध्यम से सहेजेंगे। उनकी फिल्में जिनमें उनका अभिनय आज भी हमें दिखाई देता है और हम उसके मुरीद होते हैं। तो आइए फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभिनय के इस शिखर पुरुष को याद करें।

श्रोताओं, संजीव कुमार का मूल नाम हरिभाई जरीवाला था। मूल रूप से वो गुजराती थे। गुजरात के सूरत शहर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही अभिनय में उनकी गहरी रुचि थी। शुरू में वो रंगमंच से जुड़े, आगे चलकर फिल्मालया के अभिनय स्कूल में वो शामिल हुए और इसी दौर में सन 1960 में फिल्मालया बैनर की एक फिल्म बन रही थी, हम हिंदुस्तानी। इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका उनको मिली और उन्होंने अपने अभिनय से ऐसी छाप छोड़ी कि फिर आगे जो फिल्में थीं उनका एक सिलसिला ही निकल पड़ा और कभी मुड़कर उन्होंने पीछे नहीं देखा। फिल्म खिलौना संजीव कुमार की अभिनय क्षमता को एक नई पहचान दे गई थी। मानसिक संघर्ष से जूझते पात्र को उन्होंने इतनी सच्चाई से और इस संवेदनशीलता के साथ निभाया था कि दर्शक भावुक उठे और इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत चर्चा हुई। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं सीता और गीता फिल्म का गीत। ये भी एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी जिसने मनोरंजन की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया था। सीता और गीता में संजीव कुमार का जो सहज, विनोदी और सधा हुआ अभिनय था और हेमा मालिनी के साथ उनकी जो जोड़ी थी वो बहुत पसंद की गई थी। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का गीत।

श्रोताओं, संजीव कुमार एक वर्सेटाइल अभिनेता थे। गंभीर भूमिकाओं में जब दर्शक उन्हें देखते तो उनके साथ वो भावनाओं में डूब जाते, कभी आंखें भीग जाती। जब वो हल्के फुल्के रोल करते या कॉमेडी करते तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते देखने वाले। रोमांटिक फिल्मों में भी वो उतने ही अच्छे थे और चुलबुले किरदार भी उतनी ही सहजता से निभाते थे। आइए सुनते हैं मंजली फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अद्भुत कलाकार थे संजीव कुमार। नया दिन नई रात ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने 9 किरदार निभाए थे। फिल्म कोशिश में मूक बधिर एक व्यक्ति की उन्होंने भूमिका निभाई थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है, और फिल्म शोले के ठाकुर को भला कोई कैसे भूल सकता है। ऐसी ही उनकी एक कालजयी फिल्म थी आंधी। गुलजार के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। संजीव कुमार और सुचित्रा सेन की संवेदनशील अदाकारी ने इस फिल्म को अमर बना दिया। इस फिल्म के लिए संजीव कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया था।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।
2: अद्भुत अभिनेता थे संजीव कुमार। संजीदा भूमिका में वो दिल की गहराइयों में उतर जाते थे और हास्य अभिनय में भी उनका कोई सानी नहीं था। फिल्म अंगूर में दोहरी भूमिका निभाते हुए उन्होंने बिना किसी बनावटीपन के दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया था। श्रोताओं, संजीव कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार प्रदान किया गया, फिल्म दस्तक और कोशिश के लिए। फिल्मफेयर ने उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया था, एक तो फिल्म आंधी थी और दूसरी अर्जुन पंडित, और इसके साथ ही फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ था फिल्म शिकार के लिए। फिल्म मौसम में भी संजीव कुमार ने भावनाओं को ऐसी गहराई से अभिनीत किया कि ये फिल्म अभिनय का एक पाठ बन गई।

श्रोताओं, संजीव कुमार ने लगभग 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और हर भूमिका को एक अलग पहचान दी। सत्यजीत रे से लेकर गुलजार और हृषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशकों ने उनकी प्रतिभा का भरपूर उपयोग किया। वे उन बिरले कलाकारों में से एक थे जिन्होंने नायक की परिभाषा को ही बदल दिया था। 6 नवंबर 1985 को वो इस दुनिया से विदा हुए, लेकिन उनकी अदायगी आज भी भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर है। चलते चलते हम यही कहेंगे कि कुछ कलाकार समय के साथ पुराने नहीं पड़ते, बल्कि समय उन्हें और मूल्यवान बना देता है। संजीव कुमार भी ऐसे ही कलाकार थे, जिनकी मुस्कान, संवाद अदायगी और भावपूर्ण अभिनय आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने अपने दौर में थे। तो आज फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में उनके जन्मदिन पर हमने उन्हें याद किया। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों बाद।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। शाम के 7 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
2: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए गुणवत्ता और बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक प्रणाली स्थापित करना है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रुपये के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक आज कोच्चि में संपन्न हुई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के सामने महिलाओं के विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये साझा चिंताएं ब्रिक्स महिला मंत्रियों के मंच जैसे प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाती हैं। ये सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज

0: रात 1:30 बजे फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथी T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में। आज शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से हमारी ग्रामीण बहनें सुनेंगी कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। इसमें आज होगी डॉक्टर अपर्णा जायसवाल के साथ की गई भेंटवार्ता, कृषि में महिला उद्यमिता के विकास कार्य। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:15 पर और रात 9:30 बजे। रात 10 बजे होगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 बजे आप सुनेंगे वसंत राणा डे का वायलिन वादन राग कामोद।

ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का, और अब जानकारी कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत सुबह 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुरमई सवेरा फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:30। 9:15 पर सुनी जा सकती है गांधी चर्चा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:30 पर। जिले की चिट्ठी सुनिए सुबह 10:00। दस बजकर 5 पर बहनों के लिए कार्यक्रम होगा महिला संसार। इसमें कल सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बात करें। रागमाला शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में सुबह 10:30 आप सुनेंगे अम्बरीश कालेले का गिटार वादन राग शुद्ध सारंग। ग्राम सभा कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का निर्धारित क्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। प्रसारण का समय रहेगा शाम 7:21। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत सुबह 11:00 सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश का प्रसारण समय है दिन में 12:00 और 2:30। संग्रहालय से ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12:30। इसमें कल सुनिए धारावाहिक हंसना मना है की 9वीं कड़ी। दिन में 1:00 सुनिए महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की होगी। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा 1:30 पर और 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम हमारे छतरपुर केंद्र का योगदान होंगे। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है दिन में 2:00, शाम 5:33, शाम 6:30, रात 8:15 और 9:45। शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होगा, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की होगी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे शाम 6:00। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा कल रात 8:00। कल रात 9:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत। इसमें सुनिए मोहम्मद शोएब की वार्ता, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में टीमों की स्थिति एवं संभावनाएं। आपकी फरमाइश प्रसारण समय कल रात 10:00 और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 सुनिएगा अम्बरीश कालेले का गिटार वादन राग गावती। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में हाईसीज मत्स्य दोहन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शाजापुर जिले के किसान सम्मेलन में शिरकत की और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रतलाम पहुंचकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि बीते 12 वर्षों में यह उनकी तीसरी ऑस्ट्रेलिया यात्रा है। प्रधानमंत्री ने भारत ऑस्ट्रेलिया के साझा खेल और सांस्कृतिक जुड़ाव का भी जिक्र किया।
1: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। दोनों देशों ने ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर अहम समझौते किए। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ, जिससे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर में हाईसीज मत्स्य दोहन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज भी लॉन्च किया। उपराष्ट्रपति ने देश भर के 10 फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और मछुआरों को लेटर ऑफ ऑथराइजेशन सौंपे। उन्होंने कहा कि यह पहल भारत की समुद्री यात्रा में नए अध्याय की शुरूआत है। इससे मछुआरे गहरे समुद्र के संसाधनों का सतत उपयोग कर सकेंगे। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। उन्होंने युवाओं से मत्स्य पालन को आधुनिक व्यवसाय के रूप में अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील में आयोजित किसान सम्मेलन में शिरकत की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 4 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।
2: एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान। मुझे गर्व है, इसी महीने कोशिश करेंगे विधानसभा में एक समान कानून मध्य प्रदेश में लग के रहेगा। मध्य प्रदेश में
0: प्रदेश में दतिया विधानसभा उप निर्वाचन के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक विजय भारती और पुलिस प्रेक्षक के त्यागराजन ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं का जायजा लिया। प्रेक्षकों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम और गणना कक्ष का भी निरीक्षण किया। इसी दौरान दतिया में फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीम को सी विजिल और ESMS ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। इस ऐप के जरिए आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने बल्लभ भवन में मुलाकात की। बैठक में शिशु और मातृ मृत्यु दर घटाने, एनीमिया नियंत्रण और बाल विवाह रोकथाम पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सभी विभागों में समन्वय जरूरी है। उन्होंने यूनिसेफ से मास्टर ट्रेनर्स की क्षमता निर्माण में सहयोग का आग्रह किया। यूनिसेफ प्रतिनिधि जैस्पर मिलर ने राज्य सरकार के सुमन रोडमैप और मदर एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट्स की पहल की प्रशंसा की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज सुबह रतलाम पहुंचकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। रतलाम कलेक्टर मीशा सिंह ने उन्हें निर्माण कार्यों की जानकारी दी। श्री गडकरी ने पैचवर्क का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का करीब 244 किलोमीटर का हिस्सा प्रदेश से होकर गुजरता है। ये राज्य के मालवा क्षेत्र के तीन प्रमुख पश्चिमी जिलों रतलाम, मंदसौर, झाबुआ को सीधे देश की राष्ट्रीय राजधानी और वित्तीय राजधानी से जोड़ता है। प्रदेश के जेल विभाग में करीब 10 साल बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हुई है। जेल मुख्यालय ने विभिन्न संवर्गों में पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। इनमें सहायक ग्रेड 1, स्टेनोटाइपिस्ट, लेखपाल और उप अधीक्षक जैसे पद शामिल हैं। जनसंपर्क अधिकारी राजेश ताहिमा ने बताया कि आने वाले समय में अन्य प्राप्त पात्र कर्मचारियों के आदेश भी चरणबद्ध रूप से जारी होंगे। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में कल विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश सगर के नेतृत्व में हुआ। गोंडवाना एक्सप्रेस, महानगरी एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनों में सघन जांच की गई। बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वाले 66 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रेलवे ने जुर्माने के रूप में करीब 61,000 रुपये वसूले। भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत कंट्रोल कमांड रूम बनाने को कहा है। कलेक्टर ने आज संदीपनी विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा की। उमरिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रक से जा टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल है। परिवार अनूपपुर से चित्रकूट जा रहा था। घायल युवती को इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इस साल अब तक प्रदेश में सामान्य से 10% अधिक बारिश हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला

जाएगा। देवास के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आज मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीहोर जिले में लगातार बारिश के बीच कई निचले इलाकों वाले गांवों में किसानों की फसल पर जलभराव का संकट खड़ा हो गया है। इन गांवों में सोयाबीन की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आज कोलारस में मृदा परीक्षण केंद्र और एसडीओ कृषि कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। अशोकनगर जिले में आगामी समय में विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक इत्यादि कार्यक्रमों के दौरान शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। खंडवा जिले की बोरगांव चौकी पुलिस ने गौवंश तस्करी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगर मालवा कलेक्टर ने आज जिले के भ्रमण के दौरान ग्राम कवराखेड़ी में किसान प्रकाश तांगे के खेत में तरबूज के बाद लगाई गई लौकी की फसल का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान भैयन को प्रेमचंद भैया की राम राम। और सुनाओ भैया, कैसे हो आप सभी? कुशल मंगल हो कि नहीं? भैया हम तो जो ही चाहते हैं कि सबसे पहले तो अपन को अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने हैं, क्योंकि भैया देखो खेती किसानी को अपन को काम काज करने हैं और काम काज घर में बैठ के तो होते नहीं है। ई केला ने भैया अपन को घर से बाहर तो जाने पड़ते हैं और इस समय मौसम तो आप देखे रहे हो, कहे भैया वह 2-3 दिन पहले तो इतनी ज़्यादा अपन को उमस और गर्मी लग रही थी कि जहाँ मानो के कमरा से बाहर निकलने को मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब राहत है कि अपने पूरे अंचल में जो मानसून की बारिश है वो भैया शुरू भी हो गई है और इसी अपन को भी फ़ायदा है, कहे किसानी के काम काज के लाने तो भैया अपन इंतज़ार करते हैं कि मानसून जितनी जल्दी आए और अच्छे आए वो अपने लाभदायक होते हैं। कहे कि पानी के बिना ना तो अपने घर गृहस्थी के काम काज हो सकते हैं और ना ही अपने खेती के काम काज। और अपन ने देखो भैया कि मई जून की गर्मी में अपन एक एक बाल्टी पानी, एक घड़ा पानी के लाने कितनी दूर तक परेशान भाई। तो हम तो आपसे यही कहे जो बस काय को मौसम चालू हो गया है, मानसून आ गया है, तो अपन को भैया बारिश की एक एक बूंद को सहेज के रखने हैं, उसको बचा के रखने हैं। भैया देखो पानी तो अपनी पृथ्वी पर बहुत है लेकिन जो पीवे को पानी है वो भैया सीमित मात्रा में है। तो बारिश के जल को अपन जितना ज़्यादा इकट्ठो करके रख लें अपनी गांव देहात में, अपनी पंचायत के आसपास अगर कोई जगह है, तो जब मान लो कि अपन को वर्ष भर परेशान नहीं होने पड़े और अपना पूरा वर्ष बहुत आसानी से कट जाए। और ये कहलाना जरूरी है कि अपने जो तालाब हैं, पोखर हैं, कुआँ हैं, जो बावड़ी हैं भैया, अगर उनको थोड़ा सा श्रमदान करके अपन गाद मट्टी हटा लें, उनको गहरीकरण कर लें, तो बारिश को पानी उनमें भैया थोड़ा ज़्यादा मात्रा में अपन इकट्ठो कर रख सकते हैं। और संगे संगे भैया कोशिश यह करने हैं कि अपन को गांव के आसपास अपनी पंचायत में कोनो ऐसी ढलान वाली जगह अपन को दिख रही है जहाँ पानी आके इकट्ठो हो सकते हैं, तो वहाँ पर भैया अपन चेक डैम बना सकते हैं। इससे भी भैया अपनों पानी बारिश को रुक जाए और वो अपने खेतन काम में काम भी है। और बारिश के जल में भैया जो आधुनिक तकनीक है जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, इनमें छत के पानी को पाइप के द्वारा गड्ढा के माध्यम से भैया ज़मीन में उतारने को प्रयास करो जाते हैं। इसे भी भैया अपन को बहुत लाभ है, क्योंकि जब छत को पानी पाइप के माध्यम से अपन ज़मीन में उतारते हैं तो उससे अपने जो नलकूप हैं, जो अपने हैंडपम्प हैं, वे भैया रिचार्ज हो जाते हैं और अपने जो ज़मीन को जल स्तर है वो स्तर भी बढ़ जाते हैं। तो अपन के जो कुआ हैं, जो नलकूप हैं, जो अपने हैंडपम्प हैं, इसे भैया अपन को वर्ष भर पीवे को पानी उपलब्ध होता रहता है। कुल मिला के जाए भैया कि अपन को बारिश के मौसम में थोड़ा सा श्रमदान अगर करने पड़े तो ज़रूर करें और बारिश की एक एक बूंद को अपन को सहेज के रखने हैं, उनको इकट्ठो करने हैं, उनको व्यर्थ बहके नहीं जान देने हैं। अपन देखा था कि बारिश को पानी बहो पक्की सड़पन पे बहके

भैया निकल गए और अपन कछु कर नहीं पाए, लेकिन अपन को प्रयास करने हैं, अपन को बारिश के पानी को इकट्ठो करने हैं, इससे भैया अपन वर्ष भर पानी के लाने परेशान नहीं हुए हैं। तो भैया देखो, बतकाव तो हम और भी करें, लेकिन अब हम आपको सुनवा देते हैं देवकीनंदन केवट के स्वर में जो 900 झूला लोकगीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भैया देखो, अपने कार्यक्रम में समय समय पर वार्ता और भेंट वार्ता के माध्यम से जो आवश्यक जानकारी होते हैं, चाहे वो अपनी खेती किसानी से संबंधित हो या अपने पशुधन से संबंधित हो, वो हम आपको देते ही रहते हैं। तो आज हम आपको एक भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं, स्वच्छता एक लाभ अनेक, और ये विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्री कमल सिंह यादव।
4: किसान भाइयों, सामान्यतः कहते हैं स्वच्छता एक लाभ अनेक। हम अपने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में कोशिश करते हैं कि हर तरह से स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। शासकीय योजनाओं के माध्यम से स्वच्छता के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं कमल सिंह यादव, परियोजना अधिकारी।
5: स्वच्छता एक ऐसा विषय है जिसमें के व्यक्ति को खुद ही सचेत होके होना जरूरी है, बल्कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें हमें आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहले के लोग शायद हमसे ज़्यादा साफ सुथरे रहते थे। आज के इस परिवेश में शासन हमारे को क्या मदद कर रहा है स्वच्छता के क्षेत्र में? स्वच्छता के लिए शासन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में कि गंदगी है किस चीज़ की सबसे ज़्यादा, तो हमने ये पाया कि खुले में शौच सबसे ज़्यादा गंदगी का कारण है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। जो खुले की शौच की प्रवृत्ति है आज, और दूसरी जो गंदगी जैसे हम देखते हैं कि गाय भैंस का जैसे गोबर है या कचरे का निपटान प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, और भी हैं, लेकिन जो मानव मल है वो सबसे बड़ी गंदगी गांव के अंदर देखने में आती है। और वही एक ऐसी गंदगी है जो हमको कई कारणों से जो है बीमारियां भी फैलाती है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो मानव जीवन को पहुँचाती है वो

0: खुले में शौच और खुले में पड़ी हुई हमारी गंदगी, हमारे त्यागे गए मल की जो गंदगी है वो हमको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो सबसे पहले यही सोचा गया कि इससे कैसे निपटा जाए। तो उसके लिए हमने कई तरीके से कई उपाय किए, जिसमें मुख्य तौर पर ये देखा गया, शुरुआत में सोचा गया कि शायद हम शौचालय जगह जगह पर निर्माण करा देंगे तो शायद इस चीज़ से निजात पा ली जाएगी, लेकिन संभवतः ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि शौचालय लोगों के यहाँ बना दिए गए, वहाँ पर लोगों को चूँकि उसकी समझ नहीं थी और वो उस चीज़ के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे उपयोग के लिए, तो वो उनमें दूसरे उपयोग, गलत उपयोग उसके, जैसे उसमें कूड़ा कचरा भर देना और सब चीज़ें करने लगे और खुले में शौच की प्रवृत्ति ख़त्म नहीं कर पाए। तो एक सामाजिक आंदोलन की ज़रूरत महसूस की गई और उस सामाजिक आंदोलन में जब ये महसूस किया गया, जब तक लोगों को हम उनके पास जाके मोटिवेट न करें इससे होने वाली बीमारियों के बारे में, इस गंदगी में रहने के कारण जो बीमारियां हमको पकड़ लेती हैं उनके बारे में जब तक हम उनको नहीं बताएंगे, तब तक हम इस अभियान में पूरी तरीके से नहीं जीत पाएंगे। तो एक सामाजिक जागरूकता की ज़रूरत महसूस हुई। आशासन की तरफ से इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें जागरूकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता पर। इसमें जो है, जैसे हमारे समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए जो मेन इंसेंटिव या प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशि रखी गई, मुख्य रूप से अगर कोई BPL परिवार अपने घर में स्वयं के व्यय पर अगर शौचालय का निर्माण करा लेता है तो सरकार उसको प्रोत्साहन स्वरूप 2200 रुपये की राशि प्रदाय करती है। उसी तरीके से अगर कोई APL परिवार, चूँकि APL ये माना जाता है कि हाँ वो थोड़ा अपने व्यय से शौचालय निर्माण करा सकता है, तो उसको हम जाके वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बताते हैं कि शौचालय बनाने से, उपयोग करने से आपको कितनी बीमारियों से, आपके रहन सहन के स्तर कितना ऊपर आ सकता है। जो पैसा हम बीमारियों पर खर्च करते हैं वो पैसा अगर हम अपने विकास में करेंगे, अपने घर के दूसरे कामों में करेंगे, तो शायद हमारा जीवन स्तर में कुछ सुधार आएगा। ये बात जब हमको समझाते हैं तो लोग स्वयं के व्यय से शौचालय बनाने को तैयार हो जाते हैं। शासन की तरफ से भी APL परिवार के लिए भी एक रोजगार गारंटी की उपयोजना है निर्मल वाटिका, इसके अंतर्गत शौचालय के 2 गड्ढे, लीच पिट और उसका ढकाव तक का कार्य करा दिया जाता है। उसमें वो व्यक्ति अगर स्वयं मजदूरी करता है तो उसको उसका पैसा मजदूरी का भी दिया जाता है।
1: तो BPL और APL वाले
0: जी,
1: इन दोनों के लिए ये समग्र स्वच्छता अभियान के तहत ये सुविधाएं प्रदाय की गई हैं। अच्छा, और भी कोई श्रेणी है जिनके लिए?
0: इसमें जैसे कई जगह हम देखते हैं कि गांव में जगह ही नहीं है लोगों के पास बनाने के लिए, तो फिर एक ऐसी जगह का चयन किया जाता है कि जो एक सरकारी जगह हो और लोग इकट्ठे सहमत अगर हैं कि हम जो है एक सामुदायिक शौचालय बनाना चाहते हैं और एक कम्युनिटी तैयार हो जाती है कि हम एक सामुदायिक शौचालय बना के उसका उपयोग, उसके रखरखाव की जिम्मेदारी हमारी है, तो वो पंचायत की तरफ से 20% का अंशदान अगर देने को तैयार होते हैं तो शासन 80% उनको दे सकता है। तो कुल लागत जो उसका एक आकलन है वो 2 लाख रुपए के एस्टिमेट का आकलन है, जिसमें 40,000 रुपये अगर समुदाय दे देता है या पंचायत दे देती है तो 1,60,000 शासन की तरफ से दे दिया जाता है, जिसमें एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण उस पंचायत के लिए करा दिया जाता है। वो ऐसी स्थिति में हम चयन करते हैं उसका कि जिसमें दूसरे ऑप्शन हमारे पास सामान्यतः कम है और कुछ लोगों के लिए 12-15-20 परिवारों के लिए वहाँ पर जगह की कमी है या कोई है, तो उसमें वहाँ पर हम ये शौचालय भी प्रदाय करते हैं।
1: एक निर्मल ग्राम योजना भी थी, उसके अंतर्गत भी ये स्वच्छता का अभियान लिया गया था
0: जी। एक्चुअल में क्या है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार स्वच्छता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक ऐसा पुरस्कार है जो महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदाय किया जाता है। जो पंचायत स्वच्छता के क्षेत्र में जितने घटक हैं सभी को पूर्ण कर लेती है या संपूर्ण स्वच्छ गांव जो है उसको निर्मल ग्राम कहा जाता है। अभी ये निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना 2008 से शुरू हुई और हमारे यहाँ मुरैना ज़िले में अभी तक 12 पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदाय किया गया है और निरंतर हम लोग प्रयास में हैं कि आने वाले 1-2 साल के अंदर हम लगभग ज़िले की सभी पंचायतों को उस श्रेणी में लाएँ। आमतौर पर देखा जाता है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार की जब हम लोग तैयारी करवाते हैं कम्युनिटी तैयार हो जाती है कि हाँ, लेकिन कुछ दिनों बाद वो लोग दोबारा से उस स्तर को नहीं मेंटेन कर पाते, तो हमारी निरंतर कोशिश रहती है कि लोगों के संपर्क में रहकर उस स्तर को वो लोग मेंटेन करें, कोशिश करें, लेकिन फिर भी उतना एक्यूरेट उसमें नहीं आ पाया है, लेकिन प्रयासरत हैं हम, काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं और लोगों को समझाइश भी देते हैं कि उसको पूरी तरीके से मेंटेन रखें, और कई पंचायतों में हम कर भी पा रहे हैं उसको।
1: जो निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना है, इसके प्रति हमारे जो और भी ग्रामीण किसान भाई हैं वो प्रेरित हों, इसके क्या क्या मापदंड होते हैं?
0: इसमें मुख्य तौर पर अपन देखें तो स्कूल शौचालय हैं, आंगनवाड़ी शौचालय हैं जहाँ पर हमारे बच्चे जाते हैं। आज घर में बच्चों को जैसे अच्छा वातावरण मिलेगा अगर वो घर में शौचालय में जाएंगे, तो वो स्कूल में भी आज हम देखते हैं कि स्कूल में शौचालय बने हुए हैं, शासन शौचालय बना देता है पर जनरली लोग वहाँ पर उसका उपयोग सही नहीं करते हैं और उसमें भी गंदगी रहती है। तो आज बच्चे जब वहाँ जाएंगे शौचालय की ज़रूरत महसूस करेंगे, तो आज स्कूल के शौचालय भी स्वच्छ रहेंगे, आंगनवाड़ी शौचालय स्वच्छ रहेंगे। स्कूल से ही सीख के बच्चा घर पर भी आता है तो घर पर अपने माता पिता को बताएगा कि हमें स्वच्छता के क्या फ़ायदे हैं जब उसको स्कूल में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। और इस अभियान का हमारा मेन स्रोत बच्चे ही हैं, हम बच्चों को लेकर मोटिवेट करके आगे लेके जाते हैं और वो एक मेन धुरी है जिस पर हम इस अभियान को चलाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आज हमने एक स्टडी जनरली करवाई और देखा भी कि बीमारियों का जो प्रतिशत है, अगर जिन गाँव में स्वच्छता या स्वच्छ रहने का, जैसे निर्मल ग्राम हमारे हैं, या जनरली जहाँ लोगों ने निर्णय लिया कि हमें साफ़ सुथरा रहना है, गंदगी को प्रॉपर कूड़े कचरे का सही जगह पर डिस्पोजल करना है, निपटान करना है, तो ऐसी स्थिति में जो है वहाँ पर जो बीमारियों की दर है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है स्वच्छ रहने का वो ये है कि हम अपनी बीमारियों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं,
1: स्वस्थ रह सकते हैं
0: जी।
1: अगर स्वस्थ रहेंगे तो जो भी विकास कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी
0: जी।
1: यादव जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने स्वच्छता एक लाभ अनेक विषय पर हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, और इस जानकारी से हमारे किसान भाई भी निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे, इसके लिए आपको धन्यवाद।
2: अब आपने सुनी भेंट वार्ता स्वच्छता एक लाभ अनेक, और ये विषय पर जानकारी दे रहे थे कमल सिंह यादव और उनसे चर्चा कर रहे थे सोहन सिंह। तो भैया देखो, डॉक्टर साहब ने जो जो बातें बताई हैं, या मान लो कि अगर बरसात के मौसम में अगर अपन साफ़ सफाई को ध्यान नहीं रखें तो भैया अपने लाने परेशानी भी हो सकते हैं। तो हम तो आपसे यही कहें कि मौसम में अपन को साफ़ सफाई को ध्यान रखने हैं और घर में बने शौचालय को अपन को उपयोग करने हैं। शासन भैया अपनी ओर से प्रयास कर रहा था कि हर घर में शौचालय उपलब्ध हैं, वो वहाँ में बने हुए, लेकिन अपन देखा था कि अपनी जो आदत है खुले में शौच में जावे की, वो अपन को बिल्कुल बंद करने हैं और अपन को उसे परहेज रखने हैं। तो हम तो आपसे यही कहें के थोड़े जागरूक बने, घर में अपने शौचालय नहीं है तो शासन की ओर से जो अनुदान मिल रहा हो के माध्यम से अपन शौचालय बनवा सकते हैं, और शौचालय बनवा के अपन को छोड़ने नहीं है, वो को अपन को नियमित इस्तेमाल भी करना है, उपयोग में लेने हैं। इसे अपने आसपास साफ सफाई रहे और अपना पर्यावरण भी साफ रहे। तो भैया बदका और भी करें, अब सुने थे बाबूलाल कुशवाहा उनके साथ थी इनके स्वर में जो 900 बोनी लोकगीत।

0: भैया देखो, खेती किसानी तो अपन करते ही हैं और खेती से अपन को लाभ को धन लाभ मिला, एक लाने अपन दिन रात मेहनत भी करते हैं, लेकिन अपन जानते हैं कि अपनी जो खेती है वह पूरी तरह भैया मानसून पर निर्भर है। मानसून अगर अच्छा होगा तो खेत फसल से लहलहा उठते हैं, और मानसून अच्छा नहीं हो तो खेत खाली के खाली भी रह जाते हैं। तो लेकिन अपन को खेती किसानी के संगे संगे सहायक व्यवसाय और हस्तशिल्प को जो अगर अपन को आता है तो उसमें अपन को लाभ लेने हैं। क्योंकि भी अपन देखते हैं कि अपने प्राचीन भारत में बहुत सी हाथ की ऐसी जो कला हैं, इनसे अपन को लाभ मिल सकते हैं। उनको अगर बाज़ार में अपन प्रचार प्रसार करें, उनको बेचें, तो इससे अपन को पैसा भी आ सकता है। जैसे अपने मिट्टी के जो कला है, कपड़ा बनावे की जो कला है, हथकरघा है, इसे भी अपन को बहुत लाभ मिल सकता है। तो अगर अपन को छोटी छोटी चित्रकला, हाथ के मिट्टी के बनाए बर्तन वगैरह अगर आप अच्छे मेलन में जाके बेचें, तो जब मान लो कि अपन को भैया उनकी आर्थिक स्थिति अपनी अच्छी हो सकती है। तो हम तो आपसे यही कहें कि अपनी जो कला है अपन को आगे बढ़ाने हैं। ये किराने भैया शासन भी प्रयास कर रहे थे कि छोटे छोटे मेला जो लगाते हैं शासन, इनमें जो अपनी हस्तकला है वो अपन को दो लोगों को अपन को बतावे में सुविधा हो जाते हैं। तो भैया शासन की कोनों भी योजना को अगर लाभ लेने हैं तो ये किराना जरूरी है कि अपन को जागरूक हैं। जब तक अपन जागरूक नहीं हुई है तब तक अपन शासन की कोनों भी योजना को लाभ नहीं ले सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

भैया अभी आप सुन रहे थे भगवान सिंह खुशवाहा के स्वर में जो उन्होंने सुलोक गीत। भैया देखो बसकाए को मौसम है और बसकाए के मौसम में अपन खो किसान के लाने भैया थोड़ा काम भी बढ़ जाता है, क्या कि इस समय अपन बिल्कुल तैयार हैं कि अपन खो बोनी करने हैं। अषाढ़ को महीना भी है और अषाढ़ के महीना में भैया अगर किसान चूक जाए तो भैया उनको लाने बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो सकता है। तो अपन को सबसे पहले तो अपनी खेती किसानी में जब बात को ध्यान रखने हैं कि अपन जो बीज को उपयोग करें वो अच्छे किस्म को होए और अच्छे से उपचारित होए, क्या कि अपन को खेती में कम लागत में अधिक लाभ भी लेने हैं। तो इसके लाने अपनी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक है भैया उनकी अपन मदद ले सकते हैं। वे अपन को बताएं भैया कि कौन से बीज में अपन को अच्छी पैदावार मिल सकते हैं, उनकी गुणवत्ता भी अच्छी हुए तो कि उनसे संपर्क करें। और संगे संगे भैया अपन को फसल चक्र को भी ध्यान रखना है, यानी कि भैया अपन ने गेहूँ की फसल के बाद फिर गेहूँ बो दें, इसे भैया अपनी जो माटी की उर्वरा शक्ति है वह भी प्रभावित हो जाता है। और सबसे ज़रूरी है कि अपन को फसल चक्र अपनाएं। जैसे अपन ने एक बार दलहनी फसल ले ली तो कोशिश करने भैया कि दूसरी बार अपन को दलहनी के अलावा तिलहनी फसल लेने हैं। इसे अपनी जो मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है वो भी बनी रहते हैं और मिट्टी की उत्पादन क्षमता के संगे संगे भैया अपन को कम मतलब जो कहते हैं ना कीट व्याधि को प्रकोप है वो भी अपनी फसल में अपन कम होते हैं। तो कुल मिला के जाए फसल चक्र को उपयोग करें। और एक बार अगर अपन ने गहरी जड़ वाली फसलें लें और दूसरी बार अपन को उथली जड़ वाली फसलें लेने को प्रयास करने कुल मिला के जाए कि खेती में अपन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले ई किलाने अपन को स्वयं भी प्रयास करने हैं और नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक इनसे अपन को बराबर संपर्क करा साधने हैं। आजकल तो भैया आधुनिकता का युग है भैया, अपन घर बैठे फ़ोन के माध्यम से जो जानकारी है वो अपन को मिल जाते हैं और मौसम भी भैया बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं आजकल। अगर अपने मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक ने बता दो कि भैया इतना बारिश होने हैं या इतना दिक्कत है तो अपन को बाप को भी ध्यान रखने हैं और उनको जो जानकारी है वो अपन को अपनी खेती किसानी में साझा करने हैं। तो हम तो आपसे यही कहें कि अपन को खेती में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसको ध्यान रखें और संगे संगे कोशिश जा करें कि अपन को जैविक दवा या बोलते हैं जैविक जो खेती है वो अपन को करने हैं, क्योंकि रासायनिक दवा और रासायनिक उर्वरकन के उपयोग से भैया अपन को उत्पादन तो अच्छा मिल जाता है लेकिन जो गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। और आजकल अपन देखते हैं कि सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति भैया बहुत जागरूक हो गए, सब चाहते हैं कि कम खाएं लेकिन जो गुणवत्तापूर्ण खाएं। इसके लिए अपन को जैविक तरीके से खेती करने हैं, संगे संगे अपन को वर्मी कंपोस्ट खाद केंचुआ खाद या गोबर की जो खाद है उनको अपन के खेतन में उपयोग करने हैं। इसे भी भैया अपने खेती में बहुत लाभ होते हैं, उत्पादन अच्छा मिलता है और अपनी माटी की जो उत्पादन क्षमता है वो भैया अच्छी हो जाते हैं। रासायनिक दवा और रासायनिक उर्वरक के उपयोग से भैया अपनी माटी की जो उत्पादन क्षमता है वो भैया प्रभावित हो जाते हैं। और अगर लगातार भैया अपन रासायनिक दवा और रासायनिक उर्वरकन को उपयोग करत रहे तो जब मान लो कि एक दिन अपनी जो खेतन की माटी है उसकी उत्पादन क्षमता भी कम हो जाए और बंजर भी हो सकता है। तो जो छोटी छोटी बातें हैं उनको जरूर ध्यान रखें, अच्छी किस्म के बीज फसल चक्र और पानी को सही उपयोग के जब जैसे पानी की अपन को उपलब्धता जैसी है उस हिसाब से अपन को फसल करने हैं। तो जब अगर छोटी छोटी बातें अगर अपन ध्यान रखें तो जब मान लो कि अपन को अच्छा उत्पादन भी मिल सकते हैं और अपना जीवन भी

अच्छा हो सकता है। तो भैया देखो, स्टूडियो की घड़ी भी हमको इशारा कर रही है कि हम अपने सभी श्रोता भैयान से लेने आए विदा। तो चलत हैं सभी श्रोता भैयान को प्रेमचंद भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कल अपनी इंडोनेशिया की यात्रा खत्म करी और कल ही वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर अशोक सज्जनहार। अम्बेसडर सज्जनहार, आकाशवाणी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत धन्यवाद।
2: अम्बेसडर सज्जनहार, बाकी और पहलुओं पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, उसके बीच जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराने के बारे में बात की है, तो मौजूदा समय में यानी कि जब हम पश्चिम एशिया में फिर से तनाव देख रहे हैं, तो ये एनर्जी सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण है?
3: जी, बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा है, जैसे दीक्षा आपने बताया, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है पूरे विश्व में। बहुत ही उथल पुथल की स्थिति है, बहुत ही अनिश्चितता की स्थिति है। और हमने देखा है, अभी जब से ये फरवरी में युद्ध शुरू हुआ है, तो तब से वहां पर जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो वहां से खत्म हो गया है। और जो क्योंकि पूरे विश्व में करीब 20% जो तेल आता है, खुरदरा तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है, चाहे वो फिर गैस आती हो LPG, LNG या फिर और भी उसके जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जिसे कहा जाए फर्टिलाइजर, उर्वरक है, जो कि बहुत ही आवश्यक है फूड सिक्योरिटी के लिए, अलग अलग देशों के लिए, भिन्न देशों के लिए, परंतु पूरे विश्व के लिए। उसके अलावा और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम कहते हैं सल्फर की जरूरत होती है, हीलियम की जरूरत होती है, तो ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव पदार्थ हैं जो कि जब तेल को रिफाइन किया जाता है तो वो निकलते हैं, तो वो सभी पदार्थ आना बाहर बंद हो गए, और जिससे कि पूरे विश्व को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा फरवरी से लेकर अभी तक, जब तक इसके ऊपर दस्तखत नहीं हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और फिर हम कल से देख रहे हैं फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। तो इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है सभी देशों के लिए, ऐसे देशों के लिए यकीनन भारत जैसे देश हैं जो कि हम करीब 90% अपनी ऊर्जा बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जो दोनों, भारत ने और ऑस्ट्रेलिया ने, इसके ऊपर एक समझौता किया है। अब जो एनर्जी के बारे में अगर बातचीत की जाए आदान प्रदान में, तो हम ऑस्ट्रेलिया से बहुत मात्रा में कोयला खरीदते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, हालांकि हमारे यहाँ से काफी हद तक हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं और रिन्यूएबल्स की तरफ हम जा रहे हैं, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं पेरिस अकॉर्ड में, जो 2030 तक हम कितना रिन्यूएबल्स में हम प्रोडक्शन करेंगे, उससे कहीं ज्यादा हमने ऑलरेडी कर

0: दिया है, हमने अपना जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया, परंतु फिर भी ऑस्ट्रेलिया से चाहे कोयला हो चाहे एलपीजी हो काफी मात्रा में हमारे यहाँ आता है, और हमारे यहाँ पर ये सब रिफाइन होकर जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया को हम फिर से भेजते हैं। हमारा सबसे ज्यादा मात्रा में जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है ऑस्ट्रेलिया को, वो इन्हीं का है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोनों देशों के बीच के सहयोग का।
1: तो आगे बढ़ने से पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ जॉइंट प्रेस मीट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात को आसान बनाने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर करने के बारे में बातचीत की है। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
2: न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, जैसे कि हमने भी प्रधानमंत्री को सुना, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने ऑस्ट्रेलिया भारत परमाणु सहयोग समझौते 2015 के तहत विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सुरक्षा मानकों के दायरे में भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात को संभव बनाने के लिए जरूरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। ये आपके नजरिए में, ये आपके समझ से कितना महत्वपूर्ण है?
0: मेरे विचार से ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है दोनों देशों ने उठाया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो ये फॉसिल फ्यूल से हम नहीं करेंगे, ये हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में इस यूरेनियम का प्रयोग करेंगे। और हमने जो मात्रा रखी है वो जो हम 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी 2047 तक हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अभी तक अगर हम देखें तो मेरे विचार से अभी तक हमारा 8-9 गीगावाट हम प्रोड्यूस करते हैं, तो मतलब हमारे पास और बहुत ज्यादा ऐसा संभव ये कर सकते हैं जो इसको मात्रा को हम और आगे बढ़ाएं। दूसरी बात, ये हमारा समझौता जो हुआ था वो हुआ था 2014-2015 में, जबकि टोनी एबट थे वहां के प्रधानमंत्री। अब 12 साल गुजर गए हैं परंतु अभी तक वहां से कोई हमारे पास यूरेनियम ओर नहीं आ पाया है। तीसरी बात, जो ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे बड़ा जो रिजर्व्स हैं यूरेनियम के, वो ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया उनको माइन करे, उनको बाहर देशों को उसको एक्सप्लॉयट करे, बाहर देशों को और एक्सपोर्ट करे, निर्यात करे, तो ये दोनों के लिए फायदा होगा। और चौथी बात इसमें ही देखें, ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत अच्छा होगा, तो इसीलिए हम सिविलियन यूजेस के लिए ऊर्जा को पैदा करने के लिए, ऊर्जा को जनरेट करने के लिए हम यूरेनियम का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये इतने सालों बाद हो रहा है, तो मेरे विचार से ये भी एक विन विन प्रोपोजिशन है, क्योंकि इससे भारत को तो फायदा होगा ही, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में और आगे बढ़ पाएंगे, परंतु इससे ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसका अपना वो तो एक जो कमोडिटीज हैं उसको वो माइनिंग में, क्योंकि उसका क्षेत्रफल इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा वहां पर मिनरल्स हैं और यूरेनियम उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है, तो उसका वो निर्यात कर पाएगा, तो उसको भी इसका फायदा मिलेगा। तो ये दोनों देशों के लिए बड़ी अच्छी बात है जो हमने ये ऑपरेशनलाइजेशन किया है उस अग्रीमेंट का, जो कि बहुत पहले 10 साल से ऊपर हो गए जो हमने इसके बारे में अपना निर्णय लिया था, दोनों देशों ने निर्णय लिया था।
1: अम्बेसडर सज्जनार, अभी तो हमने ऊर्जा क्षेत्र की बात करी, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बात करना चाहूंगी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया भारत सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस इवेंट को भी संबोधित किया था ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में लंबे समय तक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया है। आपके विचार में, आपकी समझ से कौन से क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देश मिलकर आगे काम कर सकते हैं?
0: बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। देखिए, एक तो जो नई तकनीक है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो चाहे रोबोटिक्स हो, ये वाले क्षेत्र हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरे हैं जिनमें हम अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं। देखिए, हमको ये ध्यान रखना है जो अभी तक हालांकि दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंध बड़े अच्छे हैं, परंतु अगर इकोनॉमी और ट्रेड को देखा जाए तो इतने ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है। जैसे मैंने बताया, अभी तक हमारे यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, ऐसी टेक्सटाइल्स, ऐसी चीजें हम निर्यात करते हैं और वहां से हम आयात करते हैं कोयला और LPG वगैरह, इस प्रकार के कमोडिटीज हम वहां से आयात करते हैं। परंतु अभी हमने कुछ साल पहले 2022 में हमने एक बायलैटरल अग्रीमेंट, इंटर जिसे मैं कहूंगा ट्रेड अग्रीमेंट की थी, फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं थी, परंतु एक पहला कदम था उसकी तरफ, जिसको हम कहते हैं एक्टा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट, और उसका फायदा भी बहुत हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए, जो अगर भारत के जो निर्यात है पूरे विश्व में पिछले 4 साल में, अगर मैं कहूं जो करीब 40% ज्यादा बढ़ा है, तो मेरे विचार से ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो निर्यात है वो करीब 200% बढ़ा है, और वो इसी की बनिस्बत जो एक्टा से हमारा जो फायदा हुआ है, दोनों देशों को फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का भी जो निर्यात है भारत को काफी मात्रा में बढ़ा है, परंतु हमारे लिए ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि अब 1 जनवरी 2026 से 100% जो भारत की पदार्थ हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो सारे ड्यूटी फ्री हो गए हैं, तो हमारे लिए बहुत ही सहूलियत बनी है। और इसमें हम देख रहे हैं, अब हमने एक्टा को रिप्लेस करके सीका की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, जिसमें कि केवल ट्रेड इन गुड्स नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा, ट्रेड इन सर्विसेज रहेगा, और ये सब क्षेत्र जब मिलेंगे तो हमारे दोनों देशों के बीच का सहयोग है वो बहुत बढ़ेगा। और इसी में अगर देखा जाए तो वहां की जो ऑस्ट्रेलिया सुपर, जो उनकी इन्वेस्टमेंट आर्म है, पेंशन फंड्स की इन्वेस्टमेंट आर्म है, उन्होंने आज उसी CEO फोरम में अनाउंस किया दीक्षा, जो ऑस्ट्रेलिया 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन US डॉलर, मतलब करीब $350 मिलियन US डॉलर वो भारत में निवेश करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। इससे पहले अगर देखा जाए पिछले 5 सालों में उन्होंने तो करीब 2.8 बिलियन ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, और उनको ये विश्वास है जो भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इसलिए मैं समझता हूं जो आह्वान था प्रधानमंत्री मोदी का, जो भी ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस कम्युनिटी था, वो बड़ी पॉजिटिवली रिसीव हुआ है।
1: आगे बढ़ने से पहले अम्बेसडर सज्जनार, ये सुनते हैं कि आज साइन किए गए MOU के बारे में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने जॉइंट प्रेस मीट में क्या कहा।
3: With new landmark agreements, we are expanding our relationship across defence and security, education, science and technology, and energy security and critical minerals. Prime Minister Modi and I have released a joint declaration on defence and security cooperation to deepen our practical partnership. Australia values India as a top-tier security partner, and the declaration reflects our shared commitment to a peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific region.
1: चलते चलते अम्बेसडर सज्जनहार, आपसे बहुत ही संक्षेप में समझना चाहूंगी कि आज ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्री, दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होने के नाते एक कॉमन विजन फॉर फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक की भी बात की, उस पे जोर दिया। तो जितने भी MOU, जितने भी आज समझौते हुए हैं, उसमें मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप यानी कि MSCR को भी देखा गया है, तो आप इसको हमारे श्रोताओं के लिए और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं।
0: अभी जो आपने प्रश्न किया है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो मित्रता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो सहयोग है, वो केवल द्विपक्षीय मामलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु वो पूरे क्षेत्रीय, इस पूरे इंडो पैसिफिक में जिसे हम कहते हैं इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरे विश्व में अगर हम कहें, जो ये स्थायी होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, उन सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी जियोपॉलिटिकल टेंशंस की, यहां पर भी हम देख रहे हैं जो बहुत अनिश्चितता बनकर आ रही है, इस क्षेत्र की जो डेमोक्रेसीज हैं, जो ये सभी डेमोक्रेसीज को मिलके ये निश्चित करना होगा जो ये क्षेत्र जो है ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी यहां पर बनी रहे, रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ के आधार पर यहां पर जो काम होता है वो सब होता रहे। और इसीलिए हमने देखा है जो आपने कहा जो मैरिटाइम सिक्योरिटी, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस हो, उसमें ब्लू इकोनॉमी का कैसे फायदा लिया जाए।
1: जी एम्बेसडर सज्जनार, आने वाले दिनों में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पे अपनी नजर बनाए रखेंगे और उस पे चर्चा करते रहेंगे। इस पूरे विषय पे अपने विचार हमारे साथ साझा करिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
4: अभी आप सुन रहे थे भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। सुर्खियों में आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। श्रोताओं नमस्कार, बारिश का उत्सव है, गुनगुनाते हुए हम और आप हैं और इस गुनगुनाहट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। श्रोताओं, बारिश के दिन बादल ओढ़े हुए जागते हैं, सफेद उजालों वाली सुबहें होती हैं और काले घने मेघों को ओढ़ी रात होती है, जहां जिंदगी भीगे मन आंगन में सपने बोती है। आसमान के प्यार से धुल गया है धरती का सारा इंतजार। कितना खूबसूरत सा मौसम है बारिश, जैसे जमीन से आसमान का एक रिश्ता बंधा हुआ है। बारिश का ये मौसम जैसे कोई जादू है। ये रिमझिम रात भर बादलों का वृत्तांत कहती हैं और जमीन चुपचाप सुनती है, भीगती है। सुबह सवेरे हमारी खिड़की की कांच पर इन बूंदों की कविताएं मिलती हैं और दिन जैसे कोई गीत हो जाता है। धुली हुई हवाएं हैं, धुली हुई फिजाएं हैं और चारों ओर हरियाली है। ये हरियाली नहीं, आसमान के नाम धरती के प्रेम पत्र हैं और ये प्रेम ही जीवन है।

देख तो सकते ही हैं, छू भी सकते हैं, सहेज भी सकते हैं। तो इस बरस बारिशें जमा कीजिएगा। फिलहाल आपके साथ मिलकर गुनगुनाते हैं इस सुहाने से मौसम को, बरखा बहार को।

मैंने बोई थी बारिशें पिछले बरस, मैंने बोई थी बारिशें पिछले बरस, बादलों के दरख्त मेरे आंगन में फूलने लगे हैं।

मौसम से मन की जुगलबंदी बड़ी पुरानी है। इधर आसमान में बादल घिरते हैं, उधर मन उड़ चलता है प्रेम के देश। इधर बूंदें बरसती हैं, उधर मन भीग भीग गाता है पावस के गीत।

ये बूंदें जो हथेलियों को सहलाकर भिगो देती हैं, जैसे मन को कोई बीती हुई याद सहला जाती है। धरती के आंगन में जब बजता है जल तरंग, एक टीस मीठी सी गुनगुनाती है।

श्रोताओं, ये उमड़ते घुमड़ते बादल जैसे ढोल बजाते हों कि हाँ शुभ दिन आ गए। ये धरती जैसे दुल्हन है इन दिनों, हवाएं शहनाई बजाती हैं कि नए सपनों का शुभारंभ है ये, कि जैसे ये उत्सव है धरती और आसमान के अटूट बंधन का।

श्रोताओं, यूं मौसम कोई बेआवाज नहीं होता, लेकिन बारिश के स्वर बहुत मुखर हैं। गरजते बादल, रिमझिम फुहारे, दादुर, मोर, पपीहे के स्वर, ऐसा लगता है जैसे ये सब मिलकर मल्हारी वृंदगान रच रहे हों। इन घटाओं से एक अजीब सा रिश्ता है मन का। ये काली घटाएं कभी संदेश वाहक हो जाती हैं, ये मेघ दूत बन जाते हैं और बेकल मन का हाल कह सुनाते हैं। एक साझे आसमान पर दूर दूर जीती दो निगाहें क्या क्या लिखती हैं, क्या क्या पढ़ती हैं।

तो श्रोताओं, बारिश एक संबंध है जमीन का आसमान से, बारिश एक संबंध है जीव का जीवन से, बारिश एक संबंध है मन का दूसरे मन से। इस संबंध को गुनगुनाते रहना ही इसे जिंदा रखना है। तो इस बरस आइए बारिश को खूब जिएं, इसे गुनगुनाएं, उसे छुएं, इसे सहेजें, हम जमा करें बारिशें, हम बारिशें बोएं कि बादलों के दरख्त फूलते रहें, धरती के आंगन में जीवन हमेशा खिलता रहे, महकता रहे। इसी वादे के साथ अब इजाज़त दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम।

0: बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:45 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
3: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
3: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।

0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा

0: मेघना मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो वायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जाँच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोच्यूक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास, अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा

0: दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा, धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी।
1: इस मौके पर खिताब करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज ने भारतीय बिरादरी को कसीर सकाफती पावर हाउस कहकर उसकी सताइश की, जो ऑस्ट्रेलिया की खुशहाली को आगे बढ़ाने में मुआविन है। उन्होंने भारतीय बिरादरी को एक कतई लिविंग ब्रिज कहकर उसकी तहसीन की। ये ऐसा पुल है जो कभी न रुकने वाली शराकत दारी की बुनियाद फराहम करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मार्वल स्टेडियम के अंदरून तहसीन और सताइश के बुलंदबाग नारे एक बुनियादी हकीकत की बाजगश थे कि भारत ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात उमूमी सफारतकारी से बहुत ज़्यादा बुलंदी अख्तियार कर चुके हैं। वज़ीर आज़म मोदी का ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत एक उमंगों भरे तरक्की याफ्ता भारत, जो आलमगीर मैनुफैक्चरिंग फतूहत से आगे बढ़कर इंतहाई अहम नौयत की इंसानियत नवाजी पर मबनी इकदाम का तस्वुर है, ये साबित करता है कि एक मजबूत भारत पूरी इंसानियत की खिदमत अंजाम देता है। जैसा कि वज़ीर आज़म अल्बानीज़ ने जोश व खरोश से भरपूर इस बिरादरी को कतई तौर पर खलीज को पाटने वाला लिविंग ब्रिज कहकर एजाज से नवाजा, जिससे ये बिल्कुल वाज़ह है कि भारतीय बिरादरी दोनों मुल्कों के इक्तिसादी इंजनों और कलीदी दिफाई राहदारियों को सरगर्म तौर पर ताउन दे रही है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: मेलबर्न में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात हमजहत नौयत के और तेजी से पेशरफ्त कर रहे हैं। ब्रिक्स मुल्कों की ख्वातीन वुजरा की मीटिंग आज कोची में खत्म हो गई। ख्वातीन और बच्चों की नशोनुमा की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ब्रिक्स ममालिक में ख्वातीन की नशोनुमा से मुतालिक कई मुश्तरका मसाइल पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये मुश्तरका मसाइल ब्रिक्स ख्वातीन वुजरा ट्रैक जैसे प्लेटफॉर्म की इंतहाई अहमियत को उजागर करते हैं, ताकि मेंबर मुल्कों के दरमियान मुजाकरात को आगे बढ़ाया जाए और तआवुन को मुस्तहकम किया जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स ख्वातीन उजरा की मीटिंग कोची में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें पहली मरतबा ख्वातीन उजरा के प्लेटफॉर्म की जानिब से एक मुश्तरका ऐलामिया मंजूर किया गया। ये ब्रिक्स रुकन ममालिक के दरमियान ख्वातीन की क़यादत में तरक्की के फ़रोग के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने की सिमत एक अहम संग मील है। 6 जुलाई से शुरू हुई 4 रोज़ा मीटिंग में ब्रिक्स ख्वातीन वर्किंग ग्रुप का इजलास और ब्रिक्स ख्वातीन उजरा का इजलास शामिल था। मीटिंग में भारत की जानिब से पेश किए गए ब्रिक्स डिजिटल खजीना और ब्रिक्स डिजिटल सलाहियत साजी के रहनुमा उसूलों की तजावीज़ का खैर मकदम किया गया। इसके अलावा इस अज़्म का इआदा किया गया कि ख्वातीन की क़यादत में तरक्की जामे और पायदार मुआशी व समाजी तरक्की के लिए एक अहम मुहर्रिक है। कोची से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज़।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि साफ मुतबादिल ईंधन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की तरफ फौरन मुंतकिल होना सड़क ट्रांसपोर्ट शोबे में तब्दीली की एक अहम तरीन जरूरत है। गांधीनगर में 3 रोज़ा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट शो प्रवास का बाकायदा इफ्तिताह करते हुए वजीर मौसूफ ने रिवायती ईंधन पर इन्हिसार की बहुत ज्यादा इक्तसादी और माहौलियाती लागत को उजागर किया और सड़क ट्रांसपोर्टरों से जोर देकर कहा कि वो मुनासिब कीमत पर दस्तियाब मुतबादिल ईंधनों को जोश तरीके से इख्तियार करें। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने आज कहा है कि भारत की तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर 2047 तक काया पलट के लिए बुनियादी साइंसेस में मजबूत जड़ें कायम करना बहुत जरूरी है। भुवनेश्वर के नजदीक जटनी में साइंसी तालीम और तहकीक के कौमी इंस्टीट्यूट की 15वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साइंसी एतबार से खुद किफालत मुल्क के मुस्तकबिल की तरक्की और आलमी क़ियादत के लिए अहम तरीन अंसर होगी। तेजी से फैलती हुई तौलीद में मुआविन टेक्नोलॉजी ART शोबे में बेजाबतगियों से मुतालिक बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र ख्वातीन के कौमी कमीशन NCW ने आज एक आला सतह की माहिरीन की कमेटी तशकील दी है। ये कमेटी IVF क्लिनिक्स, तौलीद में मुआविन टेक्नोलॉजी ART मराकज और गैमेट बैंक से मुतालिक कवानीन और इंजिबाती फ्रेमवर्क का जामे जायजा लेगी। इस जायजे का बुनियादी मकसद ख्वातीन के तौलीदी हुकूक, वकार और तहफ्फुज़ को यकीनी बनाना है। दिल्ली हाई कोर्ट की साबिक जस्टिस आशा मेनन माहिरीन की इस कमेटी की सरबराही करेंगी। कमेटी रजामंदी

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सिनेमा का रुपहला पर्दा समय का वो उजाला है जहाँ प्रकाश और छाया मिलकर जीवन का महाकाव्य रचते हैं। इस विराट कैनवस पर कुछ कलाकार रंग भरते हैं, कुछ कथाएं लिखते हैं और कुछ ऐसे बिरले सर्जक होते हैं जो हर फ्रेम को कविता बना देते हैं, जिनकी दृष्टि कैमरे की आंख से आगे जाकर मनुष्य के मन को पढ़ती है, जिनकी फिल्मों में संगीत बोलता है, सन्नाटा गाता है और संवेदनाएं आकार लेती हैं। ऐसे ही अप्रतिम सिने शिल्पी थे गुरुदत्त, अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और कला के अद्वितीय साधक। उन्होंने फिल्मों को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें मानवीय संवेदनाओं, सौंदर्य और विचारों का शाश्वत दस्तावेज बना दिया। आज उनके जन्मदिन पर आइए उनके सृजन संसार में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं उनकी फिल्मों के कुछ गीत।

श्रोताओं, 9 जुलाई 1925 को जन्मे गुरुदत्त का जीवन संघर्षों की धूप में तपकर निखरा। कोलकाता से मुंबई तक का उनका सफर केवल सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि कला के प्रति अदम्य समर्पण का इतिहास है। नृत्य से आरंभ हुई उनकी साधना बहुत जल्द अभिनय और निर्देशन तक पहुंची और फिल्मबाजी ने भारतीय सिनेमा को एक ऐसे निर्देशक से परिचित कराया जिसकी दृष्टि समय से बहुत आगे की थी।

श्रोताओं, गुरुदत्त कैमरे के नहीं भावनाओं के निर्देशक थे। प्रकाश और छाया का उनका प्रयोग आज भी विश्व भर के फिल्म विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का विषय है। उनका हर फ्रेम किसी चित्रकार की तूलिका का स्पर्श लिए दिखाई देता है और हर दृश्य कविता की तरह मन में उतर जाता है। अभिनेता के रूप में गुरुदत्त ने कभी अभिनय का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने पात्रों को आत्मसात किया। उनकी आंखों की खामोशी कई बार लंबे संवादों से कहीं अधिक प्रभाव छोड़ जाती थी। फिल्मी दुनिया में उन्होंने

ने फिल्मों का निर्माण किया, निर्देशन किया, अभिनय किया और कई बार अबरार अलवी के साथ फिल्में लिखी भी। जो भी काम उन्होंने किया वो बेमिसाल रहा।

श्रोताओं, एक निर्माता के रूप में गुरुदत्त जोखिम उठाने से कभी भी हिचकिचाए नहीं। वो नई प्रतिभाओं पर विश्वास करते थे, श्रेष्ठ लेखन, संगीत और अभिनय को हमेशा प्राथमिकता देते थे। उनकी फिल्मों में लोकप्रियता और गुणवत्ता का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। मिस्टर एंड मिसेस 55 इसी दृष्टि का एक अच्छा उदाहरण है।

श्रोताओं, गुरुदत्त के सृजन संसार में अगर हम प्रवेश करते हैं तो आर पार मिस्टर एंड मिसेस 55, काला बाजार, चौदवी का चांद, साहब बीबी और गुलाम, भरोसा, सुहागन, जाल, बाजी बाज, सौतेला भाई, ऐसी कई फिल्में हमें नजर आती हैं। लेकिन दो फिल्मों के जिक्र के बगैर उनके सृजन की बात पूरी नहीं हो सकती है, और वो फिल्में हैं प्यासा और कागज के फूल। प्यासा केवल एक फिल्म नहीं, भारतीय सिनेमा की आत्मा मानी जाती है। 1957 में प्रदर्शित इस कृति ने समाज, संवेदनाओं और एक कलाकार की पीड़ा को जिस गहराई से अभिव्यक्त किया, उसने विश्व सिनेमा को भी चकित कर दिया। आज अनेक अंतर्राष्ट्रीय समीक्षक और फिल्म संस्थान इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में स्थान देते हैं।

प्यासा की तरह ही अनमोल कृति है कागज के फूल। कागज के फूल उस कलाकार की कहानी है जो अपनी ही रचना के भीतर अकेला पड़ जाता है। अपने समय में ये फिल्म व्यावसायिक सफलता नहीं पा सकी थी, लेकिन समय ने इसके मूल्य को पहचाना। आज इसे विश्व सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है। इसकी सिनेमेटोग्राफी और प्रकाश छाया का प्रयोग आज भी फिल्म निर्माण की पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाया जाता है।

श्रोताओं, गुरुदत्त का विश्वास था कि सिनेमा तभी महान बनता है जब हर कलाकार को अपनी प्रतिभा के साथ खिलने का अवसर मिले। एक निर्माता के रूप में उन्होंने अनेक नई प्रतिभाओं को मंच दिया और ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जो लोकप्रिय होने

श्रोताओं, गुरुदत्त की कालजयी फिल्मों में से एक फिल्म और थी साहेब बीबी और गुलाम। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर है। इस फिल्म को फिल्मफेयर अवार्ड्स में व्यापक सम्मान मिला और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सराहा गया। गुरुदत्त स्वयं अपने जीवन काल में जितने सम्मान के अधिकारी थे उससे कहीं अधिक सम्मान उनकी कृतियों को समय ने दिया। और सच तो यह है कि यही किसी सच्चे कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है।

श्रोताओं, गुरुदत्त केवल एक नाम नहीं, भारतीय सिनेमा की संवेदना है। उन्हें मरणोपरांत वो प्रतिष्ठा मिली जो बिरले कलाकारों के हिस्से आती है। उनकी फिल्मों को विश्व के प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों, अभिलेखागारों और फिल्म विद्यालयों में अध्ययन की सामग्री के रूप में देखा गया। सन 2010 में विश्व की श्रेष्ठ फिल्मों की सूची बनाई गई, जिसमें प्यासा को विशेष स्थान मिला। कागज़ के फूल को भी विश्व सिनेमा की महान कृतियों में शामिल किया गया। ये सम्मान केवल एक फिल्मकार का नहीं, भारतीय सिनेमा की सृजनात्मक चेतना का सम्मान है। आइए, कार्यक्रम के अंत में आपको 14वीं का चांद, इस फिल्म का वो अमर गीत सुनवाते हैं, जिसकी मिठास आज भी हर दिल में चांदनी की तरह उतर जाती है।

0: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाए मिल मधुर गान अपना, पहुँचाएं हम जन जन तक सपनों को, दें हम आकार।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

नुमाइशी फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, ढलती हुई रात है और आप साथ हैं। जी हाँ, और हमारे साथ हैं आपके बहुत सारे खत। इन खतों में हैं आपकी पसंद, आपकी फरमाइश। इन फरमाइशों के साथ आधे घंटे का एक सफर हम सजाने जा रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम है आपकी फरमाइश। तो आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है खानदान, आवाज लता मंगेशकर की है, बोल नक्श लायलपुरी के हैं और धुन खयाम की। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावींद्र कुमार वर्मा। पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। भिलाई छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद करते हैं मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। और प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से ये चिट्ठी आई है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में खानदान फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक, अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने और संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी उसकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वो केवल प्रामाणिक तथा विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी ये संदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द तथा सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई। और अब आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए बढ़ते हैं आगे। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है चंबल की कसम। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं खयाम। अनुरोध आप सबका है। कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रियांश, गुड़िया और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये खत आया है ग्राम आमा खोडरा, पोस्ट रेंगाखार, जिला कबीरधाम से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं देवी सिंह नेताम, राजेंद्र, कृष्णा, चंद्रदीप, संदीपा, दक्षप्रिया नेताम। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश। और मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल।

गीत आपको सुनवाते हैं सुदर्शन फाकिर का लिखा हुआ, जयदेव ने इसे संगीतबद्ध किया है। फिल्म का नाम है दूरियां और आवाजें भूपेंद्र और अनुराधा पौडवाल की हैं। पसंद आप सबकी है। सौगा धमतरी से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित और गजेंद्र। नागर कोहरा से झग्गर राम साहू, जामुन देवी साहू, राजू और लल्ला साहू। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना मल, पार्वती मोटवानी, राजेश रेशम, मुकेश भावना, सोमेश और यशराज। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमंत और सन्मति पंचोलिया। और तिल्दा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद करते हैं प्रदीप कुमार चंद्र, सीमा रानी, प्रिया ओशीम और सोमेन कुमार चंद्र।

कोई गीत मोहब्बत का। एक ऐसा ही गीत अब आपको सुनवाते हैं, आवाज़ तलत अज़ीज़ की है, उमराव जान फिल्म का नाम है, शहरयार इसके लिखने वाले हैं और धुन खय्याम की। पसंद आप सबकी है। मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी योगिता, नितिन और वंशिका। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश और सौरभ शर्मा। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची। और ये खत है धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना का। और दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव का।

तो श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर ये थे कुछ फिल्मी गीत। यूं ही चिट्ठियां लिखते रहिए, अपनी फरमाइशें हम तक भेजते रहिए और हम आप तक भेजते रहेंगे आपकी पसंद के नगमे। अब इस कार्यक्रम से इजाज़त दें, अपनी दोस्त सुनीता सिंह को नमस्कार।

ये था फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण राग रजनी। इस कार्यक्रम में लीजिए आज सुनिए वसंत रानाडे का वायलिन पर बजाया राग कामोद। तबले पर संगत की है पंडित रामस्वरूप रतौनिया ने।

0: राग रजनी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे वसंत रानाडे का वायलिन पर बजाया राग कामोद। तबले पर संगत की थी पंडित रामस्वरूप रतौनिया ने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को

0: अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपये प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later briefing.